I'm not.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था

0: लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणे की आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारे थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 करोड़ सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सीक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उससे हमें याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: गाण्यांच्या सुरात दडलेली संस्कारांची गोडी, पिढ्यान पिढ्या चालत असलेल्या परंपरेचा गंध आणि मनाला स्पर्श करणारी भावांची संगती, आणि हे सगळं ऐका फक्त आपल्या पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदी रहा, आनंद लो।
1: हे महामाया, तेरी सदा ही जय हो। तूने भक्ति का दान देकर एक भक्त का जीवन सफल कर दिया है। इस नाचीज को अपने चरणों की शरण देकर उसका जीवन खास बना दिया है। अब ये भक्त ताउम्र तेरे चरणों में रहना चाहता है, सदैव उसकी सेवा को स्वीकार करते रहना।

ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना एमपी छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के बीच ज्ञान की कुछ बातें लेकर आई हूँ, तो और आशा करती हूँ आप लोगों से कि आप हेल्दी वेल्दी होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं देने वाला दाता, यानी कि दाता बनो और भरपूर दा पाओ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भक्ति मार्ग के यादगार हैं, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। शास्त्रों में भगवान के 24 अवतारों में से एक वामन अवतार दिखाया गया है। वामन का अर्थ होता है छोटा। छोटा इस अवतार में दिखाया गया है कि भगवान राजा बलि से 3 पैर पृथ्वी का दान लेने के लिए अवतरित हुए थे, और चूँकि भगवान का आगमन लेने के लिए हुआ है इसलिए उनके इस स्वरूप को छोटा दिखाया गया है। जब हम किसी से कुछ लेते हैं तो हम छोटा हो जाते हैं, और जब हम कुछ देते हैं तो बड़ा हो जाते हैं। यादगार शास्त्रों का यह कथा हमें क्या संदेश देता है कि अगर हम बड़ा होना चाहते हैं तो हम किसी को कुछ दें, ले नहीं बल्कि कुछ देने वाले बने। कहा ही जाता है दाता एक और लेने वाले अनेक। भगवान के अनेक नाम है, कोई उन्हें क्या कहता है, दाता कहता है, कोई वरदाता कहता है, कोई विधाता कहता है, कोई अवहरदानी भी कहता है। भंडारे भरपूर करने वाले, एक के बदले पदम गुना देने वाले, उनके लिए ही कहा जाता है कि लेने वाला लेता लेता थक जाए लेकिन देने वाले के भंडारे कभी खाली नहीं होते। और यह भी कहा जाता है कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, अर्थात देने वाला केवल एक ही है, बाकी सब लेने वाले हैं। राजा हो संत हो सब लेते हैं, सब उन्हीं से लेते हैं। भगवान का लेना भी देना ही है, हाँ, अर्थात भगवान का जो लेना है वो भी देना ही है। भगवान अगर मनुष्य आत्माओं को कहते हैं कि सब कुछ पुराना दे दो तो वह लेना भी देना ही है, क्योंकि भगवान हमसे कखपन लेकर लखपन देते हैं, कौड़ी लेकर हीरा देते हैं, बुराइयां लेकर हमें सद्गुण देते हैं, कमजोरी लेकर हमें क्या देते, शक्ति देते, कमजोरी के बदले हमें शक्ति देते हैं। कहते हैं कि बच्चे पुरानी जो कीचड़ पट्टी है, पुरानी स्मृतियाँ, पुराने संस्कार, पुराना तन विकारी मन, काला धन मुझे दान में दे दो तो मैं बदले में आपको कंचन काया, शुद्ध शांत शीतल मन, अकूत धन दे दूंगा। जैसे यादगार शास्त्रों में सुदामा ने मुट्ठी चावल दिए और बदले में उन्हें क्या मिला, हाँ, उन्हें मिला महल। तो इसी प्रकार वर्तमान समय भगवान अगर हमसे कुछ लेते हैं तो वह लेना नहीं होता है, कई गुना करके हमें पुराने के बदले नया देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मौके पर काम आना, हाँ, मौके पर काम आना भी दाता बनना है। केवल धन का देना ही दाता बनना नहीं होता है, धन के साथ साथ देने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हम गुणों को भी दे सकते हैं, गुणों का दान देना भी देना है, किसी को सहयोग देना भी, उमंग उत्साह देना भी, किसी गिरे को उठाना भी देना है, किसी के बोझ को हल्का कर देना, बीमारी मदद में मदद कर देना भी देना है, पढ़ाई में मदद कर देना भी मौके पर किसी के भी किसी भी रूप में काम आना, अर्थात दाता बनना है। तो जो खुद सदा भरपूर होगा वही तो देगा, हाँ, और जिसके पास नहीं होगा वो कहाँ से देगा। अगर किसी मटके में पानी नहीं है तो उसमें से पानी आ नहीं सकता, हम उसमें से पानी ले नहीं सकते। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर पानी अगर बाहर निकलता है मटका से तभी निकलता है जब उसमें पहले से पानी हो और उसमें और भरा जाए तो पानी अपने आप खुद ब खुद उसमें से बाहर निकलने लगता है। और जब भी हम स्थूल या सूक्ष्म प्राप्तियों से भरपूर हो जाते हैं तो यही देना, यही भरपूर हो जाने के बाद तभी हम निस्वार्थ भाव से हम सभी को कुछ दे सकते हैं। तो हम लेते हैं इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप हंसते रहिए और गाते रहिए।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है और हम अपनी चर्चा इसी तरह जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। दाता बनो और भरपूरता पाओ। तो दाता बनो और भरपूरता पाओ देना देना नहीं बल्कि लेना होता है। तो हम इसी के संदर्भ में एक कहानी सुनाते हैं आपको, एक लकड़हारे की कहानी। कहानी है, एक लकड़हारा था जो बहुत ही मेहनत करता था, बहुत मेहनत किया करता था। मेहनत करके बेचारा किसी तरह से अपना गुजारा करता था। बहुत गरीब भी था, भगवान से प्रार्थना करता था लेकिन प्रार्थना कभी सुनी नहीं गई। एक बार उसने सोचा कि एक साधु को देखा तो साधु को जाकर के अपना संदेश भगवान को देने के लिए कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे लिए कुछ तो करें। साधु ने कहा ठीक है। कुछ दिन बाद साधु ने संदेश सुनाया। भगवान ने कहा कि तुम्हारी आयु बड़ी छोटी है, केवल 10 साल जिंदगी के बचे हैं और तुम्हारे हिस्से में केवल 10 बोरी अनाज है, इसलिए थोड़ा थोड़ा अनाज तुमको रोज मिलता है। लकड़हारे ने कहा कि भगवान को कहना कि मुझे इकट्ठा ही 10 बोरी एक साथ दे दे। साधु ने भगवान को संदेश भिजवा दिया। हाँ, अगले दिन उसके घर में 10 बोरी अनाज आ गया। उसने गरीबों में बांट दिया। अगले दिन फिर 10 बोरी आ गया। उसने थोड़ा सा अपने खाने के लिए रखा और बाकी बांट दिया। इस प्रकार वह बांटता रहा और रोज रोज बोरियां आती गई। कुछ दिन के बाद उसे साधु जी मिले। फिर उसने सारी बात सुनाई साधु जी को। साधु ने कहा कि तुमने अपने हिस्से का भी गरीबों में बांट दिया, इस बात से भगवान बहुत प्रसन्न हुए। इस कारण आयु भी बढ़ गई और तुम्हारा भी जो भी कष्ट था वो दूर हो गया और तुमको रोज अनाज भी मिलने लगा। कहने का भाव यह है कि जब हम कोई चीज किसी को देते हैं तो वही चीज हमारे पास कई गुना होकर आ जाती है। हाँ, तो इसीलिए कहा जाता है देना देना नहीं बल्कि लेना है। तो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो कामना रख कर करते हैं। कामना रखकर करना मतलब कि हमने ये किया, हमने ऐसा किया, इसके बदले हमें मान शान हाँ मिलनी चाहिए, अपनी महिमा करवानी चाहते हैं। तो ये देना भी कोई मतलब कामना रखकर अगर हम कुछ करते हैं तो उसमें प्राप्ति नहीं बल्कि अप्राप्ति होती है। बात है कि जो भी ये अल्पकाल की प्राप्ति के लिए करते हैं वो कामना रखकर ही करते हैं, तो उसमें अल्पकाल की हमें प्राप्ति होती है। अनेक प्राप्तियों से हम क्या होता है वंचित रह जाते हैं और प्राप्ति अप्राप्ति का साधन बन जाती है। और एक होता है कि दाता। दाता अर्थात क्या होता है उदारचित। दाता का मुख्य गुण है उदारचित। उसका देने का द्वार भी कभी भी बंद नहीं होता। एक सेकंड में भी देने के सिवाय वो लेना नहीं, उनको सिर्फ देना रहता है। जैसे कि मंदिर का दरवाजा सदैव खुला रहता है, ऐसे तो आजकल बंद रहता है पर मंदिर का दरवाजा नियम है खुला रहने का। जितना जितना देने में व्यस्त रहेंगे हाँ, तो वो बातें जिनको पार करना मुश्किल लगता है सहज ही पार हो जाएंगे, क्योंकि उदारचित बनने से महान शक्ति भी की भी प्राप्ति हमें होती है। और जितना उदारचित उतना भंडारा भरता जाता है। हर सेकंड हर संकल्प में चेक करना है, हमें कुछ दिया लिया था?

लेना है भगवान पिता से, देना है सर्व को। फिर है आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्या अखंड गुण दान। गुण भी हमारे पास होती है, इसका भी हमें दान करना है। समय प्रमाण अब हमें करना क्या है, हमें धुन लगी रहे कि मुझे अखंड महादानी बनना ही है। मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान और कर्मों से कर्मों का दान, कैसे गुणों का दान कर देना करना है। तो आजकल सभी सुनने के बजाय देखकर करना चाहते हैं, मतलब आजकल सुनने से ज्यादा देखकर करना चाहते हैं। ज्ञान दान तो करते ही हैं, लेकिन विशेष ध्यान क्या रखना है, हमें हर आत्मा को अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना है। इसमें दूसरे को नहीं देखना है कि यह करे तो हम करे, नहीं ऐसा नहीं देखना है। नहीं करता है तो मैं कैसे करूं, हाँ वो नहीं कर रहा तो मैं कैसे करूं, ऐसा नहीं सोचना है। यदि तो ऐसे ही हुआ ना कि जो स्वयं को निमित्त बनाएगा वह नंबर वन अर्जुन हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें अर्जुन बनना है तो हमें स्वयं को निमित्त मात्र होकर चलना है। और अगर हम दूसरे को देख कर करेंगे तो नंबर वन नहीं नंबर वार बन जाएंगे। एक होता है फ्राक दिल, जो फ्राक दिल के होते हैं मांगो नहीं कि यह मिलना चाहिए। फ्राक दिल जो होते हैं वो मांगते नहीं कि हमें ये मिलना चाहिए, यह होना चाहिए, यह करना चाहिए। एक दो को आगे बढ़ाने के बजाय फ्राक दिल बनो। हाँ हमें क्या करना है, हमें एक दो को आगे बढ़ाने में फ्राक दिल बनना है। छोटे कहते हैं कि हमको बड़ों का प्यार चाहिए, तो छोटे जब ऐसा कहते हैं तो बड़ों को क्या, हमें रिगार्ड देना ही है, हमें रिगार्ड देना चाहिए। देवी देवता का अर्थ ही है देने वाले, ठीक है। तो दाता जो होते हैं सदा रहमदिल होते हैं। मुझे देना, हाँ मुझे क्या देना है, कोई दे नहीं दे, लेकिन हमें मुझे देते जाना है, ठीक है। मतलब मुझे दाता बनना है, संस्कार में के परवश नहीं होना, संस्कार के भी परवश नहीं होना, आत्मा को सहयोग देना है। दाता सदा क्या होते हैं, रहमदिल होते हैं, किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोग में नहीं आते। जो दाता होते हैं वो किसी भी आत्मा के संकल्प मात्र भी उनके रोग में नहीं आते, या ऐसा क्यों, ऐसा करना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, ज्ञान या कैसा है क्या, ऐसा नहीं बोलना है हमें। हाँ और आगे देखते हैं, फिर हम जैसे सोचते हैं कि ज्ञान यह कहता है क्या, हम दूसरों के लिए ये सोचते हैं, लेकिन हमें खुद के ऊपर ध्यान देना है। अगर कोई अलबेलेपन के कारण नीचे गिर जाते हैं तो हमें क्या करना, तो दाता का काम है गिरे हुए को उठाना, सहयोगी बनाना। हाँ उसका सहयोगी बनाना, न कि ऐसे संकल्प या बोल बोलना कि क्यों गिरा, गिरना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोलना है। कर्मों का फल भोग रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं बोलना है, करेंगे तो जरूर पाएंगे, ऐसा भी हमें नहीं बोलना है। हमें दाता बन करके उन्हें निमित्त मात्र बन के उनकी सेवा मन से वचन से और कर्मों से करते रहनी चाहिए, और ऐसा ही हमें करना है। तो आगे फिर हम अपनी चर्चा जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए हाँ और लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।

तो स्वागत है आपका फिर से इस कार्यक्रम में और हम अपनी चर्चा जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है दाता देने वाला। दाता किसी का समय या ऊर्जा अपने पर नहीं लगवाता। यदि लौकिक या अलौकिक जीवन में इस समस्याएं को अगर नियमित करते हैं हम या समस्याओं को बढ़ाते हैं, राई का पहाड़ बनाते हैं और फिर नियमित आत्माओं को उसमें या बड़ों को उन समस्याओं का समाधान में समय लेते हैं तो वो भी लेना हो गया, वो देने वाले नहीं हो सकते क्योंकि दाता किसी का समय भी नहीं लेता, किसी की ऊर्जा भी अपने ऊपर लेना लगवाता है तो वो भी लेना हो गया, देना नहीं हुआ, वह तो केवल देता है। अगर हम लेते हैं तो हमें देने का नशा होना चाहिए, हाँ, ना कि लेने की का। किसी का समय भी हमें नहीं लेना है। हम जीवन को इतना सच्चा बनाए, पारदर्शी बनाए कि जीवन से कोई समस्याएं, कोई भी समस्या हमारे सामने अगर आए तो वो समस्या लगे ही नहीं। अगर हम ऐसा भी आ भी जाए ऐसी समस्याएं तो हम क्या करते हैं, इसमें आत्मिक बल, नैतिक बल, आध्यात्मिक बल अपने पास जमा रखे कि उसमें स्वयं से हम निपट ले और बड़ों का समय अपने पर न लगवाए। और फिर हम कहते हैं कि समय का योगदान बड़ों को सहयोग देना है हमें, न कि लेना है, सम्मान देना ही सम्मान लेना है। सम्मान भी अगर हम किसी को देते हैं तो उससे हमें क्या होता है, हमें सम्मान मिलता है। हाँ, मुझे सम्मान दो, मुझे सम्मान दो, मिलना चाहिए मेरे, हाँ मेरा सम्मान क्यों नहीं रखा जाता। अगर इसको भी अगर कहते हैं तो ये भी लेना हुआ, ये भी लेने की

भावना हो गई। हाँ, रॉयल भिखारी कहा बन हो गया ये तो, जरा सा भी ये नहीं होना चाहिए, जरा भी किसी भी प्रकार की लेने की इच्छा अपने स्वभाव में से गिरा देती है। हाँ, कोई मान दे नहीं दे, लेकिन मुझे देना है, ठीक है, कोई हमें मान दे न दे, लेकिन हमें क्या करना है, उसे देना है। मन में भावना तो है, लेकिन लेकिन ऐसे विचार नहीं है, मुझे करना ही है, सम्मान देना ही है, सम्मान देना है, सम्मान देना अर्थात किसी को उमंग उल्लास में ला कर आगे करना। हाँ, अल्पकाल के विनाशी मान का त्याग सारे कल्प में मान प्राप्ति का आधार है। तो क्या करना है, स्वमान में स्थित हो, निर्माण बन, सम्मान देना ही लेना बन जाता है। और इसमें भी एक चीज और है कि राजी रहो और राजी करो। हमें राजी रहने के लिए क्या करना है, दुआएं दो और दुआएं लो। दुआओं से अब क्या करना है, जब खाता भर जाएगा तो क्या होगा, तो माया डिस्टर्ब नहीं करेगी। हाँ, जमा का बल मिलता है। राजी रहो और हर एक के स्वभाव को का राज भी जान लो और राज जानकर राजी करो। ऐसे नहीं कहो कि यह तो है ही नाराज, आपको कुछ नहीं करना, आप उसकी नब्ज को जान देते जाओ तो मिलता जाएगा। हाँ, देने से ही मिलता जाएगा। जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उसे कुछ न कुछ प्राप्ति जरूर करानी है, कोई भी खाली न जाए। और अगर ऐसा होता है वह उस दान को संभालते हैं या नहीं, वह उनकी तकदीर हुई, आप अपना कर्तव्य करते रहो। तो दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए हम लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक। तब तक के लिए गाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से इस कार्यक्रम में और हम अपनी चर्चा को इसी तरह जारी रखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो चलते हैं, वह पत्थर फेंके हम रत्न दें। तो पत्थर फेंकना मतलब कोई अगर हमें दुख देता है, अर्थात पत्थर फेंके और हम उन्हें क्या दे, सुख दे, यानी कि रत्न दो। सदा हर आत्मा के प्रति हमें क्या करना है, स्नेह की, खुशी के सुनहरी पुष्पों की वर्षा करते रहो। हमें क्या करना है, वर्षा करना है पुष्पों की वर्षा, यानी कि स्नेह की वर्षा। स्नेह की वर्षा दुश्मनों को भी दोस्त बना देगी, वह माने ना माने, लेकिन आप उसको मीठा भाई मीठी बहन मानते चलो। वह पत्थर फेंके और आप रत्न दो, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे, रत्नों की खान के मालिक हो, भिखारी नहीं हो। जो सोचो वह तब मतलब वो दे तब मैं दूं, ऐसा नहीं। बुद्धि से भी यह संकल्प करना भी, यह करे तो मैं करूं, यह स्नेह दे तो मैं दूं, यह भी हाथ फैलाना है। हाँ, इसे भी क्या कहते हैं, हाथ फैलाना। इसमें निष्काम योगी बनो, छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे, समय और संकल्प के पीछे हमें नहीं, हमें अपने संकल्पों को भी बर्बाद नहीं करना है, इसके पीछे भी हमें नहीं जाना है। दान दो, वरदान दो और स्व का, तो इससे हमारा क्या हुआ, स्व का जो ग्रहण है वो समाप्त हो जाएगा। अविनाशी लंगर लगाओ, आत्माओं को वायुमंडल की और क्या करना है, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं को सबकी सेवा करनी है, भटकती हुई आत्माओं को भी ठिकाना देना है, सब कुछ सेवा में लगाओ। श्रेष्ठ सेवा, श्रेष्ठ मेवा खूब खाओ। हाँ, श्रेष्ठ सेवा से हमें श्रेष्ठ मेवा की प्राप्ति होगी। अब शक्तिशाली संस्कार दाता विधाता वरदाता में इमर्ज करो। यह महासंस्कार कमजोर संस्कार को स्वतः समाप्त कर देगा। चाहे दृष्टि से दो, चाहे प्रीति से दो, चाहे वाणी से दो, चाहे संग से दो, चाहे वाइब्रेशन से दो, लेकिन देना ही है। भक्ति में नियम होता है ना कि जिस भी वस्तु का की कमी होती है उसकी दान देते हैं, तो उसका दान देना, दान देने से वो उस चीज की, उस वस्तु की हमें प्राप्ति हो जाती है। उस वस्तु की प्राप्ति भक्ति मार्ग में भी होती है, तो उसका दान करते हैं। दान करने से स्वतः लेना ही हो जाता है। तो यहाँ हमें क्या करना है, खुशी का भी ध्यान रखना है, खुशी का दान देना है। जो सदा हर्षित है वह मन वाणी और कर्म से सर्व को सदा खुशी का दान देता है। उसके वाइब्रेशन रूहानी जो नजर है, उसका संकल्प, उसका संपर्क, उसकी वाणी सब दुखी आत्मा को खुशी का अनुभव कराती है। जैसे प्रजा अपने योग्य राजा को दे

खुश हो जाती है, वैसे ही आपकी हर्षित आत्मा जो होती है उसको देखकर सभी खुश हो जाते हैं। देख कैसी भी आत्मा होगी ना, उसको देखकर खुशी होगी और खुशी खुशी का क्या करेगी, अनुभव करेगी। तो इसकी प्राप्ति में ही हमारी खुशी है, तो ऐसी प्राप्ति की खुशी में झूमते रहो, हमेशा झूमते रहो। तो स्वागत करते हुए आप सबों का अब मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले एपिसोड में।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुश रहो।

मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की, और अगर पिछली कड़ी को देखें तो हमने समझा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। जी हाँ, हमारे पास बहुत सी जिम्मेवारियां हैं, लेकिन सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जब बात की तो सामने आई बात कि हमारी अपनी जिम्मेवारी भी हमारे ऊपर ही आती है, हमें अपनी जिम्मेवारी लेना आना चाहिए। और उसमें एक बात जो सामने आई थी वो कि जो कुछ भी फीलिंग या थॉट्स क्रिएट होते हैं वो मैं खुद क्रिएट कर रहा हूं, ना कोई और मेरे अंदर आके क्रिएट कर सकता है, ना मुझे वो फील करवा सकता है। तो जहां मैं दुख के बारे में अगर सोचती हूं कि जितनी भी परेशानी मेरी जिंदगी में आ रही है वो भी मैंने क्रिएट की है, तो दूसरी तरफ एक अच्छी बात यह है कि जहां पे भी खुशी की बात है, जहां पे भी प्यार की बात है, वो भी मैंने अपने आप ही क्रिएट की है। सो अगेन यू नो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यही कि एम्पावरिंग फैक्टर आ जाता है कि मैं खुद क्रिएट कर सकती हूँ। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में थोड़ा और जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा मुझे, कैसे मैं हो सकती हूँ अपने प्रति रिस्पॉन्सिबल। बातचीत करने के लिए हमारा सौभाग्य हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, जहां तक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आई, अभी तक सारी जिम्मेवारियां उठा रही थी, अब मतलब एक और जिम्मेवारी उठा रही थी वो ये कि मुझे मेरी जिम्मेवारी भी उठानी है। नहीं तो अभी तक तो मैं सोच रही थी कि चलो मेरी माँ उठाएगी, मेरे बच्चे उठाएंगे, मेरे हस्बैंड उठाएंगे, कोई ना कोई तो होगा, या फिर अल्टीमेटली
1: जो वो जिम्मेवारियां जो आप बोल रहे हो दोज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक वी से फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कोई और उठाएगा, वो फिर हम आउटर ही बात कर रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बीइंग, जो मैं हूँ, जो कुछ मेरा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जैसे हम कहेंगे एक बच्चा है, आपने कहा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स उठाएंगे, दैट इज बच्चे की पढ़ाई, बच्चे का भोजन, बच्चे का रहना, तो आउटर, तो उसका जो कुछ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और उठा सकता है।
0: पत्नी तो कितनी बार कहती है कि मेरी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हैप्पीनेस, स्पेशली वी ऑलवेज से दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ग्रीफ,
1: यस, फॉर बोथ ऑफ द थिंग्स। तो इसलिए हमने देखा कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आई एम द क्रिएटर ऑफ ऑल माई थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स। तो जब भी हम रिएक्ट करें हमें ये याद रखना पड़ेगा कि रिएक्शन मतलब हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई और मुझे कंट्रोल कर रहा है और वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सो आई एम सेइंग यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, लेट्स से मुझे बहुत गर्मी लग रही है, ये मौसम ऐसा क्यों है, मौसम रिस्पॉन्सिबल है मेरी तकलीफ के लिए, मौसम जैसा है वैसा है, मेरी तकलीफ का जिम्मेवार मैं हूं और मैं जितना इजिली चाहूं उसको मैं हल्का कर सकता हूं। सो जब भी रिएक्ट करें तुरंत स्टॉप करें, अपना वो 1 मिनट ब्रेक वहीं पर ले लें और अपने आप को याद दिलाएं कि ये जो मैंने रिस्पॉन्स अभी अभी क्रिएट किया, आई एम रिस्पॉन्सिबल, सो लेट मी बी केयरफुल विद व्हाट आई एम चूजिंग एज माय रिस्पॉन्स। अब दूसरी चीज हमें ये याद रखना पड़ेगा कि इवन वो जो बिलीव्स, वो जो परसेप्शंस जो मेरे अंदर पहले से ही डीप रूटेड है, उसके लिए भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, क्योंकि which means that I cannot even blame the past.
0: ये subconscious. Oh ho, आजकल तो इतना ज्यादा बार बात ये करती है कि how I my subconscious reacts. मैं उसके लिए responsible नहीं हो सकता, मुझे पता ही नहीं चलता how I react.
1: Yes. क्योंकि हमारा जो action और reaction है वो बहुत ज्यादा उस पर based होता है कि जो मैंने पहले अपने अंदर भरा हुआ है, कल की information जो भरी है, 10 साल पहले जो हुआ था, बचपन में जो हुआ था, हमारी आज जो पर्सनालिटी है, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ जो यू नो इन माय चाइल्डहुड क्या मेरे अंदर फीड हुआ, कौन से मेरे बिलीव्स, मेरे परसेप्शंस बचपन से जो बने हैं वो सबकॉन्शियस लेवल पर आज मेरी पर्सनालिटी पर वर्क करते हैं। तो फिर हम तुरंत कहते हैं कि इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं, यू नो फॉर एग्जाम्पल आपका चाइल्डहुड किस वातावरण में था, आपके पेरेंट्स ने कैसे आपको ब्रिंग अप किया, तो वो सब चीजें आपके बिलीफ्स और परसेप्शंस को बनाता है, लेकिन इसका मतलब भी हम किसी को ब्लेम कर रहे हैं और कुछ नहीं तो अपने ही पास्ट को ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ही ये है कि

0: टू बी अवेयर कि ये सारी चीजें मेरे अंदर पास्ट में अक्यूमुलेट हुई हैं, लेकिन अब मुझे क्या करना है। वो जो आपने कहा ना सबकॉन्शियस, मतलब जो अनकॉन्शियस लेवल पर भरा हुआ है उसको मुझे अनकॉन्शियस लेवल से कॉन्शियस लेवल पर लेकर आना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा बिलीफ है, और फिर उसको चैलेंज करके उसको चेंज भी करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अगर मेरी जो आज व्यवहार है इट इज बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट, तो भी तो बाय ब्लेमिंग द पास्ट देन आई एम कंटिन्यूइंग टू लिव इन द पेन कि आज मैं दर्द में इसलिए जी रही हूँ क्योंकि बचपन से मेरे साथ ऐसा हुआ। आई मेट अ लेडी हु वॉज फिजिकली अब्यूज इन हर चाइल्डहुड एंड लगभग आई थिंक 25 या 30 साल उसने वो बात को पकड़ कर रखा हुआ था, एंड whatever she is today, she feels it's because of her past. And वो कहीं ना कहीं उसमें से निकलने का तो प्रयास ही नहीं किया क्योंकि सोचा कि इसमें मेरी तो कोई गलती ही नहीं है। तो जो bitterness है अंदर, जो दर्द है, हर एक को किस पर ब्लेम कर दिया कि मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ। तो मेरे अंदर ये bitterness है कि ये जो दुनिया है ये अच्छी नहीं, रिश्ते जो है ये अच्छे नहीं, so now my present and my future वो भी तो दर्द में ही चल रहा है। लेकिन अगर पास्ट में ऐसा कुछ हुआ भी है जिसने मेरा कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम बनाया है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स नाउ टू चेंज। एंड रियली व्हाइल वॉचिंग दिस प्रोग्राम रेगुलरली, बिकॉज वो अपने ऊपर बहुत अच्छा मेहनत कर रही है इस प्रोग्राम को देखकर, और जिस दिन उसको ये समझ में आया कि मेरा जो दर्द है वो मैं क्रिएट करता हूँ, नो वन एल्स कैन हर्ट मी, शी जस्ट लेट इट गो लाइक दैट, just like that. And after the program she got up and she said, after 25 years today I'm free. Ab jo wo past mein incident hua tha wo to 25 saal pehle ki baat hai, lekin aaj ek minute mein aapne apne aap ko us dard se mukt kar diya jab aapne realize kiya ki ye create kaun kar raha hai,
1: maine kiya create. Lekin hum chhodte kyun nahi hai sabse shivani, agar ye itna aasan hai to hum usko pakde, aur humme se har koi pakde rehta hai past ka nahi to aane wale ka dar ya past ka koi na koi cheez ko, aur agar hum tatole to humne abhi bhi pakde hue honge wo, hum kyun nahi chhodte?
0: कहीं ना कहीं हमें ये भी तो नहीं पता कि हमने पकड़ा हुआ है। हमने सोच रहे हैं कि ये जो मैं दर्द, दैट इज वाई हम वो बात, मतलब भले वो बहुत रेपिटेटिव हो रही है कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट एंड फीलिंग, ये आप दिन में जितनी बार भी अपने आप को बोलोगे वो कम है क्योंकि बार बार बोलने के बावजूद भी हम रिएक्ट करते हैं। तो अगर आपने मेरे साथ कुछ भी किया है लेकिन आज जो मैं दर्द क्रिएट कर रही हूँ वो तो फिर भी मेरी क्रिएशन है। अभी क्या हो रहा है, जो आपने कहा हम क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं मैं नहीं क्रिएट कर रही, आपने किया ही ऐसा
1: कि मैं कुछ दर्द हो ही रहा है, मैं छोड़ ही नहीं सकती।
0: इट्स टू हिट कि ये दर्द कौन क्रिएट कर रहा है, मैं क्रिएट कर रही हूँ, नाउ लेट गो।
1: और मैं क्रिएट कैसे कर रही हूँ, उस थॉट को बार बार याद करके, उस इंसिडेंस को याद करके।
0: एब्सोल्युटली,
1: एक्चुअली इफ यू लुक एट इट, अगर हम देखें अपने साथ तो बार बार उस एक्सपीरियंस से हम गुजरते हैं, फिर वो सब कुछ जो हुआ उस टाइम पे वो सब,
0: तो हम बार बार उस दर्द से गुजरते हैं एंड कहीं ना कहीं फिर हमारे वो यू नो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में फिर वो दर्द का पैटर्न, और वो एक होता है ना जैसे कहते हैं ना कि एक जैसे लाइन आपने बनाई, फिर उसके ऊपर बनाते गए, तो फिर वो कितना डीप हो जाता है वो, तो फिर वो लगता है कि अब ये हील नहीं हो सकता क्योंकि हमने उसी थॉट को फिर क्रिएट किया। अब वो जो एक मिनट हमें स्टॉप करके पॉजिटिव करना है तो हमें पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना है, और उसको तो आप कितनी बार भी क्रिएट करते रहो, इट इज हेल्दी फॉर यू। लेकिन वो बार बार पास्ट का इंसिडेंट जो हम पकड़ते हैं, तो इसलिए पास्ट को भी कि नहीं मेरा बचपन ही ऐसा था, या मुझे तो कई बार कहते हैं मुझे तो बचपन से यही सिखाया गया है ना, see, so whatever I am today, it is because मुझे बचपन में यही सिखाया गया है, self responsibility, कि जो भी वो beliefs हैं जो बचपन से बने हैं आज उनको check करें, अगर उनमें से कोई ऐसा belief है जो दर्द के लिए जिम्मेवार है, stop, check, change. Even as simple as tension तो normal ही है ना, Now we have understood कि वो normal नहीं है, भले मुझे बचपन से सिखाया गया था कि exam से पहले tension तो होती ही है, result से तो ये मैंने सोचा normal है, but actually no.
1: लेकिन self-responsibility, things that people say that no pain, no gain.
0: Yeah, many people say that.

0: नो पेन नो गेन बिकॉज दे फील कि जब तक वो दर्द का अनुभव नहीं करेंगे तब तक उनको खुशी का महत्व नहीं पता चलेगा. बट इट्स अ चॉइस. आई ऑलवेज आस्क दोस पीपल कि क्या आपको स्वास्थ्य का महत्व तब पता चलता है जब आप बीमार पड़ते हैं. सो डू यू वॉन्ट टू से कि मैं हेल्दी भी रहूं लेकिन मैं बीमार भी पड़ती रहूं बीच बीच में तभी मुझे पता चले. डज एनीबडी एवर से दैट? तो फिर तो आप अपने शरीर का मत ध्यान रखो उतना ताकि बीच बीच में बीमार पड़ते रहो. डू यू एवर वर्क इन लाइफ विद दिस फोकस कि नहीं कभी कभी तो बीमार पड़ना चाहिए. हु एवर वर्क्स लाइक दैट वी ऑलवेज से कि नहीं हमेशा हेल्दी रहना चाहिए. तो अगर शरीर हमेशा हेल्दी रहना चाहिए ये भी तो हमेशा हेल्दी रहना चाहिए. हाउ कैन बी से कि जब तक दर्द नहीं होगा
1: अच्छा. अनदर थिंग विद सम पीपल से बहुत बार लोग बोलते हैं कि मुझे दर्द में रहना अच्छा लगता है बट आई डोंट माइंड पेन.
0: या दैट्स बिकॉज आई डोंट सी एनी अदर वे टू कम आउट ऑफ इट. से वही बात होती है ना जब कोई चीज से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है तो हमने अपने आप को उसके के अंदर फिट कर लिया है और हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये मेरे जीवन का हिस्सा है और उस दर्द के साथ जीना ही सीख लिया है. एंड इट्स नॉट सम आई थिंक लॉट ऑफ अस हम में से मेजोरिटी ने दर्द के साथ जीना ही सीख लिया है. और कहीं ना कहीं आई फील विद अ प्रोग्राम लाइक दिस दिस कम्स एंड हिट्स कि रियली इज देयर अ वे कि हम दर्द से भी बाहर निकल सकते हैं. हमने तो सोचा था ये बीमारी हमारे साथ एंड पे चलने वाली है. ये ना हमने उस बीमारी को स्वीकार कर लिया था. अब क्या होता है जैसे हम ऐसे कोई ज्ञान की बातें सुनते हैं तो हमें लगता है ओ यस बट देन द अदर थिंग दैट हिट्स इज कि वो सारा काम मुझे करना पड़ेगा.
1: वो चेंज मुझे होना पड़ेगा. आई मेट समबडी एंड शी सेड मुझे पता है मैं बहुत दर्द में हूँ लेकिन मैं इस थॉट को भेज जाने नहीं दे सकती. So what we can say, what we can do is maybe create a positive thought.
0: That's all that we have
1: Let
0: to do.
1: Let that thought also stay. जो thought आपके पास है जिससे आपको बहुत मोहब्बत हो गई है उसको भी रहने दे. लेकिन एक हम positive thought create करें.
0: Seriously, इसलिए negative को खत्म नहीं कर पा रहे. It's okay. आप positive create करो. It's like you know वो कहते हैं कि एक बर्तन गंदे पानी से भरा हुआ है. आप उस बर्तन को खाली नहीं कर पा रहे. आप ऊपर से अच्छा पानी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ. Finally
1: गंदा
0: निकल जाएगा. सो यस वी और परमात्मा आकर यही तो करते हैं. परमात्मा शिव बाबा ज्ञान की बूंद बूंद बूंद डालते जाते हैं. थोड़े समय के बाद वो बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ हो जाता है. अगर हम पहले वेट करें कि बुद्धि से सारे जो वाइसेस हैं सारी जो नेगेटिविटी है वो पहले खाली हो और फिर ज्ञान उसके अंदर भरे तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. ज्ञान जितना भरता जाता उतना ये जो नकारात्मक और व्यर्थ बातें हैं वो अपने आप खाली होते जाते. तो जैसे वी कैन नॉट ब्लेम एनीवन एल्स वी कैन नॉट ब्लेम पास्ट आल्सो. उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ही लेनी है. और तीसरा जो आपने पहले ही कहा कि नो पर्सन इवेंट और सिचुएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हैप्पीनेस. अपनी खुशी की जिम्मेवारी नहीं तो कोई ना कोई कंडीशन हमेशा बनी हुई है जिस ये होगा तो मैं खुश रहूंगा. इवन इन यू नो व्हेन पीपल सी देयर पर्पस ऑफ लाइफ तो वो कहेंगे मुझे ये गोल अचीव करना है ये मेरा एम्बिशन है मुझे ये बनना है जब ये हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा. व्हाट डज दैट मीन? मतलब आप इतना टाइम दर्द में रहेंगे और फिर एक साल के बाद या पांच साल के बाद जब आप उस एम्बिशन को अचीव कर लेंगे तब आप खुश होंगे? इट विल नॉट बी पॉसिबल. अगर आपने पूरा प्रोसेस ही दर्द में बिताया एंड फिर आप खुश होंगे? सो परमात्मा कहते हैं खुश होंगे नहीं खुश रहकर आप उस गोल को अचीव करेंगे. दर्द में जाके सीढ़ी नहीं चढ़नी है. सीढ़ी के एंड पर पहुंच तो जाएंगे आप अपने लैडर में जो आपने अपने लिए सेट किया लेकिन इमेजिन अगर आपको एक एक स्टेप दर्द में चढ़ना पड़े तो हाउ विल बी द क्लाइंब?
1: ओहो इट इज गोइंग टू बी सो डिफिकल्ट. इन फैक्ट इट्स जस्ट वन चेंज ऑफ थॉट. एक परसेप्शन तो चेंज करना है.
0: That I have to be happy and do this. अब अगर ये जो हमारा ladder है of goals and ambitions, अगर हम एक एक step दर्द में चढ़े तो शायद जब हम ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच भी जाएंगे how will the feeling be?
1: We'll be too tired to enjoy that.
0: So we will not really enjoy. और फिर वहां पहुंचने के बाद तब तक हम अपना next goal set कर देंगे और फिर दर्द में चलेंगे. और इसीलिए हमने इस सीरीज की इस प्रोग्राम की शुरुआत ही इस बात से की थी कि हैप्पीनेस इज नॉट द डेस्टिनेशन हैप्पीनेस इज द जर्नी. तो खुशी को व्यक्तियों पर भी नहीं डिपेंडेंट करना है इवेंट्स पर सिचुएशंस पर. हम लोग आज अगर सारा दिन में चेक करें ना हमने बहुत चीजों पर डिपेंड किया हुआ है. मेरे बच्चों के मार्क्स अच्छे आएंगे तो खुशी होगी प्रमोशन होगा तो खुशी होगी या छोटी इवन

0: छोटी छोटी बात, अगर बहन ने सारा दिन में खाना बनाया, बहुत अच्छी तरह से मेहनत की, रात को मेरे हस्बैंड आएंगे, वो आकर अप्रिशिएट करेंगे कि खाना बहुत अच्छा बना है, तो मुझे बहुत खुशी होगी. तो द होल डे वाइल कुकिंग द फूड शी क्रिएट्स दैट सीन, यू नो दैट माई हस्बैंड विल कम इन द नाइट, ही विल अप्रिशिएट द फूड एंड शी इज वेटिंग कि जब ये सीन होगा शी विल बी वेरी हैप्पी. अब वो आए, वो अपने किसी मूड में है या अपने किसी टेंशन में है, चुपचाप खाना खा लिया, कुछ बोला ही नहीं, खुशी कहां गई.
1: और वो वेट ही चलती रहेगी फिर,
0: और अब वो दर्द हो गया. तो आपने सारा कुछ तो किया.
1: सबसे बड़ी बात है आप उनको ये तो कह नहीं पाते कि आपने अप्रिशिएट नहीं किया, मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि खुद को ही नहीं पता चली है बात.
0: वो भी कह देते हैं, हम तो कई बार आपने बोला भी नहीं, मैंने सारा दिन इतनी मेहनत की, आपने ये भी नहीं बोला कि खाना अच्छा है. तो आप देखो मेरी खुशी कितनी छोटी छोटी चीजों पर डिपेंडेंट है कि जब तक आप नहीं ये बोलोगे कि ये खाना अच्छा बना, आई एम नॉट गोइंग टू बी हैप्पी. आपने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी, लेकिन जब तक चार लोगों ने ये नहीं बोला कि आपकी ड्रेस बहुत सुंदर है, तब तक वो खुशी का अनुभव नहीं हो रहा. सो आई कीप वेटिंग वेटिंग कि कौन अप्रिशिएट करेगा, कितने डिपेंडेंट. और फिर अगर चार लोगों ने बोल दिया बहुत सुंदर है, लेकिन किसी एक ने बोल दिया
1: कि नहीं सूट खराब है, ओफ,
0: यस, हाउ मच माई स्टेट ऑफ माइंड इज एवरी टाइम डिपेंडेंट.
1: और कितनी क्षण भंगुर है, मतलब कितनी देर के लिए है, इट्स जस्ट देयर एंड देन गॉन, टच एंड गो.
0: सो दिस इज नॉट सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज अगेन डिपेंडेंसी, कि हमेशा किसी न किसी पर डिपेंडेंट है. और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात हमें याद रखनी है वो ये कि जैसे हमारी मन की स्थिति का कोई भी जिम्मेवार नहीं है, औरों की मन की स्थिति के हम जिम्मेवार नहीं है. दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट.
1: एंड वी गेट इनटू सो मच ऑफ गिल्ट,
0: यस,
1: कि मेरी वजह से उसको ऐसा हो रहा है, कि मैं ये कर देता हूँ या मैं कुछ ऐसे भी. यस, सो मेनी टाइम्स इवन चिल्ड्रन, कितनी बार देखा गया है ग्रोन अप चिल्ड्रन सिर्फ ये कि मेरी माँ को अच्छा लगेगा कि मैं ऐसे एक्ट करूँ, वो एक्ट करते हैं. स्पेशली लड़के और मदर के जो रिलेशनशिप में देखा है, मतलब जो कितनी बार की उन्हें लगता है कि हमारी माँ ने हमारे इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, तो मैं उसको खुश करने के लिए थोड़ा सा ये.
0: सो मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि अगर कोई हमारे सामने दर्द में है, परिवार का, फैमिली, कोई मेंबर या ऑफिस में, तो कहीं ना कहीं वो यू नो इमोशनल ब्लैकमेल जो वर्ड हम यूज करते हैं, कि वो अपने इमोशंस के साथ हमें थोड़ा सा वो करने की कोशिश करते हैं, आपकी वजह से मैं ये दर्द में हूँ, आपकी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है. और जब मुझे कोई बार बार ये कहता है कि आपकी वजह से मैं दर्द में हूँ, आपकी वजह से मैं दर्द में हूँ, मैं दर्द में चले जाती हूँ.
1: अरे मैं सोचने लग जाती हूँ, मैं मान लेती हूँ, इवन इफ आई नो कि मैंने कुछ नहीं किया हुआ, इट जस्ट स्टार्ट थिंकिंग कि शायद आई एम रिस्पॉन्सिबल, यू नो.
0: सो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी वन एल्स हिज पेन और फॉर एनी वन एल्स हिज हैप्पीनेस. Like no one else is responsible for my pain and my happiness, I am not responsible for anyone else's pain or anyone else's happiness. हाँ भले हम अपने संबंधों में जितनी हमारी कैपेसिटी हम सब कुछ करें, लेकिन इस बात से दर्द में चले जाएं कि दूसरा मेरी वजह से दर्द में है, क्योंकि सिर्फ वो ऐसा कह रहे हैं. वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो खुद नहीं जानते,
1: उनको नहीं पता है, बिल्कुल ये.
0: वो खुद नहीं जानते, लेकिन उनको हेल्प करने के बजाय हम ही विक्टिमाइज हो जाते हैं कि वो दर्द में इसलिए है क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया. अगेन वी विल हैव टू रिमेम्बर, मैंने जो किया वो तो किया, लेकिन उनका दर्द किसने क्रिएट किया, वो उन्होंने किया. दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट. इससे हमारी जो कहे ना स्टेट ऑफ माइंड बहुत हल्की हो जाती है. दिस डज नॉट मीन कि हम इनसेंसिटिव हो जाएं. अगेन देर इज ऑलवेज अ थिन लाइन, लेकिन हम दर्द में ना चले जाएं ये सोचकर कि औरों का दर्द हम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम दर्द में चले गए ये सोचकर, फिर हम उनको क्या ट्रांसमिट करेंगे.
1: जहां हम खुद दर्द में चले जाते हैं और वो दर्द में है, तो हम उनकी हेल्प ही नहीं कर पाते बिल्कुल.
0: एब्सोल्युटली,
1: क्योंकि हम तो गिल्ट में चले गए.
0: तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और किस चीज के लिए नहीं है. अब आप देखो वी एक्चुअली वर्क द अदर वे अराउंड सारा दिन. हमें लगता है हम अपनी मन की स्थिति के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन औरों की मन की स्थिति के लिए हम रिस्पॉन्सिबल.
1: मैंने उसको दुख दे दिया, मैंने उसको खुशी दी, मैंने उसको हर्ट किया, मेरी वजह से ऐसा हुआ.
0: द होल फ्लो ऑफ एनर्जी गोज द अदर वे अराउंड. हम समझते मेरी मन की स्थिति के जिम्मेवार और लोग हैं और औरों की मन की स्थिति का जिम्मेवार मैं हूं. वेयर इज द इक्वेशन इज टोटली द अदर वे अराउंड. अपनी मन की स्थिति का जिम्मेवार मैं, आई हैव टू रिमेम्बर दैट.

0: एंड आई हैव टू रिमेम्बर कि औरों की मन की स्थिति के जिम्मेवार वो है. तो अगर वो किसी टर्मोइल से गुजर रहे हैं उनको उस पर वर्क करना पड़ेगा. दैट इज गोइंग टू बी देयर जर्नी. मैं उसमें क्या हेल्प कर सकती हूँ उनके लिए, दैट इज ओके. बट फाइनली मैं किसी को दर्द से मुक्त नहीं कर सकती. दे विल हैव टू डू दैट. फॉरगेट एनीवन एल्स. आई माय पर्सनल एक्सपीरियंस वुड से कि इवन गॉड कैन नॉट फ्री मी फ्रॉम माय पेन जस्ट बाय मैजिक. आई कैन यूज हिज पावर, यूज हिज नॉलेज टू फ्री माय सेल्फ फ्रॉम माय पेन. But if he wants that he should free me from my pain, no, he can't. No one else can do it for me.
1: Oh, अगर मैं पकड़ के बैठी हुई होंगी उस thought को, जैसे शिवानी, अगर मैंने छोड़ना ही नहीं है उस पूरे thought process को, तो कोई सचमुच में भगवान भी आके नहीं कर सकता.
0: Exactly. तभी कहा जाता है कि भगवान भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता इसमें. तो और मनुष्य आत्मा क्या करेगी? भगवान भी ना हमें दर्द से मुक्त कर सकता है और ना परमात्मा हमें खुशी दे सकता है. परमात्मा हमें शक्ति दे सकता है उसको जेनरेट करने की. परमात्मा हमें नॉलेज दे सकता है कि मुझे कैसे क्रिएट करना है. लेकिन परमात्मा ऐसे ही दे दे, इट डजंट हैपन. व्हाई? बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट एंड फीलिंग, नॉट गॉड एंड नॉट एनी अदर ह्यूमन बींग. जिस दिन ये लाइन पूरी यहाँ पर अच्छी तरह से फिट हो जाए, द वे ऑफ लुकिंग एट एवरीथिंग चेंजेस. एब्सोल्युटली. एंड फिर सारा कुछ मेरे कंट्रोल में आ जाता है.
1: अच्छा, लेकिन अगर हम सिचुएशन देते हैं, अगर हम देखें कि हमें खुशी जो हमारा क्रिएट, मैंने ही क्रिएट किया, अगर अब मैं देखती हूँ तो, लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी थी और उसने मुझे खुशी दी या मुझे दुख देना शुरू हुआ, मेरा ये मन करता है कि ये सिचुएशन बदल जाए तो मैं जो है खुश हो जाऊंगी. तो यहाँ मैं परमात्मा से ये एक्सपेक्ट कर रही होती हूँ कि वो सिचुएशन बदल देगा.
0: परमात्मा से भी जो मदद लेनी है वो सिचुएशन को चेंज करने के लिए नहीं
1: लेनी. तो यही करते हैं.
0: हाँ, तो सारा दिन भगवान के आगे अर्जी कौन सी डालते हैं? यही तो करते हैं. मेरा ये ठीक कर दो, मेरा उनको ठीक कर दो, ये भी अर्जी डालते हैं. मुझे शक्ति लेनी है और मुझे अपने ऊपर काम करना है. तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. दैट इज व्हाई इट इज सेड कि अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार है तो परमात्मा की मदद हमेशा साथ में है. सिर्फ अर्जी डालेंगे कि सिचुएशन चेंज कर दो, इट विल नॉट हैपन.
1: इनफैक्ट मैं तो ये कभी समझ ही नहीं पाती थी कि अपनी मदद कैसे करनी है. मदद तो हमेशा दूसरों की करनी होती है. तो ये यू नो दिस इज लाइक आई थिंक लॉट ऑफ पीपल थिंक दिस वे कि अपनी मदद मैं कैसे करूं, मतलब अपनी मदद क्या करनी है. मदद तो हमेशा दूसरे के लिए करनी होती है. लेकिन यही एक बहुत बड़ा परिवर्तन है ये, जिसको समझना बहुत जरूरी है. सबसे पहली मदद तो अपनी करनी है.
0: अपनी ही, हर एक अपनी ही कर सकता है. क्यों आप कह रहे हैं कि दूसरों की करनी है? क्योंकि हमने सोचा कि हम दूसरों की थॉट्स और फीलिंग्स क्रिएट करते हैं. यू नो इवन सिंपल लाइक सपोज मैं किसी बात से हर्ट हूं तो मैं जाकर दो चार लोगों से बात करती हूँ. आपको पता है मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ. एंड आई फील कि वो जो मेरे से फॉर अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें करेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी. लेकिन उन्होंने मुझे नहीं ठीक किया. उन्होंने जो शेयर करना है वो किया. अब मैंने क्या किया? इफ आई हैव द पावर आई टेक दैट पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन एंड देन आई वर्क विद इट. नाउ फॉर एग्जाम्पल इवन दिस प्रोग्राम या परमात्मा का हर एक महावाक्य जो हम इस पर शेयर कर रहे हैं, सुन तो सभी रहे हैं ना. लाखों की संख्या में सारे विश्व में आत्माएं इस ज्ञान को सुन रहे हैं. लेकिन हरेक के ऊपर मैजिक तो नहीं हो रहा ना कोई कि सुनने से ही वो काम हो जाएगा. अब हरेक उसको लेकर अपने साथ क्या करता है? क्रिएट तो उसी को करना है. तो ऐसे ही जब हम किसी के पास जाते हैं कि मुझे राय दो कि हाउ टू आई कम आउट ऑफ दिस, वो सिर्फ राय दे सकते हैं. बाकी काम वो तो मुझे करना होगा. हम काउंसलर के पास जाते हैं, हम साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं, हम फ्रेंड्स के पास जाते हैं कि दे विल हेल्प मी टू कम आउट ऑफ माय पेन. नो वन कैन हेल्प मी टू कम आउट ऑफ माय पेन. दे कैन से व्हाट दे वांट, दे कैन शेयर व्हाट दे वांट, दे कैन ट्रांसमिट पॉजिटिव एनर्जी ऑल्सो, बट फाइनली आई विल हैव टू कम आउट ऑफ माय पेन. तो अनलेस आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ माई पेन, the whole world put together cannot do anything. ये काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा. और ये काम बहुत ईजी हो जाएगा जब समझ में आ जाएगा आई एम द क्रिएटर. आई एम द क्रिएटर सो आई एम द डिस्ट्रॉयर. ये दर्द मैंने क्रिएट किया था तो इसको खत्म भी
1: मैं
0: मुझे
1: मेरे अपने ही हाथ में है. तो आप में से जितने भी लोग दर्द से गुजर रहे हैं, कई बरसों से, कई सालों से या कुछ टाइम से, अभी वक्त है कि आप अपने आप से कहें कि मैंने क्रिएट किया है तो मैं खत्म भी कर सकता हूँ, और आज ही प्रयास करें कि हम उसे खत्म कर देंगे। सुधा शिवानी, थैंक यू सो मच। जो आज हमने बात की है, जिस तरह से बातें क्लियर होती जा रही हैं कि कहीं ना कहीं ये जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमारी अपनी है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे उस जिम्मेवारी को उठाना है, मदद जो लेनी है मुझे वो अपनी लेनी है। और जो एक बहुत आपने आज जो बहुत बड़ी बात हमारे सामने आई है हमारे सभी दर्शकों के साथ, कि दूसरे के दर्द के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं, मुझे जिम्मेवारी अपने दर्द की उठानी है या अपनी खुशी की उठानी है। इसीलिए दूसरे की को ना मैं खुशी दे सकता हूं ना मैं उसको दर्द दे सकता हूं, उसका दर्द भी अपना क्रिएट किया हुआ है। तब हम दूसरों की मदद कैसे करेंगे, इस पर हम आगे आने वाले एपिसोड्स में चर्चा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे बहुत अपने होते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
0: ओम शांति।
1: आप सबसे भी बार बार हम यही आग्रह करते हैं, ये प्रोग्राम आपका अपना है। जहां कोई ऐसी बात लगती है कि जो नहीं समझ में आ रही, लगता है कि ये कैसे संभव हो सकती है, या फिर आपको लगता है नहीं बात तो अच्छी है, सही बात है, पर मैं इसको लागू कैसे करूंगा, तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें, ताकि आप ही का जो रिस्पांस आता है वो आपकी रिस्पांसिबिलिटी बन जाती है, कि आप जरूर अपनी रिस्पांसिबिलिटी को निभाएं और हमारे साथ शेयर करें कि आपको कहां लगता है कि बात समझ में नहीं आई है, या प्रैक्टिकल अनुभव में जब आप कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं भी साथ साथ कोशिश करती हूँ, जैसे हम कोशिश करेंगे जहां जहां रुकते जाएंगे वहां हम उसको आगे लेते जाएंगे। बहुत सी बातें अभी और करनी है, लेकिन आपसे हम यही आग्रह करेंगे कि आप अपना फीडबैक भेजें। आप हमें फोन पर संपर्क करें या फिर ईमेल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0999-344-666, 0987-3-444-666, 0999-944-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@pkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, इसमें इन दिनों हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की, और सेल्फ मैनेजमेंट की पहली जो सीढ़ी है वो है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यानी कि मैं स्वयं के प्रति जिम्मेदार हो जाता हूँ, जिम्मेवार हो जाता हूँ। ये जिम्मेवारी आप उठाना चाहते हैं, बिल्कुल आप उठाएंगे तभी वो परिवर्तन संभव हो पाएगा। आज आपसे हम विदा लेते हैं। ओम शांति।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूं, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में, तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माय कंट्रोल, सो दैट इटसेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियाँ बांटो।
2: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी, लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा। कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलतं।
3: अश्विनी ये ना, ये ना।
2: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं।
4: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे।
2: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत। या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदी रहा, आनंद लुटा। गाण्यांच्या सुरात दडलेली संस्कारांची गोडी, पिढ्यानपिढ्या चालत असलेल्या परंपरेचा गंध आणि मनाला स्पर्श करणारी भावांची संगती, आणि हे सगळं ऐका फक्त आपल्या पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदी रहा, आनंद लुटा।

0: तीन तरह के थॉट्स हम क्रिएट करते हैं। सबसे पावरफुल और डैमेजिंग थॉट्स, जो टॉक्सिक थॉट्स जिनका हम देखते हैं, उनका हमें पता चल जाता है कि किस तरह से, चाहे वो गुस्सा है, नफरत है, या ये सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। और दूसरी तरफ देखें तो हमारे साथ पॉजिटिव थॉट्स हैं, राइट थॉट्स हैं, एलिवेटेड थॉट्स हैं। हमारे साथ जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल और ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी दोनों हैं, उनसे बात करते हैं इस थॉट पावर के बारे में। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, जो डिफरेंट तरह के थॉट्स हम क्रिएट करते हैं उनको हमने डिटेल में जानने की कोशिश की है, अभी बात हमने करनी है राइट थॉट्स और एलिवेटेड थॉट्स। व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय राइट थॉट्स?
1: सबसे पहले तो पॉजिटिव थिंकिंग लोगों को मुश्किल लगता है, परंतु एक आम व्यक्ति भी इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि परिस्थिति जैसी है वैसी ही हमें देखनी चाहिए। म्यूजियम में जब हम जाते हैं, कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस में नहीं, कोई मोटा दिखता है, दुबला दिखता है, ऊंचा दिखता है, तो हम हंसते हैं, अच्छा नहीं लगता है। परंतु सचमुच यही हम अपने जीवन की परिस्थितियों के साथ कर रहे हैं, परिस्थितियों को विकृत रूप दे रहे हैं। ऐसा तो कम से कम नहीं करना चाहिए। परिस्थिति जैसी है वैसी ही देखे। करीब 9 अलग अलग प्रकार के मिरर्स में हम अपने आप को देखते हैं। इसको कहेंगे रॉन्ग थॉट्स। उस रॉन्ग थॉट्स को समझ लेंगे तो फिर राइट थिंकिंग करना भी सहज होगा।
0: ओके, तो मतलब किस तरह से जो है वो हम अपने जो पूरी सिचुएशंस हैं उनको देखें। इनफैक्ट जैसे शिवानी, जो पिछली बार बात हुई थी कि पॉजिटिव थॉट्स क्या है, कैसे क्रिएट किया जाए, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि वो क्रिएट नहीं कर पाते। यू नो, समझ भी रहे हैं क्योंकि फील गुड के साथ हमने जोड़ा था कि वेदर इट्स अ पॉजिटिव थॉट और अ नेगेटिव थॉट, लेकिन वो हो नहीं पा रहा प्रैक्टिकली। यहाँ बैठ के फॉर्मूला की तरह बात करें तो लगता है कि ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में डे टू डे सिचुएशंस में आते हैं, इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट।
2: छोटी सी एक्सरसाइज करके देखें। एक, कुछ समय के लिए अपने आप को नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से बचा के रखें। अर्ली इन द मॉर्निंग न्यूज़पेपर, टू मच ऑफ न्यूज इन द टेलीविजन, बहुत सारे विजुअल्स एंड ऑडियो जो हम नेगेटिव भर रहे हैं, ये हमारे नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं। तो कुछ दिन के लिए एक एक्सपेरिमेंट की तरह नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करें और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन अपने अंदर भरना शुरू करें। हम कई बार ये बात कर चुके हैं कि ब्रह्मा कुमारीज के 130 कंट्रीज में 8500 से ऊपर सेंटर्स हैं। इतने सेंटर्स क्यों चाहिए? हर शहर में हम जहां भी रहते हैं विद इन 5 to 6 किलोमीटर्स एक सेंटर है। ये किस लिए चाहिए? ताकि सभी भाई बहने वहां पर आकर आधे घंटे के लिए, चाहे सुबह चाहे शाम, प्रेफरेबली सुबह, परमात्मा का वो ज्ञान लेते हैं, विच इज द हाइएस्ट सोर्स ऑफ प्योर पॉजिटिव एलिवेटेड इन्फॉर्मेशन। तो हमने अपने जीवन में क्या परिवर्तन किया कि सुबह सुबह अखबार रेडियो टेलीविजन की बजाय सुबह सुबह ज्ञान लेना शुरू किया। इतना सा परिवर्तन, पॉजिटिव थिंकिंग नेचुरल होने लगा। जो भोजन खाएंगे वही एनर्जी क्रिएट होगी। तो एक तो ये ट्राई करें कि नेगेटिव इन्फॉर्मेशन स्टॉप, ट्राई टू क्रिएट कुछ एक सोर्स ऑफ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ले। दूसरा, सारा दिन कॉन्शियस अटेंशन। और तीसरा, जैसे पहले भी गिरीश भाई ने कहा, लिखो, लिख दे ये नेगेटिव थॉट मेरे अंदर आ रही है, लेट्स से ये काम मेरे से नहीं हो पा रहा। मैं करने की भी कोशिश करता हूँ ना, लोग इसमें ऑब्स्टिकल डालते हैं, यू नो द होल सीरीज। राइट इट डाउन और अब बैठकर उसका पॉजिटिव लिखें कि इस सिचुएशन में मुझे पॉजिटिव क्या सोचना है। इट्स लाइक अ चाइल्ड लर्निंग टू राइट एंड रीड, नाउ लर्निंग टू थिंक। हमने कभी राइट सोचना ये नहीं सीखा था। एक बच्चे की तरह हमें ABCD से इसको स्टार्ट करना होगा। तो लिखें, उस नेगेटिव को लिखें और फिर किसी और को अगर समझाते तो क्या पॉजिटिव समझाते उस समय, तो अपने आप को वो पॉजिटिव समझाएं, उसको लिखें। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, बहुत जल्दी इट विल बिकम अ नेचुरल प्रोसेस।
1: एक्सरसाइज करने से मसल स्ट्रांग हो जाते हैं, तो एक्सरसाइज करेंगे तो आपका माइंड स्ट्रांग हो जाएगा।
0: डॉक्टर पटेल, आपने कहा कि कई तरह के राइट थॉट्स हैं, अगर पॉजिटिव हम नहीं भी क्रिएट कर पाए, आपने हमें थोड़ी सी सहूलियत दी थी कि जो भी सिचुएशन है उसको वैसे ही देखें, लेकिन शायद हम भी अवेयर नहीं है कि हम कौन से वो 9 मिरर्स लगाकर हैं, वो हमारे साथ अगर आप शेयर करें।
1: सबसे पहला तो है कि मैग्नीफाइंग मिरर, कि परिस्थिति है 20% प्रॉब्लम है लेकिन उसको हम 90% बना देते हैं,
0: हाइपर हो जाते हैं जो,
1: तो मैग्नीफाइंग ना करें। हम ये पहले जज करें, थोड़े डिटैच होकर कि समस्या है परंतु कितनी है, 10% समस्या है तो 10% ही मुझे सोचना है, उसको 15% भी नहीं करना है। ये मैग्नीफाइंग भी हम खत्म कर दे तो

0: क्योंकि हम उसके साथ इतने सारी चीजें अटैच कर रहे हैं ना, लोग क्या कहेंगे, इसका फ्यूचर क्या, इसकी शादी नहीं होगी, आगे करियर, मतलब सो मेनी थिंग्स वी विल अटैच. तो बात तो बड़ी लगेगी उस टाइम. अब हमें डिसाइड करना है उस सिचुएशन में कैसा सोचेंगे, तो सिचुएशन एकदम उतनी छोटी हो जाएगी.
1: ये भी पक्का कर ले, बस राइट थिंकिंग करना है ना, सही मिरर में अपने आप को देखना है, ऑल और नन के मिरर में बिल्कुल नहीं देखना है. तीसरी बात है जंपिंग टू कंक्लूजन, कि कुछ होता है तो तुरंत हम कुछ निर्णय पर आ जाते, बस ऐसे ही है.
2: और अब भी लेना डिसीजन, अब भी लेना, अब भी करना, यू नो, ये जो एक हमारे पास बिल्कुल वक्त ही नहीं रह गया कि अभी मैंने सिचुएशन में डिसीजन नहीं लिया तो कुछ कुछ गलत हो जाएगा. ये
1: व्यक्ति के बारे में भी हम वी जंप टू कंक्लूजन. एक कंपनी में प्रेसिडेंट थे, उस कंपनी का यूनियन लीडर सवेरे सवेरे उन्हें मिलने आया, सेक्रेटरी को आके कहा कि साहब को मिलना है. सोचा रही सवेरे सवेरे यूनियन लीडर, मतलब बहुत सारी डिमांड लेकर के आया होगा, बस समस्या होगी, अभी मॉर्निंग में नहीं चाहिए. उसको कहा कि कहो कि साहब अभी बिजी है, कुछ देर के बाद आना. फिर से आया, सोचा जरूर इसके बहुत डिमांड होगी. कहा नहीं नहीं थोड़ी देर के बाद आना, अभी साहब मीटिंग में बिजी है. ऐसे उस दिन वो 5 बार आया, लेकिन कोई ना कोई बहाना बता करके उसे वापस भेज दिया, क्योंकि जंप टू कंक्लूजन दैट यूनियन लीडर मींस प्रॉब्लम्स. फिर 7 दिन तक वो दिखाई नहीं दिया, 8वें दिन रास्ते में मिल गया. तो उन्होंने सोचा अभी तो पूछूं, अब तक तो उसकी डिमांड शायद बहुत कम हो गई होगी, अब उसको पूछता हूं और सोल्यूशन लाता हूं. तो कहा भैया क्या उस दिन तो आए थे, क्या प्रॉब्लम था? उसने कहा नहीं नहीं साहब वो काम तो हो गया. कहते नहीं नहीं बताओ कुछ तो होगा, मैं तुझे मदद कर सकता हूं. कहा नहीं नहीं साहब कुछ नहीं कर सकते. कहा नहीं कुछ तो कर सकते, बोलो क्या था. कहा नहीं नहीं साहब वो काम तो हो गया. कहते क्या हुआ? कहते साहब मेरे बेटे के मैरिज थे, मैं तुम्हें निमंत्रण देने आया था, कल ही मैरिज सेरेमनी पूरी हो गई, आज मैं काम पर आ गया, वो तो हो गया. तो देखो जंपिंग टू कंक्लूजन कि भी यूनियन लीडर मींस वो डिमांड लेकर के आया होगा, तो ये बहुत अच्छा सा मौका गंवा दिया.
2: तो उसके रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा
1: डेवलप होता उससे. तो ऐसा कभी नहीं करना, कुछ भी हो, नेवर जंप टू कंक्लूजन.
0: सो मेनी टाइम्स वी डू दैट,
1: हर परिस्थिति तो एक है. तो बस एनालिसिस करना है, क्या बात है, अच्छे से एनालिसिस करूं और फिर सोचूं कि क्या करूं.
2: और पहले सुन तो ले, पहले हम देख तो नहीं कि है क्या है.
1: ठीक से एनालिसिस
0: कर ले. रहे हैं हम उसको भी नहीं ले रहे होते, हम फिर भी कुछ और सोच रहे होते हैं,
2: पहले तय कर रहे हैं.
0: कोई अगर हमसे अच्छी तरह से भी बात कर रहा है, उसके पीछे भी हम सोच रहे होंगे इसके पीछे क्या, इसको क्या चाहिए मेरे से, ये मेरे से इस तरह से बात कर रहा है. वैसे यू नो सो मच, दिस इज ऑल्सो जम्पिंग टू सो मेनी कंक्लूजन्स. और उसकी वजह से वो जो अच्छी सीन भी आपके सामने आई थी, उसमें भी आपकी थिंकिंग किस तरफ चली गई, इट वेंट टूवर्ड्स रॉन्ग थिंकिंग. सो सिचुएशंस आर पॉजिटिव, लेकिन हमें आदत पड़ गई है उस पॉजिटिव सिचुएशन में भी कोई ना कोई इस तरह की रॉन्ग थॉट क्रिएट करने की.
1: जब भी थॉट है तभी सोचना है कि इसमें से कोई तो मैं नहीं कर रहा हूँ. चौथा है ऑलवेज मेंटेलिटी.
2: एक सेकंड पहले हम थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करते हैं कि पहला था मैग्नीफाई, ऑल और नन, मतलब या तो मुझे सब कुछ मिले या कुछ नहीं. एंड थर्ड इज जंपिंग टू कंक्लूजन. फोर्थ हमारे
1: फोर्थ इज ऑलवेज मेंटेलिटी. अच्छा. भी कुछ हुआ हम समझते सदैव मेरे साथ ही होता है.
2: अच्छा, ऑलवेज मी.
1: हाँ, ऑलवेज मी. कि जब अगर बॉस आपको डांट दे तो सोचते बॉस ऑलवेज मुझे ही डांटता है. या तो मुझे सदैव डांट पड़ती है.
2: मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है. हाँ. मेरे साथ जिंदगी में ये हो, मेरे अपनों के साथ होता रहता है. मेरे बच्चों के साथ ही होता है. मेरे साथ जिंदगी में ये चलता है.
1: मेरे साथ सदैव बुरा होता है.
0: विक्टिम फीलिंग.
1: बिल्कुल.
0: सो मच ऑफ अ विक्टिम फीलिंग कि ये मेरे साथ ही हो रहा है सारा कुछ.
2: लेकिन अगर ये होता जा रहा हो तो
1: नहीं, तब भी डिटैच हो गया. अगर सचमुच नहीं, कितना भी बुरा होता आप सोचेंगे ना, कुछ बातें अच्छी भी हुई है. भल कुछ बुरी भी हुई है, लेकिन 20% 25% अच्छी बातें भी हुई है. उसका भी एक लिस्ट रखना चाहिए कि भी अच्छी बातें हुई है. हो सकता है भी मास में एक बार कुछ हुआ, 6 मास में एक बार हुआ, सदैव नहीं होता है. ये भी इसमें राइट थिंकिंग करना चाहिए कि भल मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ, औरों के साथ और प्रॉब्लम भी होते हैं ना, क्योंकि मुझे अपना ही दिखाई देता है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि आई एम ओनली सफरिंग. तो इस प्रकार से जो ऑलवेज मेंटालिटी है उस पर भी विजय प्राप्त करना जरूरी है.
0: एक बार हमने एक काउंसलर से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा लोग आते हैं इतनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं अपनी, और उनकी प्रॉब्लम सुनने के बाद लगता है मेरी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. लेकिन उससे पहले हम अपनी इतनी सी भी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बनाकर बैठे थे. एक बार हम ऐसे एक ग्रुप में बैठे और हर एक से पूछा आपके जीवन में चिंता का कारण क्या है. एवरीवन जस्ट शेयर व्हाट्स द कॉज

0: योर स्ट्रेस। तो एक कपल था, उन्होंने कहा हमारे बेटे को चश्मा लग गया है, बहुत यंग एज में, छोटा सा था, अबाउट 7-8 ईयर्स ओल्ड, कि हमारे बेटे को चश्मा लग गया है, ये सोच सोच के तो हमें बहुत चिंता हो रही है। तो साथ में किसी और ने कहा कोई और प्रॉब्लम नहीं आई है ना सामने अभी, तो इसी बात को लेकर से मतलब एक मेंटालिटी बन गई है कि कोई ना कोई बात को लेकर तो मुझे करनी ही है वो थॉट। तो अब जैसे ही अब अगर ये थॉट है कि मेरे बच्चे को चश्मा लग गया, जिस दिन कोई और बड़ी बात आ जाएगी ये बात कोई बात नहीं लगेगी। और यही अगर हम प्रैक्टिस करें कि हर सीन में पॉजिटिव, तो कितनी भी बड़ी बात आ जाएगी हमें वो बात नहीं लगेगी। इट हैज बिकम आर यू नो पर्सनैलिटी, आर नेचर टू थिंक ओनली ऑन द वरी एंग्जाइटी नेगेटिव साइड। इसीलिए वो हर टाइम लगता है कि आई एम द विक्टिम, मेरे साथ थोड़ा सा भी कुछ मेरे साथ हुआ तो मेरे साथ ही ऐसा होता है। दिस इज अ वेरी डीप संस्कार जो हमारा बनता जा रहा है कि हर टाइम मेरे साथ ऐसा होता है, एंड हर टाइम जो मेरे साथ बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं दैट इज इग्नोर्ड।
1: क्यों नहीं, क्यों मुझे विक्टिम बनना आसान लगता है क्या? विक्टिम बनते ही जिम्मेदारी किसी और की हो जाती है, ऐसा है,
0: और उदास फील करना जस्टिफाइड हो जाता है।
1: पर हम उदास, अच्छा उदास तो हम फील, हम उदास फील तो नहीं करना चाहते ना, लेकिन हम फील कर रहे हैं,
0: उदास फील कर रहे हैं। अब हमें कोई चीज चाहिए जिसके ऊपर हम उसकी ब्लेम डालते हैं,
2: जस्टिफिकेशन
0: है ना कि सिचुएशन ही मेरे साथ हर बार ऐसी हो रही है, हाउ कैन आई बी हैप्पी, दैट इज द थिंग। जैसे कोई रीजन मिल गया ब्लेम करने के लिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, एंड आई टेल माई सेल्फ ये ठीक है, आप जैसा फील कर रहे हो ऐसा ही फील करना है इस परिस्थिति के अंदर, एंड देन वी लिव विद दैट पेन फॉर अ लॉन्ग टाइम।
1: हमने कितनी सारी अपनी जस्टिफिकेशन परिस्थितियां तैयार की हुई हैं,
2: और ऐसा सोच के हम औरों की सिंपथी गेन करना भी चाहते कि जब जस्टिफिकेशन है तो लोग मुझे सिंपथी देंगे। छठी बात है लेबलिंग, हमने आगे भी डिस्कस किया था, लेकिन राइट थिंकिंग में भी हम कई बार गलत रूप से लोगों को लेबल करते हैं। आपके अंडर में अगर 5 लोग काम कर रहे हैं तो उनमें से आप लेबल करते हैं कि ये स्मार्ट है, ये बिल्कुल गलतियां करता रहता है, और जब आप लेबल करते हैं तो इमीडिएटली वो आ जाता है कि जिसने किया गलत ही किया होगा, वो भी रॉन्ग है। कभी भी लेबल किसी को नहीं करो।
0: जैसे सपोज कोई टाइम पर नहीं आता तो हम कहते हैं ये तो है ही लेट लतीफ, ये तो हमेशा ही लेट आएगा, इसको कितना भी बोल दो ये नहीं। सो दिस इज नो दैट पर्सन माइट बी सिंसियरली ट्राइंग टू कम ऑन टाइम, ना ही जस्ट नीड्स द राइट एनर्जी।
2: कोई लिमिट कम ऑन टाइम, सपोज वो 50% टाइम पे आने लगे तो भी आप कहेंगे कि तो लेट ही आता है,
1: क्योंकि हमने अपने मन में उसको लेबल लगा दिया उसको वो। अच्छा, तो पर उसे कहना तो चाहिए, कहा तो जा सकता
2: है। हाँ, एक बार लेट आया ठीक है,
1: रिकॉग्नाइज हमने करा, रिकॉग्नाइज करके हमने रजिस्टर किया, तो रजिस्टर करके हमारे पास तो रहती है वो वीकनेस।
0: जैसे हम लेबल कर देते हैं ना, इट फील्स कि ये ऐसा ही है, मतलब देयर इज नो मार्जिन टू चेंज। वो है कि किसी के ऊपर जैसे ना स्टैम्प लगा दी कि ये तो है ही ऐसा, एंड फिर वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन मेरे तक नहीं, वो लेबल और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर होता है, और सभी फिर यही लेबल से वर्क करते हैं। आप उस व्यक्ति को उस लेबल के थ्रू देखना शुरू करते हो, यू नो, नहीं ये तो है ही ऐसा, तो इवन इफ ही इज ट्राइंग टू चेंज, अगर कोई टाइम पे आएगा ना आज, कहेंगे बाय चांस आज टाइम पर आ गया था, कल नहीं आएगा ये टाइम पर, इतना बिलीफ सिस्टम वो स्ट्रांग हो जाता है। ये एक दो दिन की बात है, अच्छा 4 दिन वो टाइम पर आ रहा है, देखते हैं कब तक चलता है इसका ये चेंज, क्योंकि मेरा लेबल इतना स्ट्रांग है कि वो तो टाइम पर नहीं आ सकता है। सो दैट्स द एनर्जी देन बी ट्रांसमिट टू हिम,
2: नेगेटिव एनर्जी हम दे रहे हैं, वो कोशिश कर रहा है फिर भी शायद तो नहीं,
0: और इसको वर्बल भी कर देते हैं हम, मतलब हम बोल देते हैं दूसरे को,
1: आज तो यू नो सूरज नहीं निकला, सूरज कहाँ से निकला, आज आप टाइम पे कैसे आए, और ये सब कुछ। यस,
2: 7वीं बात है वाई मी एटीट्यूड। वाई मी एटीट्यूड का बहुत ही अच्छा उदाहरण है आर्थर एसे की, जो विम्बलडन में लीगेंड थे, उनको वर्ल्ड चैंपियन भी रहे, और जब रिटायर हुए उसके कुछ समय के बाद उनको कैंसर हुआ, तो एक उनके फैन ने लिखा कि भी कैसी दुखद बात है कि आप इतने फेमस व्यक्ति थे, आप इतने हाई पोजीशन पर पहुंचे थे, फिर भी भगवान ने आपको कैंसर दे दिया। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि भी 5 करोड़ बच्चे टेनिस खेलने की कोशिश करते हैं, उसमें से करीब 50 लाख ही है या तो 5 लाख ही उसको अच्छे से सीख पाते हैं, उसमें से जो प्रोफेशनल है 50,000 ही बनते हैं, उसमें से 50 ही विम्बलडन तक पहुंचते हैं, उसमें से 8 ही है जो क्वार्टर फाइनल में पहुंचते हैं, 4 ही सेमीफाइनल में होते हैं, 2 ही फाइनल में पहुंचते हैं, और अंत में 1 ही चैंपियन ऑफ द चैंपियन डिक्लेयर होता है। जब मेरे हाथ में कप था और मेरा नाम चैंपियन ऑफ द चैंपियन में दिया गया

0: था तब मैंने भगवान को यह नहीं कहा वाई मी, तो आज मुझे बीमारी हुई है तो भी यह नहीं कहना चाहिए वाई मी। तो बस यही बात, इससे बहुत प्रेरणा मिल सकती है। कोई भी समस्या आए कभी यह नहीं कहो वाई मी, यह सोचो कि भी मेरे को ये प्रॉब्लम है, औरों को और कुछ प्रॉब्लम है।
1: इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस एक्चुअली।
0: उल्टा कहते हैं वाई मी नहीं कहो, ट्राई मी लॉर्ड।
1: तो ये हमने सात तरह की अपने रॉन्ग थॉट्स को, ये दीज आर द रॉन्ग थॉट्स
0: जी सर, हाँ उसको रॉन्ग थॉट्स
1: राइट में कन्वर्ट करना। आपने कहा दस होते हैं,
0: हाँ, और भी आठवां जो है जिसको कहा फ्लाई मेंटेलिटी,
1: ओ भागना
0: नहीं, मक्खी की जैसी मेंटेलिटी।
1: अच्छा अच्छा, हाँ।
0: कहते भी मक्खी के सामने मिठाई भी रखो और गंदगी भी रखो तो कहाँ बैठेगी, गंदगी पे ही बैठेगी। तो ऐसे ही लाइफ में भी होता है कि भी जीवन में अच्छी भी बातें हैं, बुरी भी बातें हैं। जिनके पास फ्लाई मेंटेलिटी वो व्यक्ति बुरे पे ही बैठता है, उसी के बारे में सोचता रहता है। बस ये भी सोचना चाहिए कि भी मेरे में फ्लाई मेंटेलिटी तो नहीं है, पर दोनों चीजें साथ साथ है, मुझे अच्छे पे ही बैठना है। नौवीं बात है जिसको कहते हैं नॉटिंग। नॉटिंग मतलब क्या है कि भी कोई चीज को हम फोर्सिबली भूलने की कोशिश करते हैं। कई स्टूडेंट्स के साथ होता है कि भी उनको पढ़ाई करनी है परंतु दूसरे कमरे में कोई टीवी देख रहा है, या तो आप पूजा भी कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, दूसरे कमरे में कोई टीवी देख रहा है, तो आपका ध्यान कंटिन्यूअस तो टीवी के प्रति है, आप फोर्सिबली उसको भूलने की कोशिश करते, भूल नहीं पाते, आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता, उल्टा टीवी का प्रोग्राम और क्लियरली आपको सुनाई देता है, तो नॉटिंग भी नहीं करेगा। अगर नॉटिंग होता है तो ये सोचो कि टीवी को भूलना नहीं है, मुझे पढ़ना है, मुझे जो कंसंट्रेशन पढ़ाई में देना है, अगर पढ़ाई में मैं कंसंट्रेट हो गया ऑटोमेटिकली टीवी से ध्यान चला जाएगा। मेडिटेशन कर रहा हूं, मुझे मेडिटेशन में कंसंट्रेट करना है, ऑटोमेटिक मेरा ध्यान है वह वहां से हट जाएगा।
1: देखिए वो तो वहां एग्जिस्ट कर ही रहा है ना, उसकी एग्जिस्टेंस को तो आप डिनाई नहीं
0: कर सकते, हाँ, लेकिन उसको हमें फोर्सिबली नहीं भूलना।
1: लेकिन डॉक्टर साहब इट्स नॉट पॉसिबल, से यूजुअली जब आप पढ़ रहे हैं और टीवी चल रहा है, मन वहां है तो आपका मन वहीं जाता ही है,
2: इसलिए क्योंकि वो चीज आपको ज्यादा इंटरेस्ट करती है। माइंड कहाँ जाएगा, जो दोनों में से आपको चीजें ज्यादा इंटरेस्ट करेंगी। यही अगर आप टीवी देख रहे हैं, सपोज आप टीवी देख रहे हैं और एक्चुअली कोई आपको बुला रहा है कि पढ़ लो, शोर भी मचा रहा है, आ जाओ पढ़ लो, आप उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देंगे क्योंकि आपका पूरा इंटरेस्ट किस में है, टीवी देखने में। प्रोवाइडेड यू आर डूइंग समथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग यू, आपको दूसरी चीज डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो इसी में हमें अपने आप की फिर थॉट्स को चेंज करनी है कि वहां एक चीज चल रही है, यहां एक चीज चल रही है, मेरे लिए इस समय कौन सी चीज इम्पोर्टेंट है। फिर अपने आप इट्स सेट के वेर एवर योर अटेंशन गोज एनर्जी विल फ्लो देयर। नाउ इट्स इम्पोर्टेंट कि आपकी अटेंशन कहाँ जाए, हमारी अटेंशन एक्चुअली वहां जाती है तो फिर एनर्जी भी उसी तरफ जाएगी। लेट मी फोकस कि ये मुझे ये करना है, नहीं हो रहा है माइट एज वेल गो एंड सिट देयर। लेकिन ये जो संघर्ष चलता रहेगा इट वॉन्ट हैपन। एंड वो सिर्फ इस चीजों में नहीं, सारा दिन में बहुत सारी चीजों में चल रहा है, ऑफिस में भी काम मुझे अपने पर करना है, इवन वट एवर वर्क आई एम डूइंग, लेकिन मेरा ज्यादा ध्यान दूसरी चीजों में जा रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, देन आई एम ट्राइंग टू फोर्सफुली टेक माई सेल्फ बैक फ्रॉम देयर। इट द अदर वे अराउंड, मुझे क्या करना है एंड आई फोकस माई एनर्जी टोटली ऑन दैट, अपने आप अटेंशन वहां से हटेगा। मतलब वो कुछ और चीज भूलने की बजाय इसको याद करना है। जैसे परमात्मा भी हमें सिखाते कि मुझे गुस्सा नहीं करना, ये नहीं सोचना है, आई एम अ पीसफुल सोल, इस पर अटेंशन रखना है, एनर्जी विल ऑटोमेटिकली गेट क्रिएटेड। नहीं तो वो माइंड और भी उसके कॉन्फ्लिक्ट में चला जाता है,
1: जा रहा है तो फिर अटेंशन उधर ही
2: उसकी तरफ चला जाता है।
0: और दसवां है डिसक्वालीफाइंग द गुड। कई बार अच्छी चीजें होती है हमारे जीवन लेकिन उसको भी हम डिसक्वालीफाई करते हैं। एक महिला ने एक दिन बहुत अच्छी साड़ी पहनी थी तो लोगों ने बहुत उसको प्रेज किया कि तुम बहुत सुंदर लगती हो, बहुत अच्छी साड़ी, सबको कहते क्या बेकार की साड़ी है, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, मैं कभी नहीं पहनती हूँ, आज कोई मौका कुछ नहीं मिला तो इसी को पहनना पड़ा क्योंकि मेरी सास ने प्रेजेंट की थी। तो दिस इज डिसक्वालीफाइंग द गुड, नो सो मच गुड वॉज देयर, नो शी कुड हैव इम्प्रूव हर सेल्फ एस्टीम, औरों को भी अच्छा लगता, शी वुड हैव फेल्ट गुड ऑल्सो अबाउट इट, लेकिन उसको भी भाई सास ने प्रेजेंट की थी कहकर सब कुछ वॉश आउट कर दिया
1: क्योंकि वो एक थॉट के भी आया कहां से, वहां पे रिश्ता ठीक नहीं था,
0: तो जरूरी नहीं था, कोई वो पूछ नहीं रहा था, लेबल भी नहीं लगा था कि किसने प्रेजेंट की आपको। तो इसलिए जब भी अच्छा होता है रियली उसका हम आनंद ले, अपने स्वमान को बढ़ाए, वो इवन एंथुजियाज्म को इम्प्रूव

0: अरे अच्छी चीज को भी डिस्क्वालीफाई ना कर दे,
1: जो अच्छा है उसे अच्छा ही अच्छे रूप में ही देखें। सदर शिवानी डॉक्टर पटेल, वक्त का पता नहीं चलता जब हम अपने विचारों के इस ताने बाने में उलझ जाते हैं, लेकिन आज जो बातें समझ में आई कि जो 10 तरह के ऐसे थॉट्स जिन्हें एक्चुअली अगर नेचुरली देखा जाए तो राइट होना चाहिए, बट हम किस मिरर से देखते हैं, आपने कहा कि कौन सा ग्लास लगाकर हम देख रहे हैं और सारी चीजें उल्टी होती जा रही है। सर शिवानी डॉक्टर पटेल, थैंक यू सो मच, ओम शांति। आज हमने उन 10 सिचुएशंस को देखा, वो ऐसे थॉट्स जो शायद मैं अवेयर भी नहीं हूं, मतलब ये चीजें अपने आप होती जाती रही हैं अभी तक जीवन में, लेकिन थोड़ा सा अगर बैठकर देखेंगे तो सचमुच, चाहे वो किसी भी बात को, किसी भी सिचुएशन को मैग्निफाई करने की बात हो, चाहे एक जो कहा वाई मी ऑलवेज यू नो मेरे साथ, हमेशा मेरे साथ, और जो 10 थॉट्स हमने आज रियलाइज किए हैं, आज देखे हैं, जरा अपने थॉट्स को देखें और कैटेगराइज करें कि इनमें से कौन कौन से इन कैटेगरीज में आते हैं, फिर हम कोशिश करेंगे कि इन्हें परिवर्तित कैसे करना है, क्योंकि ये तो पता चल गया कि ये रॉन्ग है, क्योंकि मेरे दर्द ये मैंने क्रिएट किए, मतलब मेरे दर्द की क्रिएशन भी मैं हूं, तो अब उसको चेंज कैसे करना है, पॉजिटिविटी और जो पीसफुलनेस या हैप्पीनेस है उसे कैसे क्रिएट करना है, इस पर बात करेंगे आने वाली कड़ी में। आप हमारे साथ रहिएगा, कोशिश करेंगे ये स्किल सीखेंगे कि कैसे रॉन्ग को राइट करना है। आपसे विदा लेते हैं, हम शांति।

0: जाओ अब तुम अपने घर जाओ। देखो मुन्नी बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: नहीं जाएगी? नहीं जाएगी।

अपने हाथों से ही मैं डोली में तुझे बिठाऊं। उस दिन मुझको छोड़ के तो ऐसी दुनिया में जाए हर एक लड़की जहाँ जमा बचाओ के फिर ना आए। रोता रहने का बेचारा तेरा मामा लुटा लेने।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, मी वर्षा उसगावकर. तुम्ही ऐकता आहात पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदित रहा आणि नेहमी सगळ्यांना आनंदित ठेवा.
1: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8. आपका हार्दिक स्वागत है ज्ञान चिंतन में, एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम जहां हम विचारों की गहराई में उतरकर ज्ञान, जीवन, समाज, संस्कृति और आध्यात्म से जुड़े विषयों पर सार्थक संवाद करते हैं. यह कार्यक्रम न केवल जानकारी देता है बल्कि सोच को नई दिशा भी प्रदान करता है. तो आइए आत्ममंथन और बौद्धिक समृद्धि की इस प्रेरक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और चिंतन को जीवन का हिस्सा बनाइए. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8. आज हम एक ऐसे विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं जो हम सभी के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है. विषय है भाग्य की कलम आपके हाथ में. अक्सर हम अपने जीवन में यह कहते सुनाई देते हैं, मेरे भाग्य में ही नहीं था, किस्मत खराब है या जो लिखा है वही होगा. लेकिन क्या वास्तव में हमारा जीवन केवल भाग्य के भरोसे चलता है? क्या हम सिर्फ दर्शक हैं या फिर अपने जीवन के लेखक भी हैं? श्रोताओं, यदि ईमानदारी से उत्तर खोजें तो पाएंगे कि भाग्य की कलम वास्तव में हमारे हाथ में ही होती है. हमारा सोचने का तरीका, हमारे निर्णय और हमारा परिश्रम, यही हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं. हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारास्ते, अर्थात हमारा अधिकार कर्म पर है. कर्म ही वह सही है जिससे हम अपने भाग्य के पन्नों पर शब्द लिखते हैं. जो व्यक्ति मेहनत करता है, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहता है, वही अपने भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है. इतिहास ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन हम सबके लिए प्रेरणा है. एक साधारण परिवार में जन्मे कलाम साहब ने कठिन परिस्थितियों को कभी अपने मार्ग की बाधा नहीं बनने दिया. उन्होंने परिश्रम, अनुशासन और सपनों की शक्ति से न केवल अपना भविष्य बदला बल्कि पूरे देश को दिशा दी. यदि वे मान लेते कि गरीबी उनका भाग्य है तो क्या वे मिसाइल मैन बन पाते? प्रिय श्रोताओं, जीवन में असफलताएं आना स्वाभाविक है, परंतु असफलता को भाग्य का दोष देना अपने भीतर झांकने से बचने का आसान तरीका है. असफलताएं हमें तोड़ने नहीं बल्कि सिखाने आती हैं. हर ठोकर हमें यह बताने आती है कि रास्ता बदलो, प्रयास बढ़ाओ, हिम्मत मत हारो. नकारात्मक सोच हमारे जीवन की सबसे बड़ी शत्रु है. जब हम बार बार अपने भाग्य को कोसते हैं तो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है. हम कोशिश करना छोड़ देते हैं. लेकिन जिस दिन हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि बदलाव की शुरुआत मुझसे ही होगी, उसी दिन भाग्य भी हमारा साथ देने लगता है. साथ ही सही समय पर सही निर्णय लेना भी उतना आवश्यक है. कई बार हम गलत फैसले ले लेते हैं और परिणाम आने पर कहते हैं किस्मत ही खराब थी, लेकिन वास्तव में वह हमारे निर्णयों का फल होता है. यदि हम सोच समझ कर विवेक के साथ कदम बढ़ाएं तो सफलता के अवसर अपने आप बनने लगते हैं. श्रोताओं, जीवन एक खुली किताब की तरह है. हर नया दिन एक खाली पन्ना है. यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस पन्ने पर शिकायतों की कहानी लिखते हैं या संघर्ष और सफलता की प्रेरक गाथा. भाग्य कोई बंद तिजोरी नहीं है जिसकी चाबी किसी और के पास हो. वह एक कलम है और वह कलम हमारे हाथ में है. अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, भाग्य का इंतजार मत कीजिए, भाग्य का निर्माण कीजिए. मेहनत, सकारात्मक सोच और

0: ही दिशा, यही वह ताकत है जो आपके आज को बेहतर और आपके कल को उज्ज्वल बना सकती है। इसी संदेश के साथ मुझे अनुमति दीजिए, फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर, और सुनते रहें इसी तरह प्यार से, खुश रहें, खुशियां बांटें। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि आज की चर्चा ने आपके मन में नए विचारों को जन्म दिया होगा और सोच को एक नई दिशा प्रदान की होगी। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है, फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं, खुश रहें, खुशियां बांटें।
1: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो परिस्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा. कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत.
1: अश्विनी
0: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं.
2: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे.
0: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत. या सगळ्यांची सांगड कुठे वर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
3: There is a time to bid goodbye to the old and the ordinary and to awaken the beauty within. That time is now. It is time to wake up and take charge of life. Awaken to a new way of thinking. Awakening with Brahma Kumaris.
4: Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Sister, welcome.
5: Om Shanti.
4: Om Shanti and welcome to Being Bliss.
5: Thank you.
4: हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि एक वे ऑफ लाइफ बना लें से कैसे, मतलब जैसे मूवी देखते हैं तो डिटैच होकर, या क्रिकेट मैच देखते हैं तो डिटैच होकर, इसी तरह मतलब दुनिया की परिस्थितियों को और लोगों की बातों को, उसको हम डिटैच होकर कैसे देखें. जब मैं डिटैच होने जाता हूं तो मैं मतलब केयरलेस एटीट्यूड, मरने दो, जाने दो, जो हो रहा है होने दो, मुझे क्या.
5: डिटैच होकर देखना मतलब परिस्थिति की जो क्वालिटी है या जो एनर्जी है वो मेरी एनर्जी ना बन जाए. सपोज इट्स अ सिंपल थिंग लाइक आई सी टू पीपल फाइटिंग.
4: सॉरी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ किसी ने मुझे कह दिया या कोई कुछ गलत कर रहा है.
5: इससे भी पहले नहीं, इससे पहले एक स्टेज पहले जाते हैं. किसी ने मुझे कुछ कहा, वो थोड़ा सा

0: डिफिकल्ट है, वो सेकेंड स्टेज में लेते हैं. सपोज हम सिर्फ दो लोगों को ही लड़ते हुए देख लें, या जैसे कई बार लोग कहते हैं किसी ने किसी पर अत्याचार किया, वो देखकर हमें तकलीफ हो रही है, राइट? कोई किसी और पर अत्याचार कर रहा है, तो वो सिचुएशन की एनर्जी या उन दो लोगों की एनर्जी जो सीन में है, वो बात में है, वो नेगेटिव है, लेकिन वो परिस्थिति की एनर्जी मेरी एनर्जी बन जाती है, मेरी थिंकिंग बन जाती है, तब मैं डिटैच नहीं हुई उस परिस्थिति से, मैं उस परिस्थिति के प्रभाव में आ गई. अभी वो परिस्थिति मेरे से कनेक्टेड नहीं थी, इट वॉज जस्ट आउटसाइड. और जैसे कोई कहेगा जब मैं देखता हूँ दुनिया में इतना दर्द है तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ, तो ये क्या हुआ? अभी मेरे जीवन में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन सिर्फ दुनिया में दर्द है. अब इसको हम कह देंगे ओ पर ये तो कंपैशन है ना, ये कंपैशन नहीं है. इसमें क्या हुआ, दर्द तो है लेकिन दर्द में हमने भी दर्द क्रिएट कर लिया, तो वी आर एडिंग पेन टू पेन. कंपैशन होता कि दर्द है तो आप उस दर्द के लिए क्या कर सकते हैं वो करिए.
1: अगर हम भी दर्द में वो भी दर्द में तो दोनों बीमार, कौन किसको रास्ता दिखाएगा?
0: एग्जैक्टली. तो दुनिया में दर्द है इज अ सिचुएशन. व्हाई वाइब्रेशन फैल जाती है? क्योंकि हम सब वही वाइब्रेशन क्रिएट कर देते हैं जो सिचुएशन की वाइब्रेशन है. सो अगर दुनिया में हमें तकलीफ दिखाई दे रही है, हमें पॉवर्टी दिखाई दे रही है, हमें बीमारी दिखाई दे रही है, हमें एक्सप्लॉयटेशन दिखाई दे रहा है, वो सब देखते हुए सिचुएशन की एनर्जी मेरी एनर्जी नहीं बननी चाहिए. दिस इज डिटैचमेंट. एंड जहां ये डिटैचमेंट होगी वहां कंपैशन आएगी.
1: इनडिफरेंस और डिटैचमेंट.
0: इनडिफरेंस जब होगा तो मतलब मैं अंदर, मुझ पर इफेक्ट आता है, मैं इतना पावरफुल नहीं हूं, तो मैं अलग हो जाता हूं आपसे. आई एम सेपरेट, मुझे कोई लेना देना नहीं आपसे. लेट्स टेक इट एज अ सिंपल एग्जांपल. सपोज आपको चोट लगी फिजिकली, यहां पर आप हैं, आपको चोट लगी. एक है आपको दर्द में देखकर मैं भी दुखी हो गई, तो ये हुआ परिस्थिति का मुझ पर प्रभाव. दूसरी स्थिति जो आपने कहा इनडिफरेंस, आपको चोट लगी तो लगी, मैं क्या करूं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, इनडिफरेंस. लेकिन कंपैशन, डिटैचमेंट, आपको चोट लगी, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ. लेकिन आपको चोट लगी और बोलने में मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, लेकिन अंदर दुखी दर्द, तो मैंने भी दर्द क्रिएट किया, आप भी दर्द में थे. जो हम फिजिकल करेंगे वो तो वही होगा कि हीलिंग करेंगे, मेडिसिन देंगे, लेकिन दर्द में रह कर देंगे तो हमने भी वही वाइब्रेशन क्रिएट की. तो डिटैचमेंट मीन्स सिचुएशन की वाइब्रेशन मेरी वाइब्रेशन न बने. आई चूज माई वाइब्रेशन कि यहां दुख है बट आई एम रिमेनिंग स्ट्रांग, यहां हेट्रेड है, एंगर है बट आई एम रिमेनिंग पीसफुल. तो ये डिटैचमेंट होने से मेरी स्थिति फिर परिस्थिति पर प्रभाव डालेगी. अगर हमारे सामने किसी का मूड ठीक नहीं है और हम ठीक रह गए तो हम धीरे धीरे उनका मूड ठीक कर देंगे, मेरी स्थिति का प्रभाव परिस्थिति पर. लेकिन अगर हम परिस्थिति में फंस गए तो उनके साथ हमारा भी मूड खराब हो गया, तो परिस्थिति का प्रभाव हमारी स्थिति पर. ये डिटैचमेंट है. तो ये हमें सारा दिन प्रैक्टिस करने के लिए अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा. और जैसे हमने लास्ट टाइम देखा, जो आपने कहा कि हमें इसको लाइफस्टाइल में डालना है, इन्फॉर्मेशन अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट, हम क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं. ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में यही लाइफस्टाइल हमने बनाया है अपना, जिसका हमें प्रैक्टिकल फिर बेनिफिट मिलता है कि रोज सुबह 6, 6:30 या 7 बजे, डिपेंडिंग ऑन एवरी सिटी एंड सेंटर, सभी भाई बहने सेंटर पर, मेडिटेशन सेंटर पर जाते हैं 45 मिनट्स के लिए, जहां स्पिरिचुअल सेशन लेसन होगा और मेडिटेशन होगी. एक बार ये पूरा हुआ 7:30-8 बजे, उसके बाद पूरा दिन बाहर बिजनेस, जॉब, फैमिली, एवरीथिंग, लेकिन फाउंडेशन सुबह वो लेयर ऑफ इन्फॉर्मेशन की सेट कर दी. कहां तो उस समय पहले न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे और कहां उसकी एब्सोल्युटली ऑपोजिट क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन डालते हैं, परमात्मा का ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, वो सुबह सुबह भर लिया तो इन्फॉर्मेशन चेंज हुई, थॉट चेंज हो जाती है. थॉट चेंज हुई, धीरे धीरे पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि रॉ मटेरियल की क्वालिटी चेंज कर दी है. अगर हम सब आज

0: इतने दिन से ये सुनने के बाद अगर ये थॉट क्रिएट कर रहे हैं कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, तो लेट्स डू दिस वन थिंग कि सुबह के समय न्यूज तो आउट, लेकिन नाउ समथिंग एल्स। गलत भोजन नहीं खाएंगे पर सही भोजन तो खाएंगे ना। पर कोई भी चीज चूज करें, व्हाट एवर यू लाइक, कोई अच्छी किताब, कोई अच्छा आर्टिकल, कोई अच्छा कैसेट, एनीथिंग वी हैव टू चूज, कोई सत्संग, कोई प्रवचन,
1: कुछ पेजेस में आता है ना स्पिरिचुअल।
0: एब्सोल्युटली, लेकिन वो कब पढ़ते हैं हम? हमारा फर्स्ट फोकस तो फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, इसी पे चला जाता है। तो फर्स्ट सुबह वो पढ़ लें, एक महीने के लिए इसको कर लें सिर्फ, सी द डिफरेंस, सी हाउ वो थॉट्स विल बी अ पार्ट ऑफ यू थ्रू आउट द डे। एक सिंपल चेकिंग है, अगर आज हमारे घर हमारा बच्चा शाम को टाइम पर नहीं पहुंचता है स्कूल से या कॉलेज से, और फोन भी नॉट रीचेबल है, हमें एक दो घंटा सब जगह ट्राई कर लिया, वो कहाँ है कहाँ है सबको पूछ लिया, कुछ नहीं पता चल रहा है, किस तरह के थॉट्स आने शुरू होते हैं?
1: नेगेटिव।
0: क्या आएगा? व्हाट विल वी थिंक?
1: पता नहीं क्या हो गया होगा।
0: हाँ।
1: कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कोई तकलीफ में तो नहीं है।
0: क्यों ऐसी थॉट आई? क्योंकि यही क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन हम सारा दिन देख रहे हैं ना, एक्सीडेंट होते हैं आजकल, बॉम्ब अटैक भी होता है, टेररिस्ट अटैक भी होता है, बच्चे किडनैप भी हो रहे हैं आज, ये सारी इन्फॉर्मेशन भरी है। तो जब सिचुएशन आएगी, परिस्थिति आई, वो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन ट्रिगर होगी, वो थॉट आएगी। अब इसकी जगह अगर हम एक महीने से कोई बहुत पावरफुल इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं अपने अंदर, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, हर चीज जो हो रही है एक्यूरेट है,
1: कल्याणकारी
0: है, परमात्मा मेरे साथ है, मेरे श्रेष्ठ कर्म, मेरा फल अच्छा ही मुझे मिलने वाला है, सब कुछ सही सही, एवरीथिंग इज हैपनिंग एक्यूरेट। अब देखो अगर रात को ऐसी परिस्थिति आई तो क्या होगा? वो थॉट ही नहीं आएगी, ये नहीं कि वो आएगी और उसको चेंज करना, वो थॉट ही नहीं क्रिएट होगी क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन नहीं भरी। यही थॉट आएगी, आप अपनी फैमिली को बोलेंगे डोंट वरी, सब ठीक है, आ जाएगा, लेट्स वेट। वेटिंग पीरियड ही तो क्रिटिकल है, वो वेटिंग पीरियड ही क्रिटिकल है जो परिस्थिति में, इन्फॉर्मेशन चेंज, थॉट चेंज हो जाएगी। तो ये सबसे पावरफुल फैक्टर थॉट्स के ऊपर, अगर आपको थॉट्स को चेंज करना है। जो सेकंड फैक्टर है थॉट्स के ऊपर, वो है पास्ट एक्सपीरियंसेस।
1: कहते हैं ना इंग्लिश में फर्स्ट इम्प्रेशन is the last impression.
0: Not true.
1: हाँ, it is not true.
0: If we want to make it like that.
1: 20 साल पहले जो सुरेश ओबेरॉय से मिला हो और आज मिले, ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन देखते ही वो याद आता ना, अरे ये तो वही बंदा है जो मुझसे झगड़ा किया था, तो वही बंदा है जो बड़े अकड़ के बात करता था।
0: एंड रियालिटी इज हरेक चेंज हो रहा है, हरेक चेंज हो रहा है।
1: मैं जब तक चेंज नहीं हो रहा हूँ सिस्टर, मुझे ये एहसास नहीं होता कि दूसरा भी हो रहा है,
0: चेंज हो रहा है। हमें एक बहुत सुंदर बात सिखाई जाती है, प्रैक्टिस, ये भी अटेंशन, कि बीती हुई बात को चित पर ना रखे, पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप, फिनिश्ड। एंड ये एक अभ्यास करें कि अगर हम किसी के प्रति, जैसे ऐसे है कि कुछ पकड़ कर रखा है, एक अभ्यास करें कि नेक्स्ट टाइम जब हम उनसे मिले, Let's meet with a clean slate. Let's take a new impression. We don't know कि second impression जो अभी मिलेगा वो हमें पसंद आएगा या नहीं आएगा, we don't know. अभी हमें नहीं मालूम कि हमारी second meeting कैसे होने वाली है, लेकिन एक practice कि हम अपनी second meeting को, अगर first meeting pleasant नहीं थी, तो अपनी second meeting को first meeting के impression से ना start करें।
1: किसी के घर में जाता हूँ sister, और मैं देखता हूँ कि इसका कुत्ता बड़ा खतरनाक है, सीधा अटैक करता है, तो क्या मैं सेकेंड टाइम भी जब जाऊंगा तो उसे डर के ही रहूंगा ना।
0: हाँ।
1: जैसे मैं सांप को देख लिया या इलेक्ट्रिसिटी की जगह हाथ लगा लिया, शॉक पड़ी, तो एवरी टाइम आई कांट चेंज दैट इम्प्रेशन ना।
0: द थिंग इज जो मनुष्य आत्मा है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। जैसे आपने अपना कहा, इलेक्ट्रिसिटी जड़ चीज है, आप जितनी बार भी उस पर हाथ लगाएंगे उस जगह पर, वो शॉक लगेगा इज ओके, ये भी हो सकता है कि वो ठीक हो गया, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी, लेकिन मनुष्य आत्मा, अ ह्यूमन बीइंग, हर पल चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ इन्फॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंसेस, बिकॉज ऑफ अ डिजायर टू चेंज। चेंज कुड बी दिस वे और दैट वे, वी डोंट नो, वी आर नॉट सेइंग, क्योंकि अगर हम अपने ऊपर

0: हम नहीं कर रहे हैं. वी डोंट नो. दैट्स नॉट द पॉइंट.
1: बीमारी बढ़ सकती है, आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे.
0: ईदर वेज वी डोंट नो. इम्पोर्टेंट इज आज जो हम मिल रहे हैं और अगले महीने या अगले साल फिर मिलेंगे, तब तक हम में बहुत चेंज आया है, क्योंकि वी आर अ बंडल ऑफ थॉट्स. हम जिनसे मिलते हैं.
1: I have to disagree a little bit here. देखिए मैं अपनी बात करता हूँ. जब मेरे भाई की डेथ हो गई, मेरे हाथों में उनको देखा मैंने आखिरी सांस लेते हुए, तो जो मैं सुरेश ओबेरॉय 85 से पहले था 80s में, टोटली डिफरेंट मैन. लोगों को दान देना, लोगों से प्यार से बात करना, दुनिया फिलोसॉफिकल क्या है, पैसा क्या चीज है, जेवर क्या है, दुनिया क्या है, लाइफ क्या है, और लोग, मेरा एटीट्यूड अलग था. धीरे धीरे धीरे धीरे करते करते करते करते साल छह महीने दो साल में वो सुरेश ओबेरॉय बैक टू व्हाट ही वाज बिफोर द एक्सीडेंट, मैं वैसे ही बन गया. और खराब, वही गुस्सा, वही नेचर, वही चिड़चिड़ापन. तो मैं चेंज हुआ था, टेम्पररी हुआ था.
0: चेंज हुए थे ना, लेकिन
1: वो क्या था, एक झटका लगा.
0: नेवर माइंड,
1: दो दिन के लिए हुआ.
0: इम्पोर्टेंट इज नॉट दैट, इम्पोर्टेंट इज फॉर मी व्हेन आई एम मीटिंग यू.
1: हाँ, तो मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि इंसान जो आप कह रहे हैं शायद चेंज भी हो जाए, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ. हुआ भी तो कितना हुआ, दो दिन के लिए हुआ.
0: अच्छा,
1: जब आदमी डेथ, जब हॉस्पिटल जाता है, हाँ, एक बार वो नियर डेथ एक्सपीरियंस उसको हो जाता है, बाहर आके अजीब सा थी, फिर वापस वही धंधे पे लग जाता है वापस.
0: वो तो अगर हम एक फ्यूनरल पर भी जाते हैं.
1: वही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ.
0: राइट, तो चेंज हुए थोड़ा. नेक्स्ट टाइम मैं मिलूंगी फिर. अच्छा, सपोज मैं आपको 85 से पहले मिलती तो आप डिफरेंट थे, ठीक है. फिर आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ, इसने आपको थोड़ा सा शेक कर दिया, आप चेंज हो गए. फिर अगर उसके दो साल बाद आपको मिला तो आपने कहा वो मेरा पुराना वाला वापस आ गया. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट चेंज, कौन सी डायरेक्शन में कहाँ जा रहा है. वी आर नॉट हेयर टू एनालाइज पीपल. इम्पोर्टेंट है पीपल आर चेंजिंग. सो वेन वी मीट देम, लेट्स मीट देम क्लीन, ताकि हमें वो सही तरह दिखाई दें. अगर आपने अपने ऊपर इतनी मेहनत की है पिछले दो तीन साल में, बहुत मेहनत की अपने संस्कारों पर, गुस्से पर मैं आपको पुराना जो जानती हूँ उसी दृष्टिकोण से अभी देखूं, तो मुझे आपका नया चेंज दिखाई भी नहीं देगा.
1: उसी दृष्टिकोण की बात सही है, लेकिन आपकी, मैं एक टीवी पे, मैंने आपका अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आपकी लाइन बहुत सुंदर लगी मुझे कि मीट अ पर्सन एज इफ यू आर मीटिंग द पर्सन एज द फर्स्ट टाइम.
0: दैट इज व्हाट
1: आई ट्राई किया कि पहली बार ही आपसे मिल रहा हूँ. आठ बार दिन में मिलो तब हमेशा ही ये देखो कि मैं पहली बार मिल रहा हूँ. वो भी मुझसे नहीं हुआ.
0: सी, वी डोंट हैव टू डू दिस विद एवरीबॉडी.
1: मुझे जो इम्प्रेशन है ना दूसरे का, एक बार जो पड़ जाता है ना, लाख कोशिश करूं मुझे वो याद आता रहता है. बात करता रहता हूँ वो याद आता रहता है.
0: ये डैमेजिंग है हमारे लिए, क्योंकि एक, हम दूसरे को अगर वो चेंज हुआ है तो वो परसीव ही नहीं कर पाएंगे. एक दूसरा, जब हम ये कहते हैं कि अपनी स्लेट को क्लीन कर लो, मतलब अपने मन को क्लीन कर लो. सपोज लास्ट टाइम मेरा आपका साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, कुछ अनप्लेजेंट बात हो गई, या आपने गुस्सा कर दिया, मुझे बुरा लगा, ये सब हो गया, मैंने एक इम्प्रेशन क्रिएट किया, ये तो ऐसे ही है. नेक्स्ट टाइम इफ आई कम बैक अगेन एंड आपसे मिले और वो इम्प्रेशन के थ्रू मिले, तो पहले ही मेरी स्थिति क्या है आपसे मिलने के पहले. आप चेंज हुए या नहीं चेंज हुए, इमटीरियल. सपोज आप चेंज ही नहीं हुए, जैसे उस दिन थे बिल्कुल ऐसे ही इस दिन है, लेकिन मैं तो चेंज हो गई हूँ, क्योंकि उस दिन मैं क्लीन मिली थी और आज मैं एक फिल्टर लगा के मिल रही हूँ. ये फिल्टर क्या है, ये फिल्टर है मेरी पिछली बार की मीटिंग से क्रिएट किया हुआ इम्प्रेशन, अब ये मेरा फिल्टर है. तो अब इस फिल्टर के थ्रू जो मीटिंग होगी आपके साथ, वो मीटिंग की क्वालिटी बदल जाएगी. ये ही, आप चेंज हो या नहीं चेंज हो, लेकिन अगर मैं पास्ट को इरेज करके आपसे मिलूं, ठीक है उस दिन वो हुआ, अब मिलूं आपसे फिर से क्लीन स्लेट के साथ, तो विल दैट मीटिंग नॉट बी अ बेटर मीटिंग फॉर मी.
1: हाँ, मैं चेंज हो जाऊं और
0: मैं चेंज मतलब मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है अपने को, सिर्फ जो पिछली बार की मीटिंग का इम्प्रेशन क्रिएट किया था आपके बारे में
1: उसको हटा के
0: ये ऐसे हैं, ये एक इम्प्रेशन है ना,
1: ये ऐसे हैं के बदले में उस दिन इनसे ऐसा हो गया, शायद ऐसे हैं या

0: तो बिलीव सिस्टम इज लाइक द ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरा बेसिक बिलीव सिस्टम क्या है हर चीज के लिए जीवन में, और ये बिलीव सिस्टम सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर है तीनों में से भी. बिलीव सिस्टम, इन्फॉर्मेशन, पास्ट एक्सपीरियंस, दिस इज द थ्री ऑर्डर.
1: बिलीव सिस्टम वहम है या वाकई बिलीव?
0: ना ना, बिलीव सिस्टम वहम नहीं है. बिलीव सिस्टम मीन्स आपकी मान्यता, आपकी क्या बिलीफ है. जैसे हमने थोड़े दिन पहले देखा जब आपने कहा ऑब्वियसली सिचुएशन का इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ेगा, ये बिलीफ सिस्टम है, ये आपका बिलीफ है, कन्विंस्ड कंप्लीटली, ये मेरा बिलीफ है. अब बिलीफ मतलब जो कोर में होगा और इससे हर सोच निकलेगी. अगर मेरा बिलीफ है कि ऑब्वियसली सिचुएशन का इफेक्ट मुझ पर पड़ता है, अब सारा दिन में जो थॉट्स क्रिएट होंगे वो उस बिलीफ सिस्टम के थ्रू क्रिएट होंगे. अगर आपका बिलीफ सिस्टम है कि गुस्से से काम हो जाता है, गुस्से से मुझे रिस्पेक्ट मिलती है, ये बिलीफ सिस्टम है. आपका बिलीफ सिस्टम है लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन, ये बिलीफ सिस्टम है.
1: ज्यादा किसी की तारीफ नहीं करनी चाहिए,
0: परफेक्ट
1: चढ़ जाता है.
0: परफेक्ट, ये बिलीफ मतलब इतने सारे बिलीफ सिस्टम है हमारे.
1: करनी भी है तो मुंह पे मत करो.
0: मोटिवेशन करने के लिए फियर क्रिएट करना पड़ता है. अगर लोगों का बेस्ट निकालना है तो उनके ऊपर प्रेशर डाल के रखना पड़ता है.
1: बिना टेंशन के आपका जो है टैलेंट बाहर नहीं आता.
0: बिलीफ सिस्टम है.
1: मेरा बिलीफ सिस्टम था कि बिना दो ड्रिंक पिए मैं स्टेज पे बात नहीं कर सकता, स्टेज शो नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, तो दो तीन ड्रिंक पी के मैं खड़ा होता था कॉन्फिडेंस के लिए.
0: आज आप सारा दिन में इतने सारे एपिसोड्स कर रहे हैं, क्या हुआ उस बिलीफ सिस्टम को? चेंज ऑफ बिलीफ सिस्टम. हमारे पास सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, बहुत मतलब अगर हम चेक करने बैठेंगे ना और एक लिस्ट बनाएंगे, एवरी डे वील फाइंड एटलीस्ट 20 to 30 बिलीफ सिस्टम्स जिनके थ्रू हम अपने जीवन को जी रहे हैं. टेंशन नेचुरल है, गुस्सा नेचुरल है, ये तो होता ही है, ये सब बिलीफ सिस्टम है. अब रिस्की ये हो जाता है कि क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम है, ये डीप होता है, जिसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस में है. इस बिलीफ सिस्टम के थ्रू हर थॉट क्रिएट होती है. हम अपने बिलीफ सिस्टम्स अपने बच्चों को भी ट्रांसमिट करते हैं, हम अपने आसपास के लोगों को भी ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि हम उनको भी वही जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं. अब क्या करना है? चेक करना है कौन सा बिलीफ सिस्टम है जो मुझे अनकंफर्टेबल करता है. इवन जब हमने देखा मैं कौन, हु एम आई, तो हमने सोचा दिस इज मी, I am this body, name, fame, profession. तो ये belief था तो thought अलग होगी. And belief change किया, I am a soul. Thought change हो जाएगी. खुशी मुझे ढूंढनी नहीं है, खुशी मेरी अपनी quality है. शांति मुझे खोजनी नहीं है, शांति मेरी अपनी nature है. If I believe, अभी ये belief है, अभी ये truth नहीं बना है, belief है. I am a body और I am a soul दोनों beliefs है. बिलीफ, अब बिलीफ को लेना है, थॉट क्रिएट होती है उससे, फिर उसका रिजल्ट अपने जीवन में देखना है. जो जो रिजल्ट कंफर्टेबल होगा, आपने कहा ये मेरा बिलीफ था कि दो ड्रिंक लेकर स्टेज पर परफॉर्म करना है, आज एक और बिलीफ क्रिएट किया है कि नहीं कंप्लीटली उसके बिना. और आज तो क्या किया, मेडिटेशन करके आज का दिन शुरू करना है, मेडिटेशन 10 मिनट करके फिर ये प्रोग्राम की शूटिंग पर आना है. अब दो बिलीव्स हैं, एक है अल्कोहल से काम अच्छा होगा और आज एक है कि मेडिटेशन करके आई विल परफॉर्म बेटर और आई विल प्ले माय रोल बेटर. अब दोनों का कंफर्ट लेवल देखना है इन द रिजल्ट. काम तो दोनों में हो जाएगा, लेकिन अल्कोहल मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट ला रहा था जीवन के हर पहलू पे, और आज मेडिटेशन क्या ला रहा है, वो चेक करके अब दोनों में से कौन सा एक बिलीफ सिस्टम चूज करना है और उसको अपने जीवन की सत्यता बनाना है.
1: तो सिस्टर आज के लिए होमवर्क काफी है.
0: डेफिनेटली
1: बिलीफ सिस्टम क्या है, और अल्कोहल वाला, मेडिटेशन वाला, या कई और सबके जो बिलीफ सिस्टम.
0: एंड ऑल्सो द अदर होमवर्क कि क्लीन स्लेट करके मिलना है हर एक से.
1: मीटिंग अ पर्सन एज इफ यू मीटिंग द पर्सन द फर्स्ट टाइम.
0: पास्ट को अपने जीवन का फिल्टर नहीं बना लेना है, पास्ट एक्सपीरियंस को पास्ट में ही रहने देना है.
1: पास्ट इज पास्ट.
0: उसको प्रेजेंट का फिल्टर बनाने से पास्ट प्रेजेंट में आ जाएगा.
1: ऐसा सोच लें कि व्यक्ति ऐसा नहीं है, उस वक्त कुछ सिचुएशन ऐसी थी तो कुछ हो गया.
0: जो भी बात है वो पास्ट में

0: हुआ, ये भी तो हो सकता है ना उस दिन हमारी मीटिंग ठीक नहीं हुई उस दिन। अच्छा सपोज हमें ये भी पता चल जाए कि कोई लेट्स से कोई झूठ बोलता है, चलो किसी के अंदर झूठ बोलने का संस्कार है, नाउ पीपल विल से सो व्हाट शुड आई थिंक, ही इज बिकम वेरी ऑनेस्ट, वो सच बोल रहा है, जो मुझे तो पता है ना मेरा एम्प्लॉय है वो झूठ बोलता है, मुझे मालूम है, ठीक है ये मालूम है, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम उनसे बात कर रहे हैं तो पहले से ही ये सोच कर नहीं बात को सुनना है कि ये झूठ बोलता है, क्लीन करके फिर उस बात को सुनना है, सेफ गार्ड करते हुए कि अब मैं इस बात को सुनूंगा और अब एनालाइज करूंगा कि व्हाट इज इट दिस टाइम, दैट ऑल्सो कैन बी, क्योंकि जो झूठ भी बोल रहा है वो हर बार तो झूठ नहीं बोल रहा ना, लेकिन क्योंकि हम फिल्टर लगा लेते हैं हमें उस व्यक्ति की हर बात भी
1: झूठी
0: लगने लगती है, तो क्लीन स्लेट से मिलेंगे तो फ्रेश उसकी इस बात को भी सुनेंगे और अपने परखने की शक्ति को ठीक रखेंगे, अपनी परख शक्ति को ठीक रखेंगे कि एनालाइज कर पाए कि इस बार क्या सही है क्या नहीं है, लेकिन पहले से ही डाउट मिलने से पहले से ही ये थॉट वो तो झूठी बोलता है, वो तो है ही झूठे ना, ये जो हम लेबल्स लगा देते हैं ये तो है ही ऐसे, ये तो है, ये जो लेबल लगता है ये पास एक्सपीरियंस की वजह से लगता है, और फिर हम उनको मीट फ्रेश, एनालाइज इन द फ्रेश मीटिंग, डू नॉट मीट थ्रू द लेबल ऑफ द पास्ट मीटिंग, क्योंकि उसमें फिर हमारा भी नुकसान रिश्ते का भी नुकसान हो सकता है, क्लीन मीटिंग एवरी टाइम, ये भी होमवर्क करना है, डू नॉट मेक द पास्ट माई प्रेजेंट, स्पेशली जब कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट्स हुए होते हैं, कोई बड़ी बात हो गई है, असाइड फिनिश्ड, हो सकता है सामने वाला भी उस बात को खत्म करके और रिजोल्व करके आ जाया हो, लेट्स बी ओपन टू अ न्यू एक्सपीरियंस,
1: लेट्स बी ओपन टू अ न्यू एक्सपीरियंस एंड लेट्स बी ओपन एंड वेट फॉर योर नेक्स्ट एपिसोड,
0: थैंक
1: यू सो मच, नमस्कार.
2: When someone around us is in pain, if we also create pain, then we are only adding to the existing pain. If influenced by another's situation, we create anger or hurt, then collective consciousness starts becoming negative. This is how negativity spreads in society. Compassion means remaining stable when others are in pain, sending them vibrations of love and power, which they will use to heal themselves. Detachment means remaining uninfluenced by others' vibrations. This allows our vibrations to influence them. If we have had an unpleasant interaction with someone, clean your mind of the past experience before you meet them again. The clean perspective will radiate pure vibrations in the next meeting and will create a pleasant interaction.
3: जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है. नमस्कार, मैं हूँ अमोल, आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं. आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते, मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा हमें, क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन, आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8 खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खबरों का सफर। इस रेडियो प्रोग्राम में मैं आपका हम सफर सनी। जी हां, आइए आज के इस सफर को बहुत ही सुहाना और यादगार बनाते हैं चंद लाइनें आप सबके लिए। प्यार का बदला कभी चुका न सकेंगे, चाह कर भी आपको भुला न सकेंगे। तुम ही हो मेरे लबों की हंसी, तुमसे बिछड़े तो फिर मुस्कुरा न सकेंगे।

0: तो आइए आगे बढ़ते हैं इस खूबसूरत लाइनों के साथ और आपके चेहरे पर सदा मुस्कुराहट हम देखना चाहते हैं और बात करते हैं 1960s का। 65 में एक बहुत ही अच्छी फिल्म आई थी जिसका नाम था आरजू। कुछ गाने जो थे इस फिल्म के बहुत पॉपुलर हुए थे और आरजू फिल्म में एक लव स्टोरी है। राजेंद्र कुमार और साधना और फिरोज खान पर यह पिक्चराइज किया गया था जिसमें हीरोइन साधना को अपंग लोगों से नफरत बताया गया है और ऐसा होता है कि हीरो जो राजेंद्र कुमार स्टोरी में उनका एक्सीडेंट बताया गया और वो अपाहिज हो जाता है और इस वजह से हीरो को ये बात पता है कि हीरोइन को नफरत है अपंग लोगों से, तो इस बात के कारण वो उनसे नहीं मिलते हैं और यहाँ पर स्टोरी में एक ट्विस्ट बनता है। तो आइए इस फिल्म के दो गाने हैं जो अक्षर अ से शुरू होता है।
1: फूलों की रानी,
0: इसे लिखा है हसरत जयपुरी ने और मोहम्मद रफी साहब ने आवाज दिया है और संगीत से सजाया है शंकर जय किशन ने।

कभी खुद झिझकना। कभी रास्तों पर बहकना।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। ख्वाबों का सफर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। कहते हैं किसी मोड़ पर तेरा दीदार हो जाए, काश तुझे मुझ पर एतबार हो जाए। तेरी पलके झुके और इकरार हो जाए, काश तुझे भी मुझसे प्यार हो जाए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आरजू फिल्म का ये खूबसूरत गीत आपने अभी सुना, बड़ा सुकून देता है ना दिल को। ओल्ड मेलोडीज में ये जिंदा दीदी है जो आज के गानों में कहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, 1952 की बात करते हैं। एक और लव स्टोरी वाली फिल्म आई थी जिसका नाम था धार, जो दिलीप कुमार और निम्मी पर फिल्माया गया था। इस फिल्म में दिलीप कुमार को एक गरीब परिवार का बताया गया है और वो अपने परिवार को चलाने के लिए खिलौने बेचता है और वो शराब भी पीता है और उसकी गांव की लड़की पार्वती से प्यार हो जाता है। कुछ समय के बाद दिलीप कुमार पैसे कमाने के लिए शहर की ओर जाता है, बहुत पैसा कमाता है, लेकिन जब वो लौट के आता है पैसे कमाकर, तो पार्वती के घर वाले उसकी शादी दूसरी जगह तय करते हैं। इस बीच फिल्म का क्लाइमेक्स बनता है, ऐसे में फिल्म आगे बढ़ता है और फिर हैप्पी एंडिंग बताया गया है। और कुछ साल के बाद इसी नाम का एक और फिल्म आया जिसमें राजेश खन्ना ने लीड रोल प्ले किया था। तो चलिए दाग 1952 का ये फिल्म में एक खूबसूरत गाना है जो शुरू होता है अक्षर आ से। तो चलिए इस गीत का आनंद उठाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: 7.8 FM पर ख्वाबों का सफर, मैं हूँ आपका हम सफर सनी। कहते हैं ना, भंवर से निकलकर किनारा मिला है, जीने को फिर से एक सहारा मिला है। बहुत कश्मकश में थी ये जिंदगी मेरी, उस जिंदगी में अब साथ तुम्हारा मिला है। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज। साथियों, फिल्मों की जब बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, और उसमें कहीं न कहीं कुछ चीजें हैं जिन्हें हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। फिल्मों में, ये थिएटर में जब भी हम लोग कुछ चीजें देखते हैं तो वो हमारा मन या दिल कहता है, वो पिक्चराइज किया जाता है, वो थिएटर में दिखाया जाता है, जो कि आम जिंदगी में आसान नहीं होता। जैसे कि आप देखिए, मान लो किसी लड़के को या लड़की को अपनी दिल की बात बताना हो, कैसे बताए ये सोच कर ही हम रह जाते हैं आम जिंदगी में, और कभी कभी इतनी देर हो जाती है कि बात बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जिससे बात करनी थी उसकी शादी हो गई होती। तो ऐसा ही एक कुछ मस्ती भरा गीत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें एक लड़के को एक लड़की से शिकायत है, और वो शिकायत गाने के माध्यम से बड़े ही खूबसूरत अंदाज में लड़की को कहता है।
1: ऐ नरगिस मस्ताना,
0: जिसको लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने और मोहम्मद रफी साहब ने गाया है, संगीत शंकर जय किशन साहब का। आइए इस खूबसूरत मस्ती भरा गीत का आनंद उठाते हैं, फिर वापस लौट के आते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जी हाँ, आप रेडियो पुनेरी आवाज को टाइम पर ऑन नहीं करते हैं, बस इतनी शिकायत है हमारी। मैं हूँ आपका हम सफर सनी ओनली ऑन रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। जी हाँ, 1965 की बातें हम लोग कर रहे हैं, उसमें जो फिल्में रिलीज हुई थी उनकी कुछ कुछ बातें मैं आपको सुना रहा हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, जिंदगी से यही गिला है मुझे, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे, तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे। जब बात करते हैं 1947 की, तो बात आती है उस दौर में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बना करती थी। उस समय उमा देवी, नूर जान, सुरैया जैसे फीमेल सिंगर्स बहुत पॉपुलर हुआ करते थे और उनकी आवाज में एक अलग कशिश हुआ करती थी, और उस समय प्यार का इजहार भी कुछ अलग अंदाज से किया जाता था। 1947 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था दर्द, जो एक डॉक्टर की कहानी बताती है। कैसे एक डॉक्टर गांव की सेवा के लिए जाता है और वहां उसकी एक गांव की लड़की से प्यार हो जाता है। उस समय 1947 जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, उस समय इस फिल्म के सभी गाने हिट हुए थे। ऐसे में एक खूबसूरत गाना जो मैं आप सभी के लिए सिलेक्ट किया हूँ, अक्षर आ से जो शुरू होता है, वो मैं अभी आपको सुनाने जा रहा हूँ। जी हाँ, आप जैसे अल्फाज सुनेंगे तो लगेगा 70s और 80s में जो लोग पैदा हुए हैं, उनको शायद ये गाने के लफ्ज कहीं न कहीं वो सुने होंगे, लेकिन लफ्ज सुनने के बाद आपको पता चलेगा हाँ हाँ ये हिट गाना है उस समय। तो उमा देवी की आवाज में शकील बदायूं का लिखा, नौशाद साहब का संगीत से सजा ये खूबसूरत गीत रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: मेरे दिल ने जब भी कभी कोई दुआ मांगी है, हर दुआ में बस तेरी ही वफा मांगी है। जिस प्यार को देखकर जलते हैं ये दुनिया वाले, तेरी मोहब्बत करने की बस वो एक अदा मांगी है। भैया एक ख्वाबों का सफर इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। 1965 की बातें हम लोग कर रहे हैं। उस समय शायर लुधियानवी और मोहम्मद रफी और इनके साथ रवि शंकर जयकिशन ऐसे बहुत ही खूबसूरत संगीतकारों की जोड़ी थी। और उस समय 1965 में कुछ खास फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें एक और फिल्म थी जिसका नाम है काजल। और उस समय ये रिलीज हुई थी, टॉप 20 में इसका नाम आया था और बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही हिट रही। राम महेश्वरी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म, जो पद्मिनी, मीना कुमारी, राजकुमार और धर्मेंद्र पर फिल्माया गया था, इसमें दो गाने हैं जो अक्षर अ से शुरू होता है, रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना।
2: अगर मुझे न मिली तुमको मैं ये समझूंगा।
1: दूसरा जिसके बोल है,
2: आपके पास जो आएगा पिघल जाएगा।
1: तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक बात बताना मैं भूल ही गया, 1965 का दौर रिसर्च का था। चाहे फिल्म के डायरेक्शन में हो या लिरिक्स हो, उसमें काफी एडिशन होते रहे। इस गीत में भी लिरिक्स के साथ आलाप और सरगम का मिश्रण सुनने को मिलेगा, जो आपको बहुत पसंद आएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम। खुश रहो, खुशियां बांटो।

कलम चलती है तो दिल की आवाज लिखता हूँ, गम और जुदाई के अंदाजे बयां लिखता हूँ, रुकते नहीं है मेरी आंखों से आंसू, मैं जब भी उसकी याद में अल्फाज लिखता हूँ। तो चलिए इस खूबसूरत अंदाज के साथ, मोहब्बत के इन अल्फाजों के साथ, कभी कभी मोहब्बत में बात इस कदर बढ़ जाती है, प्रीतमा अपने प्रेमी के लिए इस हद तक जाती है और कहती है, अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो, और कभी आपकी आंखों में आंसू नजर ना आए, बस सदा आपकी आंखों में हंसी नजर आए। तो कितना प्यार करती है प्रीतमा कि प्रेमी को ये शब्द कहती है। 1964 में आपकी परछाई ये फिल्म आई थी, एक फैमिली ड्रामा जिसमें एक एक्सीडेंट में व्यक्ति की आंखें चली जाती हैं, और इसी में घर को चलाने के लिए जो मेन हीरो धर्मेंद्र शहर की ओर जाता है और फिर लौट के आता है तो घर का सीन बिल्कुल बदल गया होता है। ऐसे समय में इस मुश्किल घड़ी में हीरोइन हीरो के लिए ये गीत गाती है, तो ऐसे में ये गीत हिम्मत का काम करता है हीरो के लिए। राजा मेहंदी अली का लिखा ये गीत, लता जी की आवाज में मदन मोहन का खूबसूरत संगीत से सजाइए गीत। आइए आपके लिए रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: खाबों का सफर को शायद आप भूल नहीं पाएंगे, कितना अच्छा लग रहा है ना, आपके मैसेजेस और आपके फोन कॉल्स मेरी हौसला अफजाई करते हैं, तो आपके प्यार को देख खुशी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने एसएमएस किया, फोन किया। और आइए बात करते हैं, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने अभी सुना 1964 का। 1960s में बहुत सारे फिल्में बनी जिसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सामने आई थी। हौसला तुझ में न था मुझसे जुदा होने का, वरना काजल तेरी आंखों का न यूं फैला होता। 1965 में एक और फिल्म आई थी, देवानंद पर पिक्चराइज किया गया था, तीन देवियां, जिसमें देवानंद को एक राइटर के रूप में बताया गया है और वो अलग अलग सिचुएशन में तीन लड़कियों से दोस्ती उसकी हो जाती है। अब लास्ट में ये कंफ्यूजन हो जाता है देवानंद को कि आप शादी किससे करें। देवानंद एंड में तीनों से मिलते हैं, सबकी दिल की बात को जान लेता है और सबको कहता है मुझे 4 से 7 दिनों का टाइम दो, और वो फिर सोच समझ कर एक डिसीजन लेता है। तीनों लड़कियां तो बहुत ही सही हैं, लेकिन इस समाज में उसे ऐसा करने नहीं देता और वो तीनों से तोड़ भी नहीं निभा पाएगा। इसीलिए देवानंद सोच समझकर डिसीजन लेता है और वो फिल्म में नंदा जो हीरोइन है, जिससे उसकी पहली मुलाकात हुई होती है, उसी से वो शादी करता है और हैप्पी एंडिंग होता है। आइए इसी फिल्म का एक गीत जो अक्सर आ से शुरू होता है,
1: ऐसे तो न देखो,
0: सचिन देव बर्मन का संगीत, रफी साहब का गाया हुआ और मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने इसे लिखा है। तो आइए इस खूबसूरत गीत को सुनते हैं, उसके बाद फिर आपसे मुखातिफ होते हैं। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

इनको कभी आंखों से गिराने नहीं देता, उनको लगते हैं मेरी आंखों में प्यारे आंसू। ख्वाबोगश सफर में मैं आपका हम सफर सनी, ऐसा तो न सुनो कि हमको और आपको नशा हो जाए। रेडियो पुनीरी आवाज का नशा हो ही गया है, इसलिए तो सुन रहे हैं आप और सुना रहे हैं हम। 1965 की बात करते हैं हम। जी हाँ, एक और खूबसूरत फिल्म आई थी उसी समय जिसका नाम था भीगी रात। ये एक कॉमेडी ड्रामा और रोमांस वाली फिल्म थी जिसमें अशोक कुमार और प्रदीप कुमार, मीना कुमारी और कौशल कुमारी ने काम किया था, जिसमें अमीर और गरीब के बीच की प्रेम कहानी को बताया गया था। अब यहाँ पर मजरू सुल्तानपुरी साहब ने गीत लिखा है जिसके लिरिक्स की कुछ लाइनें पहले वाले गीत जो अभी हमने सुना उससे बिल्कुल मिलते जुलते हैं, क्योंकि भाव वही आया है जहाँ पर इस तरह से प्रेम की कड़ी। तो कभी कभी गीतकारों को, राइटर्स को लिखते समय सीन एक हो, सिचुएशन एक हो, तो कैसे लिरिक्स को बदलते हैं ये उनके हाथ का कमाल है। तो आइए इस गीत को सुनने के बाद, शुरुआती लाइन सुनते ही आपको लगेगा फिर से वो गाना मैंने शुरू किया नहीं, थोड़ा धीरज रखते ही आपको पता चलेगा कि राइटर ने किस तरह से गीत को भाव में फिरोया है। सीन वही होने के बाद, सिचुएशन वही होने के बाद इन्होंने कैसे उसको चेंज किया है तो पता तो चलेगा। यहाँ पर रवि साहब ने संगीत दिया है, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुरी ने इस गीत को गाया है। ऐसे तो न देखो कि बहक जाए हम।

तो चलिए, काबू का सफर में अब आखिरी मोड़ पे चंद लाइनें आपके लिए। जाने तन्हा पे गुजर जाए हजारों सर में, आंख से अस्क रवा हो ये जरूरी तो नहीं है। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM खाबो का सफर। मैं हूं आपका हम सफर। तो चलिए, इसी के साथ मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए रेडियो पुनेरी आवाज के साथ। सलाम, नमस्ते, खम्बा गणिसा, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमैटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन

0: आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बींग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जो पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, एंड असर्टिव जब हम होते हैं हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: जग प्रेमी रसिक श्रोते हो, तुम्ही ऐकत आहात पुणेरी आवाज अर्थात 107.8 FM आणि तुम्ही आहात आरजे जगदीश सोबत रंगतदार आणि बहारदार कार्यक्रमात अलगची झलक मध्ये। अलग तुमची रसिक श्रोते हो, झलक आमची। अलग प्रेमी रसिक श्रोते हो, आज आपल्या अलगची झलक या कार्यक्रमाचा शतकोत्तर अमृत महोत्सवी अर्थात प्रयोग क्रमांक 175 आहे। अलक प्रेमी रसिक श्रोते हो, इतका मोठा पल्ला मी गाठेल असं माझं मलाच वाटलं नव्हतं, केवळ आणि केवळ तुमच्या प्रेमाने हे शक्य झालं। प्रेम असंच राहू द्या, वृद्धिंगत होऊ द्या आणि परमेश्वर तुम्हाला दीर्घायुष्य देऊ दे। खरंच मनापासून धन्यवाद। अलक प्रेमी रसिक श्रोते हो, 19 ऑक्टोबर 2025 पुढच्या अलगकडे आरजे जगदीश वळतोय, जी आपल्याला पाठवली आहे अनामिका या टोपण नावाने लिहिणाऱ्या ठाणे येथील अलगकार विद्या कुंभार। अलगकार विद्या लिहितात, नैराश्याच्या गर्ततेत सापडलेल्या तिला काहीच

रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप और ये है कार्यक्रम बच्चों की दुनिया, जहां हम बच्चों से बात करते हैं। और आज मेरे साथ बहुत प्यार

0: से नन्हे मुन्ने मेहमान हैं, तो आइए पहले उनसे मिलते हैं। अपना नाम बताइए।
1: हेलो, ओम शांति। मेरा नाम त्रिशा है, मैं सेकंड क्लास में पढ़ती हूँ।
2: हेलो, मेरा नाम यश है, सातवीं कक्षा में पढ़ता हूँ।
3: हेलो, मेरा नाम व्रत है, मैं आठवीं कक्षा में पढ़ता हूँ।
4: हेलो, मेरा नाम आयुष है, मैं भी आठवीं कक्षा में पढ़ता हूँ।
0: अच्छा, तो ये नन्हे मुन्ने मेहमान आज जो हमारे साथ आए हैं, आप लोग कहाँ से आए हो?
2: हम कटलाल नडियाद गुजरात से आए।
0: अच्छा, तो इतनी दूर आप लोग ट्रैवल करके आए हो, कैसा लग रहा है?
4: बहुत अच्छा।
0: बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे ये बताओ त्रिशा, आप सपने देखते हो?
1: हाँ।
0: देखते हो रात को कि दिन में?
1: रात।
0: रात को। अच्छा, आपका सबसे फेवरेट वाला सपना क्या है अब तक जो आपको याद है?
1: मैं परमधाम में जाऊंगी।
0: ये आप सपना देखते हो? अरे वाह, और ये सपना आपको कब आया था?
1: ये मुझे परसों आया था।
0: अच्छा, और यश, आप क्या सपना देखते हो? रात को कभी ड्रीम्स नहीं आते आपको?
2: आते हैं पर
0: भूल जाते हो। अच्छा ठीक है, तो आप याद करने की कोशिश करो, तब तक हम व्रत से पूछते हैं कि उसको क्या सपने आते हैं।
2: सतयुग की दुनिया का।
0: आपको रात को सतयुग के सपने आते हैं? हाँ।
2: एक बार आया था।
0: क्या ड्रीम आया था आपको?
2: पूरी सतयुग की दुनिया का वर्णन किया हुआ।
0: मतलब आपको बहुत सारे महल और ऐसा कुछ दिखाई दिया?
2: हाँ।
0: क्या दिखा आपको, हमें बताओ।
2: सोने के महल थे, पुष्पक विमान था, कई सारे प्राणी थे, लक्ष्मी नारायण थे, और वहाँ पर सिंगिंग, डांसिंग एंड ड्राइंग, वो तीन वहाँ की स्कूल के मेन पीरियड थे, मैंने वो भी देखा।
0: अच्छा, और आप क्या कर रहे थे वहाँ पे?
2: मैं देख रहा था।
0: आप देख रहे थे? अरे वाह, मतलब सुंदर सुंदर महल देखे, तो बहुत ही प्यारा सपना था। और आयुष, आपको कभी सपने आते हैं?
5: हाँ, बहुत कम बार।
0: बहुत कम आते हैं। आपको कोई सपना याद है अपना?
5: अभी तो ठीक तरह से है।
0: ठीक तरह से याद नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, कभी आप लोगों को कोई हॉरर या ऐसा सपना आया जिसे देख के आप डर गए हो?
2: हाँ, एक बार आया था।
0: आया था?
2: जब हम है ना, मेरी बहन जब 12वीं कक्षा में थी और उसे पढ़ने के लिए हम नडियाद गए थे, तो हम नडियाद जाते थे ना, तो एक बार मुझे सपना आया था कि हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा सांप आया था। हम सब सोसाइटी के सभी लोग खेल रहे थे और एकदम से बहुत बड़ा सांप आया और हम सब के घर नष्ट करके चला गया।
0: एक बहुत बड़ा सांप आया? अच्छा, तो उससे पहले कहीं कोई सांप के बारे में देखा था या पढ़ तो नहीं रहे थे?
2: नहीं।
0: कोई नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि जिसके बारे में चीज को हमने कभी देखा हो या उसके बारे में पढ़ा हो या सुना हो, हमारे सपने में आ जाती है ना? तुषा, आपको कभी डर लगा ऐसा सपना देख के? कोई भी
1: नहीं।
0: कोई भी नहीं? अच्छा, मतलब तुषा बहुत ब्रेव है। अरे वाह। और ब्रज, आपको कभी ऐसा कोई सपना आया है?
2: नहीं।
0: कभी नहीं?
2: कभी नहीं।
0: अरे वाह। और आयुष?
5: थोड़े थोड़े।
0: थोड़े थोड़े क्या देखा आपने?
5: मैं खेल रहा था, फिर रात हो गई और जब मैं और मेरा भाई टीवी देख रहे थे और बहुत देर हो गई थी, रात को 12 बजे हो गए थे, और हम भूत के सीन देख रहे थे तो हम सभी डर गए थे, तो फिर जब मैं सो गया तो फिर मुझे उसका सपना आया।
0: अच्छा, मतलब भूत के ऐसे कुछ सीन आपने देखे जिसको आप देख के डर गए और भूत का सपना आया, वो सपना याद है आपको क्या था?
5: नहीं, सिर्फ पता है कि भूत आया था और हम डर गए, फिर मम्मी के पास चले गए थे।
0: मम्मी के पास चले गए। कभी कभी अगर ऐसी चीजें हम लोग देखते हैं तो हमारा माइंड वो याद कर लेता है ना, और फिर सपने के रूप में हमें दिखाता है, इसलिए ऐसी चीजें नहीं देखनी चाहिए, है ना यश?
5: हाँ हाँ।
0: अच्छा, और ये तो सपने हम रात को देखते हैं जो हमें कभी कभी आते हैं, लेकिन कुछ सपने हम लोग खुली आंखों से भी देखते हैं, पता है आप लोगों को? पता है किसी को? पता है आयुष, आप बताओ।
5: मेडिटेशन करते समय।
0: जब हम मेडिटेट करते हैं तब भी देखते हैं, और जब हम कोई प्लान्स करते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो वो भी तो हमारा सपना होता है ना, है ना? तो त्रिशा, आपने ऐसा कोई सपना देखा है कि आप बड़े होके क्या करोगे?
1: नहीं।
0: नहीं? अगर कोई आपसे पूछे आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो तो क्या बताओगे?
1: मैं कलेक्टर बनना चाहूंगी।
0: आप कलेक्टर बनना चाहते हो? अरे वाह। मान लो

0: आपको बड़े होके आपकी ड्रीम चेंज हो गई, फिर आपको लगा मैं कुछ और बनूंगी, तो फिर आप क्या बनोगे?
1: मेरी मम्मा कहेंगी वो बनूंगी।
0: जो आपकी मम्मा कहेंगी आप वो बनोगे? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए हमको पता है बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी तुषा, है ना? और रज, आप कोई सपना देखते हो ऐसा, क्या करना चाहते हो बड़े होके?
2: मेरा सपना है मैं डॉक्टर बनूंगी।
0: आप डॉक्टर बनना चाहते हो? अरे वाह, आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो?
2: अच्छा लगता है कि किसी को बीमारियों से निकाल।
0: अच्छा, और तुषा आप ऐसा कोई सपना नहीं देखते?
1: मैं नहीं, कोई ऐसा सपना नहीं देती, वो तो मेरे मम्मी ने कहा था ना, इसीलिए।
0: क्या कहा था आपकी मम्मी ने?
1: कि तुम कलेक्टर बनना।
0: अच्छा, और तुषा कलेक्टर बनना चाहते हो, किसी मम्मी ऐसा सपना देखती है। और यश?
3: मैं भी डॉक्टर ही बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार में मेरी बहन भी अब डेंटल कर रही है, तो वो भी डॉक्टर की लाइन में आएगी। मेरे हमारी फार्मेसी की मेडिकल स्टोर है, तो मैं अपने फैमिली के जनरेशन को बढ़ाना चाहता हूँ और सबकी मदद।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही नेक ख्याल है, अपने फैमिली की भी हेल्प और सबकी मदद भी, बहुत अच्छी बात है। और आयुष, आपका सपना क्या है?
4: अभी तक कुछ सोचा नहीं है, पर इंजीनियर बनना है।
0: इंजीनियर बनना है? अरे वाह, और इंजीनियर क्यों बनना चाहते हो, क्या अच्छा लगता है आपको?
4: सबसे अलग, हमारे परिवार में सभी ऐसे ही बनते हैं, डॉक्टर और उसी लाइन में, पर मुझे डॉक्टर नहीं बनना है।
0: अच्छा, मतलब आपको कुछ अलग करना है। अरे वाह, ये भी बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, वैसे तो हमारे सपने धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो उसके साथ चेंज भी होते हैं, लेकिन हमें सपने हमेशा देखते रहना चाहिए, है ना? और ये बताओ, आप लोग जब स्कूल जाते हो तो क्या सपना देखते हो, क्या सोचते हो, मुझे ये करना है, या क्लास में फर्स्ट आना है, या फिर किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना है, या किसी कॉन्टेस्ट में कुछ करना है, ऐसा कुछ सोचते हो आप लोग?
1: हाँ।
0: क्या सोचते हो तुषा?
1: हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन था, तो उनमें मैं नहीं जा पाई ना, तो मैं नेक्स्ट एनुअल में जाएगी।
0: अच्छा, मतलब फर्स्ट एनुअल फंक्शन आप अटेंड नहीं कर पाए, क्यों?
1: क्योंकि मैं बीमार हो गई थी।
0: ओह, तो फिर नेक्स्ट तो आप अटेंड कर लोगे, है ना? और क्या करोगे आप एनुअल फंक्शन में?
1: हम एनुअल फंक्शन में सर जो कहेंगे उसके ऊपर डांस करेंगे।
0: अच्छा, मतलब तुषा को डांस बहुत अच्छा लगता है।
1: हाँ।
0: अरे वाह। और यश?
3: मैं स्कूल की कल्चरल एक्टिविटीज में क्विज में पार्ट लेना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी उसका होता है सिलेक्शन तब मैं एब्सेंट हो जाता हूँ।
0: जब भी सिलेक्शन होता है तो एब्सेंट हो जाते हो, ऐसा क्यों? आपको पता नहीं होता? कोई नहीं,
3: आधे वक्त होता है कि कुछ और ही एक्टिविटीज हो रही है और मेरी, और दूसरी तरफ सिलेक्शन हो रहा है।
0: अच्छा, मतलब यश बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्ट लेता है ना?
3: लेता हूँ, पर उतनी भी ज्यादा नहीं।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो, हमें बहुत ज्यादा से ज्यादा स्कूल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट हमेशा करना चाहिए। और ब्रज, आप क्या करना चाहते हो स्कूल में?
2: बहुत कुछ करना चाहता हूँ।
0: जैसे कि
2: क्लास में फर्स्ट आना, स्पोर्ट्स में अच्छी एक्टिविटीज करना, दूसरे कोई एग्जाम हो वो देना, ये सब करना चाहता हूँ।
0: अरे वाह, आप तो बहुत सारी चीजें करना चाहते हो, और ऐसे ही अगर आप चाहोगे तो करके भी दिखाओगे, तो करना जरूर, है ना? और आयुष, आप क्या करना चाहते हो?
4: मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी बहुत कम बार स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भाग लेने का मौका मिलता है, हर बार दूसरे लोग आ जाते हैं और पार्टिसिपेट कर जाते हैं, और जब मैं मैडम को कहता हूँ तो मैडम कहते कि सब फूल हो गया है।
0: अच्छा, मतलब आपको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिल पाता। कोई नहीं, ये मौका आपको जरूर मिलेगा, बस कोशिश करते रहना, है ना?
4: हाँ।
0: अच्छा, एक बात बताओ, कुछ सपने तो हम लोग देखते हैं, कुछ सपने हमारे मम्मी पापा भी हमारे लिए देखते हैं, है ना? वो चाहते हैं हम बड़े होकर ये करें या अभी ये करें, तो आप लोग उन सपनों के बारे में जानते हो? अच्छा, तो प्रश्न बताओ, आपके मम्मी पापा आपके लिए क्या सपना देखते हैं, क्या क्या चाहते हैं, आप क्या करो, क्या बोलते हैं वो आपको?
2: कि पढ़ाई अच्छी से करो तो डॉक्टर बन पाओ।
0: बात तो बिल्कुल सही है, अगर हमें डॉक्टर बना तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। और त्रिशा, आपके मम्मी पापा क्या कहते हैं?
1: मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे मम्मी पापा मुझे ऐसा कुछ नहीं कहते।
0: कुछ नहीं कहते, बस कहते हैं पढ़ाई करो। और आप उनकी बात मानते हो? और यश?
3: पापा मुझे हमेशा कहते हैं कि

0: और किसी को परेशान नहीं करना है।
1: ये तो बहुत अच्छा सपना है, क्योंकि डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर बहुत सारी चीजें हम लोग बन सकते हैं, लेकिन सब बन के भी एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है ना बच्चों?
2: हाँ।
1: और सब अच्छे इंसान बन के दिखाएंगे?
2: हाँ।
1: तो आज से हमारा सपना क्या है, क्या है तुषा?
2: कलेक्टर
1: और
2: अच्छे इंसान।
1: हाँ, कलेक्टर भी बनना है और अच्छा इंसान भी बनना है। वेरी गुड।

0: पापा यानी फादर के बारे में जो कि घर के हेड होते हैं और साथ ही साथ हमारे बहुत ही करीबी हमारे पापा होते हैं। तो आइए बच्चों से बात करते हैं पापा के बारे में। हेलो तुषा, कैसे हो आप?
1: मैं एकदम अच्छी हूँ।
0: अच्छे हो? अच्छा, तो आपके पापा के बारे में हमें कुछ बताओ आज।
1: मेरे पापा इंटरनेट कनेक्शन डालते हैं, वो दुनिया के बेस्ट पापा है।
0: अच्छा, आपके पापा दुनिया के बेस्ट पापा हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यानी त्रिशा अपने पापा से बहुत प्यार करती है ना? अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ त्रिशा, आपके पापा की सबसे अच्छी क्वालिटी आपको क्या लगती है?
1: वो मुझे ज्यादा रखते हैं, मेरे से प्यार से बात करते हैं और मुझे जो चाहिए वो दिलाते हैं।
0: अच्छा, मतलब आप पापा की परी हो?
1: हाँ।
0: जो भी आपको अच्छा लगता है पापा दिलाते हैं?
1: हाँ।
0: क्योंकि पापा बहुत प्यार करते हैं ना?
1: हाँ।
0: और यश, आप बताओ अपने पापा के बारे में।
2: मेरे पापा तो मेडिकल स्टोर है हमारा, तो वो ज्यादातर उनके दिन वहीं पर होता है और उनको ज्यादा टाइम नहीं मिलता, पर वो हमारे साथ जितना हो सके उतना बात करते हैं।
0: ये तो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है कि टाइम निकाल कर वो जितना स्पेंड कर पाते हैं आपके साथ स्पेंड करते हैं टाइम, और बहुत मेहनत भी करते हैं ना। और कोई ऐसी क्वालिटी आपके पापा की जो आपको बहुत अच्छी लगती है?
2: जो भी हमें चीज चाहिए वो हमें दिला के देते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पापा आपकी ड्रीम्स पूरी करते हैं, तो हमें भी पापा की हेल्प करनी चाहिए, है ना? अच्छा रज, आप बताओ अपने पापा के बारे में।
3: मेरे पापा डॉक्टर हैं, मुझे अच्छा लगता है वो मेरे सब कोई एग्जाम हो तो उसमें मुझे हेल्प करते हैं, मुझे अच्छा लगता है।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, पापा आपके सारे एग्जाम्स में मदद करते हैं।
3: हाँ।
0: और कोई इनकी क्वालिटी जो आपको सबसे अच्छी लगती है या सबसे अलग लगती है पापा में?
3: वो मेरे से प्यार से बात करते हैं।
0: और कभी डांटते नहीं?
3: नहीं डांटते, पर थोड़ा
0: थोड़ा डांटते हैं। और पापा डांटते भी हैं तो उसमें भी प्यार छुपा होता है। और आयुष, आप बताओ।
4: मेरे पापा है, मुझे एक गुण बहुत अच्छा लगता है कि वो हर काम सोच समझ कर करते हैं और उसमें भी टाइम मैनेजमेंट का देखते हैं, और फिर वो हमारे लिए टाइम स्पेंड करते हैं और हमसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हम जो भी करें वो अच्छा हो और किसी को प्रॉब्लम ना हो हम जो भी करें उससे।
0: बात तो बिल्कुल सही है, एक्सपेक्टेशन भी इसलिए रखते हैं ताकि आप बहुत अच्छा करो और आप किसी के लिए भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो कभी भी, क्योंकि पापा बड़े हैं तो वो सब समझते हैं, है ना?
3: हाँ।
0: तो आप सब अपने पापा की बात मानते हो?
3: हाँ,
0: हर वक्त मानते हो?
4: हाँ, कभी कभी नहीं, पर मोस्ट ऑफ टाइम बात मानते हैं।
0: अच्छा, और कभी कभी नहीं कब होता है?
4: जब हमारे पास टाइम नहीं होता है और वो कहते हैं कि तुम दूसरा कोई काम करो, मुझे काम है तुम्हारा चलो, तो फिर मैं नहीं आ सकता। जब मैं ऐसा कहता हूँ तो पापा थोड़े नाराज हो जाते हैं,
0: लेकिन बाद में वो आपको समझाते तो होंगे।
4: हाँ,
0: है ना? तो ऐसा होता है।

0: आपके लिए किया हो ऐसा जो आपको अभी भी याद हो?
1: हाँ।
0: क्या तुषा?
1: हम पोर्चा गए थे, मुझे वापस घुमाया था उन्होंने।
0: मतलब आपको घूमना बहुत अच्छा लगता है?
1: हाँ।
0: और पापा आपको घुमाने लेके गए थे?
1: हाँ।
0: वहाँ क्या क्या किया आपने?
1: हमने वहाँ पे फोटोज खिंचाए, फिर सरदार सरोवर डैम है ना, वो गुजरात का सबसे बड़ा डैम है, हम वहाँ गए थे। हमको लेट हो रहा था तो भी मेरे पापा वहाँ पे लेके गए।
0: अच्छा, लेट हो रहा था तभी पापा लेके गए?
1: हाँ।
0: इसीलिए तुषा के पापा वर्ग के बेस्ट पापा हैं।
1: हाँ।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, पापा ही तो हमें घुमाने लेके जाते हैं।
2: हाँ।
0: और यश, आपको ऐसा कोई मोमेंट याद है?
3: हाँ, जब मुझे मेरे फेवरेट कंपनी के उन्होंने शूज सिलाए थे, तब फर्स्ट टाइम एवर मैं उस कंपनी के दुकान पे गया था, स्टोर पे, और मुझे उन्होंने दिला के दिया था, तब मुझे बहुत खुशी हुई थी।
0: अच्छा, मतलब आपको शूज बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ भाई, पापा तो हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है, जो हमें चाहिए होता है, पापा ही तो पूरी करते हैं।
3: हाँ।
0: है ना? और आपको कुछ याद है आयुष?
4: हाँ, मुझे है ना अम्यूजमेंट पार्क में जाना बहुत अच्छा लगता है, और तो मैंने पापा को कहा था कि मुझे जाना है ये मैजिका, तो पापा ने मुझे कहा था कि थोड़ी देर के बाद, अभी टाइम नहीं है, तो मैं खेल रहा था और थोड़े समय बीत गया था, तो एक दो महीना हो गए थे, फिर बाद में पापा ने मुझे अचानक, मैं खेल रहा था तो कहा कि हमें नेक्स्ट वीक में जाना है, तो मैं बुकिंग करा दूँ, तो फिर मैं बहुत खुश हो गया था और हमने वो ट्रिप बहुत एंजॉय की थी।
0: अच्छा, अरे वाह, मतलब जहाँ आपको जाना था वहाँ पापा आपको लेके गए।
4: हाँ।
0: तो उस ट्रिप पे तो आपको बहुत मजा आया होगा।
4: हाँ, बहुत एंजॉय किया था।
0: बहुत एंजॉय किया था। कहाँ कहाँ घूमे थे आप?
4: हम महाबलेश्वर, लोनावाला, इमेजिका, गोवा, वहाँ सब।
0: अरे वाह, मतलब पापा एक लॉन्ग टूर पे लेके गए थे आपको।
4: हाँ।
0: ये तो बहुत अच्छी मेमोरी थी, है ना? अच्छा, मुझे ये बताओ, अभी तो आप लोग छोटे हो, जब आप लोग बड़े हो जाओगे, पापा हमारे लिए बहुत सारी चीजें करते हैं ना अभी, तो बड़े हो के आप पापा के लिए क्या करोगे, किसी ने कुछ सोचा है कभी?
1: हाँ।
0: क्या सोचा है?
1: मैं अपने पापा को एक नई कार दिलाऊंगी।
0: अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, पापा के लिए नई कार।
1: हाँ।
0: और आप लोगों ने?
2: मैं तो यही चाहता हूँ कि जितना हो सके मैं पापा की इतनी सेवा करूँ।
0: अपनी सेवा करूँ? ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम सेवा करेंगे, पापा की तो अभी भी सेवा कर सकते हैं, उनकी बात मान के, है ना, अच्छे से उनकी मदद करके, और बड़े होंगे तब तो करना ही है। और यश, आप?
3: मैं उनके लिए यही करूँगा, जो हमारे मेडिकल की स्टोर है उसे और बड़ा करूँगा और धंधा बढ़ाऊँगा।
0: मतलब पापा की हेल्प करोगे और जितना भी अच्छा उनके लिए कर सकते हो, शॉप के लिए वो आप करोगे। इसके लिए तो हम सबकी विशेष आपके साथ हैं। और आयुष, आप?
4: मैं पापा जब बूढ़े हो जाएंगे तभी भी उनका साथ दूंगा। अभी हम देख रहे हैं कि ये कलयुग चल रहा है, तो सभी माता पिता को छोड़ देते हैं और उनकी कोई बात नहीं मानते, उनको वो आश्रम में रख के आते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं पापा के साथ ही रहूंगा और उनको जो भी चाहिए वो मैं दिलाऊंगा, उनको सबसे अच्छा सहयोग दूंगा और उनकी जितनी मदद हो सके मैं करूंगा।
0: ये आपने बहुत सही बात की, आजकल ऐसा टाइम है, हम देखते हैं कि लोग अक्सर अपने माता पिता का साथ नहीं देते, लेकिन हम लोग जब बड़े हो जाएंगे तो मम्मी पापा के साथ रहेंगे और उनकी मदद करेंगे हमेशा, जैसा आयुष ने कहा है ना।
2: हाँ।
0: सब लोग?
2: हाँ।
0: वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छी बात है। और आपको पता है फादर्स डे क्या होता है? पता है किसी को? फादर्स डे वो दिन होता है, वैसे तो हम अपने पापा से हमेशा प्यार करते हैं, लेकिन फादर्स डे वो दिन होता है जो स्पेशली हम उनके लिए मनाते हैं, ठीक है? तो जब फादर्स डे आएगा तो आप लोग कभी अपने पापा को बताते हो कि आप लोग अपने से कितना प्यार करते हो? कोई बताता है?
1: हाँ।
0: आप बताते हो, क्या बोलते हो पापा को?
1: मैं फादर्स डे पर मैं मामा के घर रहती हूँ, उनको फोन करके कहती हूँ हैप्पी फादर्स डे, आई लव यू माय पापा।
0: अरे वाह, और पापा तो ये स्पीच हमेशा सुन के खुश हो जाते होंगे।
1: हाँ।
0: और आप लोग, आयुष, यश?
3: हम सब, मेरी बहन है और मेरा भाई और मैं, हम सब जब भी फादर्स डे या मदर्स डे आता है तब हम मम्मी और पापा के लिए कार्ड बनाकर उन्हें,
0: खुद कार्ड बना के उन्हें देते हैं। अरे वाह, जब हम खुद कुछ करके देते हैं तो मम्मी पापा को सबसे बेस्ट गिफ्ट लगता है वो, है ना? और रिच, आप?
2: मैं तो हैप्पी फादर्स डे कहता हूँ और कहता हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।
0: और आयुष?
4: मैं पहले उन्हें जब सो रहे हैं और उठने

अच्छा मुझे ये बताओ, पापा के साथ ऐसा कोई स्पेशल मोमेंट या मेमोरी आपको याद है? कोई ऐसा दिन जो आपको बहुत स्पेशल लगा हो या बहुत अच्छा लगा हो, कुछ पापा

0: तभी मैं सुबह सुबह उठता हूँ और उन्हें गले लगा देता हूँ और फिर कहता हूँ हैप्पी फादर्स डे, तो फिर वो बहुत खुश हो जाते हैं और उनका पूरा दिन अच्छा जाता है। और फिर आखिर में मैं उन्हें कोई गिफ्ट देता हूँ तो वो ज्यादा खुश हो जाते हैं।
1: आखिर एक बार प्यार से आप उनसे बात करते हैं, उनसे गले लगते हैं, तो ये भी उनके लिए बहुत प्यारा सा गिफ्ट होता है ना बच्चे?
2: हाँ,
1: क्योंकि आप लोग अभी छोटे छोटे हो तो सबसे अच्छा गिफ्ट उनके लिए यही है कि आप उनको बताओ कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, उनकी बातें मानो और उनसे अच्छे से जो भी उनके लिए कर सकते हो प्यार से करो। ठीक है, तो इस फादर्स डे पे सब लोग अपने पापा को बताएंगे?
2: हाँ
1: वेरी गुड।

0: और पापा के बारे में हमने बहुत सारी बातें की, अब मुझे ये बताओ मम्मी के बारे में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है?
1: मम्मी के बारे में ये बहुत अच्छी विशेषता है कि वह कभी भी वह अपनी चॉइस से खाना नहीं बनाती, हर बार हमको पूछ के ही बनाती है।
0: बात तो सही है, मम्मी अपने से पहले हमारे बारे में सोचती है, है ना?
1: हाँ।
0: और जिसको जो चाहिए वो बना के भी देती है।
2: हाँ।
0: अक्तिशा आपको क्या अच्छा लगता है मम्मी के अंदर?
3: मम्मी हमारे घर के सब काम करती है।
0: और आप उनकी हेल्प करते हो?
3: हाँ।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और आयुष?
4: मम्मी कभी भी डांटती नहीं है और प्यार से समझा देती है, तो हम समझ जाते हैं और हमें हमारी गलती का एहसास कराती है।
0: ये तो मम्मी की बहुत अच्छी पावर है ना कि हम लोग गलती भी करते हैं तो डांटती है, समझाती है, और डांटती भी है तो किस लिए? ताकि हम सुधर
1: जाएं,
0: है ना? और रिच आपको क्या अच्छा लगता है मम्मी में?
5: तो सब अच्छा लगता है कि माँ पूरे दिन काम करती है और हमारे बारे में सोचती है कि बच्चों को सब अच्छा कैसे करे।
0: बात तो सही है। तो आप लोगों ने हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की और हमसे बहुत प्यार से और बहुत समझदारी से जवाब दिए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।
4: या वेलकम।
0: फिर से मिलेंगे रेडियो मधुबन 90.4 FM पर, लेकर बच्चों की दुनिया और करेंगे ढेर सारी बातें। तब तक सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय बच्चों।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दें या भरते जाएं, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए?

0: भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है। अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई। लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: प्यार के जमाने
1: आज कहां लगे जाने,
0: आए प्यार के जमाने
1: आज कहां लगे जाने,
0: दुल्हन को मनाने
1: चल हट रे दीवानी,
0: दुल्हन को मनाने
1: चल हट रे दीवानी।
0: ऐसे तो नहीं मैं तेरे दर से हटूंगा गोरी जी, न सकूं तो अब मर के रहूंगा गोरी, दिल में यही है कुछ करके हटूंगा गोरी।

0: सुनता है कम।
1: झूठी बातें हैं भलम,
0: ले लो प्यार की कसम।
1: झूठी बातें हैं भलम,
0: ले लो प्यार की कसम। प्यार हमेशा से है अकल गंवाने वाला, फूल समझ कर शोले तो उठाने वाला, आग से खेल वही जो है जल जाने वाला।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियां।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बने रहिए।
3: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष करियर ऑप्शन कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे होंगे। आइए आज के इस कार्यक्रम को सजाते हैं, और हमेशा की तरह हमारे साथ करियर एक्सपर्ट अमृतपाल कौर जी हमारे साथ हैं, और उनसे हम लोग बातें करने वाले हैं, तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। और आज अमृतपाल कौर जी जो है ब्लॉगिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ब्लॉगिंग एक बहुत बड़ा विषय हो गया आज के समय में, और इंटरनेट जगत में जैसे कि आप गूगल ओपन करते हैं तो बहुत सारी चीजें आर्टिकल साइड में लिखी हुई मिलती हैं, या कभी कोई टाइप करते हैं आपकी ये ऐसे चाहिए हमें, या इस तरह की बातें समझना चाहता हूं, तो तुरंत आपको जो है उस टाइप का आर्टिकल मिल जाता है, उस टाइप का ऐसे मिल जाता है, या कोई लिंक मिल जाता है जहां से ये चीजें आपको मिल जाती है। तो ये ब्लॉगिंग वाला जो सिस्टम है, जहां पर हर व्यक्ति जो है जो लिखना जानता है समझना जानता है और वो लिखने के शौकीन है, तो उनके लिए ब्लॉग एक अच्छा माध्यम है। यूथ है वो अपना करियर भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और मीडिया पर्सन है उन्हें हमेशा नई चीजों के बारे में जानना और लिखना होता है, तो पहले वो ब्लॉगिंग पे लिखते हैं और फिर उसको करेक्ट करके कहीं भी न्यूज़पेपर या आर्टिकल में देते हैं। आइए इस विषय को जानेंगे आज, ब्लॉगिंग कैसे शुरू कर सकते हैं, क्या है ब्लॉगिंग, और फिर कौन कौन इसमें किस तरह से जुड़ सकते हैं और अपना कमाई कितना कर सकते हैं, ये सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं आज के शो में। तो आप सभी की तरफ से अमृतपाल कौर जी स्वागत है आपका।
4: ओम शांति, नमस्कार, मैं हूं आपकी करियर काउंसलर अमृतपाल न्यू दिल्ली से। आज न्यू एज करियर्स की श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं ब्लॉगिंग, यानी कि किसी भी टॉपिक पर किसी भी सब्जेक्ट पर हम इंटरनेट पर कैसे कुछ लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट के बजाय इसमें काफी डिटेल में जाकर हम उस सब्जेक्ट के ऊपर जब बात करते हैं तो उसको हम डिजिटल कंटेंट जो हम राइटिंग में करते हैं उसको हम ब्लॉगिंग बोलते हैं। 1990 के दशक में जिसको एक ऑनलाइन जर्नल के तौर पर स्टार्ट किया गया था, आज वो इतना सोफिस्टिकेटेड हो चुका है कि मार्केटिंग की दुनिया में ब्लॉगिंग एक बहुत ही अहम हिस्सा रखता है। ब्लॉगिंग इंडिपेंडेंट भी है और ब्लॉगिंग अलग मार्केटिंग के साथ भी चलता है। तो काफी तरह के ब्लॉग्स होते हैं, जैसे कि बहुत पॉपुलर कैटेगरीज हैं, लाइफस्टाइल ब्लॉग्स, ट्रेवल ब्लॉग्स, फूड ब्लॉग्स, रेसिपी ब्लॉग्स, फाइनेंस ब्लॉग्स, टेक्नोलॉजी ब्लॉग्स, पेरेंटिंग ब्लॉग्स, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी नीश एरिया में आप अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और आज की डेट में ब्लॉगर्स जो हैं वो सिर्फ राइटर्स नहीं हैं, हर तरह के कंटेंट क्रिएटर्स, मार्केटर्स, फोटोग्राफर्स, बिजनेस ओनर्स मॉडर्न ब्लॉग सिस्टम को यूज करते हैं अपने एक बड़े लेवल पे अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए, जिसमें सोशल मीडिया, न्यूज़लेटर्स, वीडियोस, पॉडकास्ट सब कुछ इसके एक दायरे में आते हैं। तो यहाँ पर अगर ब्लॉग्स की वैरायटी की बात करते हैं तो ब्लॉग्स की वैरायटी बहुत ज्यादा है। किस तरह से इस एरिया में अपना आप आगे का करियर बना सकते हैं, उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि चैलेंजेस किस तरह की आती हैं। तो इस एरिया में क्योंकि ये 1990 के दशक में स्टार्ट हुआ था, तो आज की डेट में इसमें काफी हद तक सैचुरेशन आ चुकी है। सैचुरेशन यानी कि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, सैचुरेशन नहीं कहना चाहिए, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। और दूसरी बात यह है कि हर प्लेटफॉर्म, जो भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म है, वो ज्यादा से ज्यादा एल्गोरिदम पर काम करते हैं, यानी कि जिस ब्लॉग को सबसे ज्यादा व्यूअरशिप मिलती है, लाइक्स मिलते हैं, वहां पे उनको वो ऊपर कर देते हैं। तो

0: एक सक्सेसफुल ब्लॉगर के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके ब्लॉग पर कितना ट्रैफिक आ रहा है और उसी हिसाब से गूगल उसको ऊपर कर देता है। दूसरी बात ये आती है कि बहुत अच्छा ट्रैफिक जब आता है तभी इसको मोनेटाइज किया जा सकता है, और मोनेटाइज होने से पहले कम से कम 6 से 12 महीने यानी कि लगभग 1 साल तक आपको कंसिस्टेंटली बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी फाइनेंशियल रिटर्न पे इसमें आपको काम करना पड़ता है। और तीसरी बात जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कंटेंट क्रिएशन जो है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का कंटेंट आज की डेट में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लेवल पे जा चुका है और हर वक्त इसको, क्योंकि लोग 24 घंटे इंटरनेट पर होते हैं तो इसको कंपटीशन के मामले में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और हाई लेवल और टेक्निकल साइड को ध्यान में रखते हुए इसको क्रिएट करना पड़ता है, और इसके साथ साथ स्पीड होस्टिंग और इसके साथ की जो लीगल कंप्लायंसेस हैं, सिक्योरिटी है, वो भी आज की डेट में काफी कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। तो जो लोग कॉपीराइट लॉज, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, इन सब चीजों का ध्यान रखकर काम करते हैं वो इस फील्ड में काफी हद तक ऊपर जाते हैं, वरना पहले प्लेजरिज्म यानी कि कॉपी करने के उसमें आपका जो ब्लॉग है वो अच्छे लेवल पर पब्लिश नहीं हो पाता है और सिस्टम जो है उसको रोक देते हैं ऊपर आने के लिए।
1: अमृतपाल कौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। व्हाट इज ब्लॉगिंग, इसके बारे में आपने बहुत अच्छी बातें बताया। आशा करूंगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों के लिए बहुत ही काम का चीज आपने बताया है, और निश्चित तौर पर इसमें जो टेक्निक और टिप्स आपने बताया कैसे ब्लॉगिंग क्या है उसके बारे में, तो अच्छा लग रहा होगा। आइए यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अमृतपाल कौर जी से बातें हो रही हैं ब्लॉगिंग के बारे में। साथियों, ब्लॉगिंग एक अच्छा विषय है जहां पर आप जो है अपना ईमेल के जरिए अकाउंट बना सकते हैं। गूगल एडसन वगैरह यहां पर जो है बहुत सारे ऐसे फ्री साइट्स होते हैं जहां पर अपने ब्लॉग आप बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से अगर आप करना चाहते हैं तो प्रॉपर वेबसाइट बना के उसमें ब्लॉग आप लिख सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है, आप पूरा एक बार समझ लें इस चीज को और फिर आप अपना आर्टिकल्स लिखना शुरू करें। तो आइए आगे बढ़ते हुए, एजुकेशन कितना इसमें लगता है, यानी एजुकेशन या क्वालिफिकेशन क्या लगता है ब्लॉगिंग करने के लिए, इस विषय पर जानेंगे अमृतपाल कौर जी से। अमृतपाल कौर जी बताइए, एजुकेशन क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है ब्लॉगिंग के लिए?
1: इस फील्ड में, ब्लॉगिंग की दुनिया में अपना पैर जमाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए आपको किस तरह की एजुकेशन और स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है? अच्छी बात यह है कि इस फील्ड में आने के लिए आपको कोई बहुत स्पेसिफिक एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है, ना ही किसी डिग्री की जरूरत होती है, लेकिन जिस भी एरिया में आप अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं उस एरिया में आपकी नॉलेज होनी बहुत अच्छी है। और नॉलेज भी कोई ऊपर ऊपर की नॉलेज या चैट जीपीटी से कॉपी की हुई नॉलेज नहीं, बहुत अच्छे लेवल की नॉलेज होनी जरूरी है। अदरवाइज बहुत जल्दी पता चल जाता है कि ये कॉपी किया हुआ कंटेंट है और उसकी ना रेटिंग होती है ना उसको आप मोनेटाइज कर सकते हो। इसके लिए सबसे बड़ी बात जो है कि जबकि कोई फॉर्मल एजुकेशन जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें सक्सेसफुल होने के लिए सबसे बड़ी बात जो है वो आप में लिखने की कला, ये बहुत जरूरी है। किसी भी भाषा पे आपकी कमांड होनी बहुत जरूरी है ताकि जब आप बात करें तो वो बहुत ही क्लियरली और बहुत ही अच्छे ढंग से बात कर सकें, उस बारे में लिख सकें, बता सकें। जो बेसिक टेक्निकल स्किल्स होती हैं किसी भी वेबसाइट को मैनेज करने की, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और किसी भी प्लेटफॉर्म को जानना, समझना और उसके एल्गोरिदम्स, और उसके साथ साथ कुछ कुछ प्लेटफॉर्म जैसे वर्डप्रेस, इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन लेवल्स पे आप अपनी ब्लॉग्स को अपलोड कर सकते हैं। हालांकि लिंक्डइन भी एक बहुत अच्छा है, मीडियम भी एक बहुत अच्छा एरिया है, विक्स भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन इनको समझना, फिर इनके SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को समझना भी बहुत बहुत जरूरी है ताकि आप अपने ब्लॉग को एक अच्छे लेवल पे एस्टैब्लिश कर सकें। तो इस एरिया को जानने के लिए सबसे बड़ी बात है, जो सक्सेसफुल ब्लॉगर्स होते हैं उन्हें एक तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, फिर डिजिटल मार्केटिंग की, उसके साथ बेसिक ग्राफिक डिजाइन की, उसके साथ सोशल मीडिया मैनेजमेंट की और कंटेंट स्ट्रेटजी की, इन सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में ब्लॉगिंग डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। तो इस एरिया में अपनी अगर आपको पहचान बनानी है, अपने आप को मोनेटाइज करना है, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग के बाकी पहलुओं के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ क्योंकि ये मार्केट और ये फील्ड जो है बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो चुकी है और बहुत जल्दी इवॉल्व हो रही है, बहुत जल्दी आगे बढ़ रही है, तो इसमें ऑनगोइंग लर्निंग यानी कि डेली आपको कुछ न कुछ नया सीखते रहने का जज्बा होना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर फील्ड में बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन होने लग गई है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में जानना, समझना और उसको

0: इस्तेमाल करना डेली अपनी ब्लॉगर्स के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए काफी ब्लॉगर्स इन्वेस्ट करते हैं कोर्सेज में, वर्कशॉप्स में, इंडस्ट्री की कॉन्फ्रेंस में, ताकि उन्हें करंट अफेयर्स के बारे में और क्या चल रहा है इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए, वो अपने काम को कैसे बेहतर कर सकते हैं, इन सब चीजों की नॉलेज के बारे में बहुत बहुत ध्यान रखा जाता है।
1: जी अमृतपाल कौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया कि एजुकेशन जो आपकी जो है एक डिग्री हो अच्छी रहती है, और अगर आपका शौक है लिखना, बचपन से ही कई बार देखते हैं कि कुछ लोग लिखते हैं, तो आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से आपका एजुकेशन पूरा हो और इन चीजों को करने से और ज्यादा आपको जो है सम्मान मिल जाता है। आइए आगे बढ़ते हुए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। हम लोग बात कर रहे हैं ब्लॉगिंग के बारे में, ब्लॉगिंग करियर कैसे कर सकते हैं, इस विषय को लेकर बातें हो रही हैं। अमृत पाल कौर जी आपको विस्तार से बता रहे हैं हर चीज के बारे में, और आप उनकी बातें सुनकर ये स्पष्ट हो गया होगा कि भाई अब ब्लॉगिंग ही मुझे करना है। इतना आसान और इतना अच्छा करियर ऑप्शन है तो मुझे ब्लॉगिंग करना, बिल्कुल ब्लॉगिंग कीजिएगा। अब मन में आपके प्रश्न हो रहा होगा कि हम कैसे इस क्षेत्र से जुड़ सकते हैं और जुड़ने के बाद कितना कमा सकते हैं, ये सवाल जरूर आता है। तो कितना कमाएंगे आप, ये देखने के लिए, समझने के लिए अभी हम फिर से अमृतपाल कौर जी से आपको जोड़ेंगे। जी अमृतपाल कौर जी, बताइए हमारी ब्लॉगिंग करके हम कितना कमा सकते हैं।
1: इस फील्ड में, ब्लॉगिंग की दुनिया में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसका अर्निंग पोटेंशियल क्या है? तो भारत में इस एरिया में अगर आप अपना काम करते हैं तो इसका रेवेन्यू जो है स्टार्टिंग में काफी लो होता है, क्योंकि आपको 6 महीने से साल लग जाता है अपनी जगह बनाने में, क्योंकि आपको अपना एक तो अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है, एल्गोरिदम समझनी पड़ती है, और दूसरी बात यह है कि एडवर्टाइजिंग के थ्रू गूगल एडसेंस, जिससे कि आपकी मेजर पब्लिसिटी होती है, वहां से आपकी फाउंडेशन स्टार्ट होती है। तो जितना स्पॉन्सर्ड कंटेंट होता है वहां से आपकी अर्निंग पोटेंशियल जो है वो स्टार्ट होती है। तो नए ब्लॉगर्स के लिए 5,000 से 15,000 रुपया मंथली एक बार स्टार्ट होता है, तो ये उनकी स्टार्टिंग इनकम हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको एफिलिएट मार्केटिंग का और स्पॉन्सर्ड कंटेंट का आइडिया होना बहुत ही जरूरी है, और सिर्फ आइडिया ही नहीं, उस पर अच्छी पकड़ होनी भी जरूरत होती है। एक बार आपका कंटेंट अगर सेटल हो जाता है और पब्लिक उसको पसंद करने लगती है, तो उसके बाद 50,000 से 2 लाख रुपया महीना, या जो टॉप ब्लॉगर्स हैं वो तो 5-5, 10 लाख रुपया महीना भी अर्निंग पोटेंशियल रखते हैं। इसमें अर्निंग के ऊपर एक चीज और बहुत ध्यान रखने लायक है कि आप अपना टॉपिक या एरिया कौन सा चुनते हैं, यानी कि जैसे फाइनेंशियल एरिया है या टेक्नोलॉजी है या हेल्थ है या एजुकेशनल ब्लॉग्स होते हैं, इनमें काफी अच्छी एडवर्टाइजिंग आती है और उनपे रेट्स भी काफी अच्छे होते हैं और स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो जब आप अपना एरिया चूज करते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट में अपने आप ब्लॉगिंग करनी है, तो वो आपको ध्यान से चूज करना है। उसमें आपको नॉलेज होनी प्लस उसमें आपकी पकड़ होनी, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी पकड़ नहीं है तो आपको वहां पे अपने आप को एस्टैब्लिश करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो कमर्शियल एंगल को ध्यान में रखते हुए आप अपने नीश को ध्यान से चूज कीजिए। दूसरी बात यह है कि जो रीजनल कंसिडरेशंस हैं, यानी कि जो इंडियन ब्लॉगिंग में रीजनल एरियाज है, रीजनल लैंग्वेजेस में जो काम होता है, वो भी एक बहुत अच्छा एरिया है जहां पे अगर आपकी पकड़ है तो आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि आपका अर्निंग पोटेंशियल अब्रॉड इंटरनेशनल मार्केट में क्या है। तो अर्निंग पोटेंशियल जो यूएस, यूके मार्केट्स, ऑस्ट्रेलिया है, यहां पे काफी हाई होता है क्योंकि डॉलर कन्वर्जन रेट का फर्क पड़ जाता है, लेकिन वहां पे कंपटीशन भी ज्यादा होता है और उन इंटरनेशनल मार्केट्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो वहां पर भी आप $500 महीने से $1,000 महीने की स्टार्टिंग हो सकती है और उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ता जा सकता है। तो जो इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं, इंडियन ब्लॉगर्स को वहां पे क्रिएट करने के लिए, जो ग्लोबल ऑडियंस है उस वहां तक पहुंचने के लिए, आपको बहुत अच्छी इंग्लिश राइटिंग और स्पीकिंग होनी बहुत जरूरी है, और उनके कल्चर के साथ आपको अपने आप को मैच करना और उनकी जो इंटरनेशनल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में जानना समझना भी आपको बहुत बहुत लाभदायी होता है, और वहां की जो एल्गोरिदम्स होती हैं उनको भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो इन

0: सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि आप अपना सब्जेक्ट, अपना एरिया, अपनी लैंग्वेज, इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए अगर आप अपना नीश बनाते हैं या अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टीज बनाते हैं तो आपको इसमें काफी अच्छा लाभ हो सकता है।
1: अमृतपाल कौर जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताया। देखिए, कमाने का कोई एक लिमिटेशन नहीं है इसमें, जितना चाहे उतना आप कमा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग साइट्स में अगर आप अपना आर्टिकल, आपका आर्टिकल किसी को पसंद आ जाता है, तो मेरा एक एक्सपीरियंस है कि भाई आर्टिकल आपका पसंद आ जाता है तो एक इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है। बहुत सारे कंपनी ऑफर करते हैं कि उनके साइट्स पे उनके कंपनी के लिए कुछ लोग लिखें, उनके प्रोडक्ट के लिए लिखें। तो जब आप किसी कमर्शियल या कोऑपरेटिव कंपनीज के लिए लिखना शुरू कर दें तो आपका अर्निंग भी उतना अच्छा होने लगता है। और एक हमारी मित्र रही हैं जिनका नाम भावना है, वो पहले हिंदी जो है लिखा करती थी, आर्टिकल लिखना उनका शौक था और मीडिया में काम करती, लेकिन अचानक उनको गूगल से एक बार, शायद उन्होंने रिज्यूमे भेज दिया होगा या कुछ ऐसे मैसेज आते हैं तो उसमें अपना रिज्यूमे भेज दिया था और उनके जो फेसबुक प्रोफाइल है वो सारी चीजें भेज दी थी, तो उनको उनका लिखना पसंद आ गया और उन्हें जो है बुलाया गया एक इंटरव्यू में, और फिर ट्रांसलेशन का काम वो पहले करती रही और धीरे धीरे सीखते गए तो अब वो प्रोजेक्ट मैनेजर बन गई है। उनके अंडर में 300 लोग काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लिखना कितना इम्पोर्टेंट है और अच्छा लिखते हैं तो कितना आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आपके मोटिवेशन के लिए।
2: चल के तुझे मैं देख चलूं, एक है से

0: नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आज के हमारे एक्सपर्ट अमृतपाल कौर जी, करियर काउंसलिंग के एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और उनसे हम लोग बातें कर रहे हैं ब्लॉगिंग के बारे में। तो अब ब्लॉगिंग के बारे में हमने समझा, कितना कमा सकते हैं, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और कितना पढ़ाई इसमें लगती है, वो सारी चीजें हमने समझ ली। लेकिन फिर भी कई बार प्रैक्टिकली इन्हें करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी अमृतपाल कौर जी बताइए।
1: तो आगे हम बात करेंगे कि इस फील्ड में जो नए ट्रेंड्स आ गए हैं, जैसा कि पहले भी बात करी है कि ये एरिया बहुत बड़ा हो गया है। ऑडियो पॉडकास्ट, वीडियो पॉडकास्ट और इंटरैक्टिव एलिमेंट्स, बहुत सारी चीजें इसमें आ चुकी हैं। तो इसमें सबसे बढ़िया बात होती है जब आपकी एक कम्युनिटी बन जाती है, वो कम्युनिटी सिर्फ कंटेंट के लिए आपके पास आती है, जिनको आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। इसमें सब्सक्रिप्शन मॉडल, मेंबरशिप मॉडल और एक्सक्लूसिव कम्युनिटी, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें आपकी एक स्टेबल इनकम बन सकती है और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और एल्गोरिदम के ऊपर आप डिपेंड नहीं होते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन आ चुकी है, तो ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिसाब किताब भी आपको सीखना पड़ेगा ताकि आप अच्छी क्वालिटी का कंटेंट क्रिएट करें और एल्गोरिदम्स और ऑटोमेशन को पार पा सकें। अगर आप स्पेशलाइज सर्विसेज देते हैं तो वो कंसल्टिंग, कोचिंग, एजेंसी सर्विसेज, इन चीजों में भी आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी इनकम के सोर्सेज को बढ़ा सकते हैं। जो ब्लॉग्स होते हैं वो आपका पोर्टफोलियो और लीड जनरेशन टूल बन जाता है, जिसे हाई ट्रैफिक और हाई टिकट क्लाइंट तो आपके पास आते ही आते हैं, साथ में आपको एक स्टेबल इनकम भी देते हैं। इसके साथ साथ जो ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो इंडियन ब्लॉगर्स को कल्चरल बेनिफिट भी देती हैं। काफी सारे टॉपिक्स जैसे इंडियन क्यूजीन्स यानी कि कुकिंग एरियाज, ट्रेवल, बिजनेस प्रैक्टिसेस, इन सब चीजों में अगर आप अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं तो आपको ग्लोबल मार्केट्स में बहुत अच्छी पकड़ बनाने को मिलती है। लेकिन कुछ एक बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सिर्फ अर्निंग पोटेंशियल को देखकर अक्सर लोग या लोगों की कामयाबी देखकर अक्सर लोग इस फील्ड में आ जाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो इतने सालों से काम कर रहे हैं उनके साथ कम्पीट करना पहले दिन से आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अपना बैलेंस बना के रखना, अपने पैशन और कमर्शियल एंगल को, इन दोनों का बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ वर्डप्रेस और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पकड़ को बनाना भी बहुत जरूरी होता है। और सबसे बड़ी बात है कि कंसिस्टेंसी, कि डेली आपको कंटेंट बनाना है और फिर आप उम्मीद रखें कि एक रियलिस्टिक टाइमलाइन यानी कि 12 महीने या 2 साल, इतना मिनिमम आप एफर्ट डालते हैं तो उसके बाद आपको कुछ समझ में आने लगता है कि हाँ कुछ पॉसिबिलिटी है, आप कुछ इसमें कमा सकते हैं। इसमें एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि सिर्फ ट्रैफिक, आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं या आपकी फटाफट रेवेन्यू जनरेट होनी शुरू हो जाए, इससे बेटर है कि आप अपने आप को अच्छा कंटेंट बनाने के लिए कोशिश करें, ताकि आपको जब मोनेटाइजेशन हो तो अच्छे लेवल पे मोनेटाइजेशन आप कर सको। तो ब्लॉगिंग एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है या एक बहुत ही अच्छा करियर है।

0: अगर आपके पास उस एरिया की पकड़ है तो ब्लॉगिंग के लिए हालांकि एजुकेशन की जैसे हमने पहले भी बात करी जरूरत नहीं होती है, लेकिन उस एरिया में या उस सब्जेक्ट पे अगर आपकी कमांड है तो आपको इस फील्ड में आना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको जो डिजिटल मार्केटिंग के दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उनको भी समझना, उसको पकड़ना और ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ध्यान में रखते हुए अपने एरिया को की पकड़ बनाना और उसमें अपनी पहचान बनाने की कोशिश करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है।
1: अमृतपाल कौर जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया। आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और बड़ी खुशी होती है जब भी हम लोग किसी विषय के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं तो हमें ज्यादा खुशी मिलती है। और मैं चाहूंगा जो विद्यार्थी मित्र ब्लॉगिंग के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, जो समझते हैं कि मेरे अंदर वो कला है, मैं लिख सकता हूँ, अच्छा लिख सकता हूँ, तो जरूर प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट और परफेक्शन लाइए और इस फील्ड में अच्छा करना शुरू कर दीजिए। बाकी सोशल मीडिया पे आप अपने छोटे छोटे पोस्ट लिखकर अपने दोस्तों से उनके लाइक्स और उनके कमेंट्स के माध्यम से आप अपना आकलन कर सकते हैं, या फिर आप कोई आर्टिकल लिख के अपने दोस्तों को ये भी बताइए कि कमेंट प्रॉपरली लिखे आप, सही है या गलत है वो भी बताइए। तो इससे क्या होगा, आपकी लेखनी की जो ताकत है वो आपको पता चलेगी, तो फिर आप आगे और भी बढ़ सकते हैं। तो आशा करूंगा कि आप सभी को आज के इस प्रोग्राम में हमने जो बातें सुनी अमृतपाल कौर जी से, जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, हमेशा लिखते रहें तो इससे आपकी ब्लॉगिंग अच्छा हो जाएगी, आपके आर्टिकल को लोग पढ़ना शुरू कर देंगे और जब लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो आप पॉपुलर होंगे और पॉपुलर होंगे तो पैसे आपके लिए आसान हो जाएगा कमाने के लिए। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बात लेकर। और मैं चाहूंगा कि आप अपने करियर को अच्छा बनाएं, ऐसी शुभ आशा के साथ ढेर सारी खुशियां आप सभी को और फिर से एक बार अमृतपाल कौर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होकर बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
3: बात पुरानी बड़ी सुहानी, मनात खोलवर रुजलेल्या चित्रपट, साहित्य, संगीत, गाणी यांच्या आठवणींचा नॉस्टैल्जिक खजिना।
4: बात पुरानी बड़ी सुहानी,
3: फक्त रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। संकल्पना आणि सादर करते श्री धनंजय कुलकर्णी।

ख्वाब और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूं, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप ऐकताहेत रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप ऐकत आहेत रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशिया बाटो।
1: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने मन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुणेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी पर

0: स्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां।

चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की, और अगर पिछली कड़ी को देखें तो हमने समझा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। जी हाँ, हमारे पास बहुत सी जिम्मेवारियां हैं, लेकिन सेल्फ के रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जब बात की तो सामने आई बात कि हमारी अपनी जिम्मेवारी भी हमारे ऊपर ही आती है। हमें अपनी जिम्मेवारी लेना आना चाहिए। और उसमें एक बात जो सामने आई थी वो कि जो कुछ भी फीलिंग या थॉट्स क्रिएट होते हैं वो मैं खुद क्रिएट कर रहा हूं, ना कोई और मेरे अंदर आके क्रिएट कर सकता है, ना मुझे वो फील करवा सकता है। तो जहां मैं दुख के बारे में अगर सोचती हूं कि जितनी भी परेशानी मेरी जिंदगी में आ रही है वो भी मैंने क्रिएट की है, तो दूसरी तरफ एक अच्छी बात यह है कि जहां पे भी खुशी की बात है, जहां पे भी प्यार की बात है, वो भी मैंने अपने आप ही क्रिएट की है। सो अगेन यू नो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एक एम्पावरिंग फैक्टर आ जाता है कि मैं खुद क्रिएट कर सकती हूँ। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में थोड़ा और जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा मुझे, कैसे मैं हो सकती हूँ अपने प्रति रिस्पॉन्सिबल। बातचीत करने के लिए हमारा सौभाग्य हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, जहां तक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आई, अभी तक सारी जिम्मेवारियां उठा रही थी, अब मतलब एक और जिम्मेवारी उठा रही थी वो ये कि मुझे मेरी जिम्मेवारी भी उठानी है। नहीं तो अभी तक तो मैं सोच रही थी कि चलो मेरी माँ उठाएगी, मेरे बच्चे उठाएंगे, मेरे हस्बैंड उठाएंगे, कोई ना कोई तो होगा, या फिर अल्टीमेटली
1: जो वो जिम्मेवारियां जो आप बोल रहे हो, दोज आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक वी से फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कोई और उठाएगा, वो फिर हम आउटर ही बात कर रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बीइंग, जो मैं हूँ, जो कुछ मेरा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जैसे हम कहेंगे एक बच्चा है, आपने कहा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स उठाएंगे, दैट इज बच्चे की पढ़ाई, बच्चे का भोजन, बच्चे का रहना, तो आउटर, तो उसका जो कुछ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और उठा सकता है।
0: पत्नी तो कितनी बार कहती है कि मेरी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हैप्पीनेस, स्पेशली वी ऑलवेज से दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ग्रीफ।
1: यस, फॉर बोथ ऑफ द थिंग्स। तो इसलिए हमने देखा कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आई एम द क्रिएटर ऑफ ऑल माई थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स। तो जब भी हम रिएक्ट करें हमें ये याद रखना पड़ेगा कि रिएक्शन मतलब हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई और मुझे कंट्रोल कर रहा है और वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सो आई एम सेइंग यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, लेट्स से मुझे बहुत गर्मी लग रही है, ये मौसम ऐसा क्यों है, मौसम रिस्पॉन्सिबल है मेरी तकलीफ के लिए, मौसम जैसा है वैसा है, मेरी तकलीफ का जिम्मेवार मैं हूं और मैं जितना इजिली चाहूं उसको मैं हल्का कर सकता हूं। सो जब भी रिएक्ट करें तुरंत स्टॉप करें, अपना वो 1 मिनट ब्रेक वहीं पर ले लें और अपने आप को याद दिलाएं कि ये जो मैंने रिस्पॉन्स अभी अभी क्रिएट किया, आई एम रिस्पॉन्सिबल, सो लेट मी बी केयरफुल विद व्हाट आई एम चूजिंग एज माय रिस्पॉन्स। अब दूसरी चीज हमें ये याद रखना पड़ेगा कि इवन वो जो बिलीफ, वो जो परसेप्शंस जो मेरे अंदर पहले से ही डीप रूटेड है, उसके लिए भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, क्योंकि which means that I cannot even blame the past.
0: ये सब कॉन्शियस, ओहो आजकल तो इतना ज्यादा बार बात ही करती है कि हाउ आई माई सबकॉन्शियस रिएक्ट, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, मुझे पता ही नहीं चलता हाउ आई रिएक्ट,
1: क्योंकि हमारा जो एक्शन और रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा उस पर बेस्ड होता है कि जो मैंने पहले अपने अंदर भरा हुआ है, कल की इन्फॉर्मेशन जो भरी है, 10 साल पहले जो हुआ था, बचपन में जो हुआ था, हमारी आज जो पर्सनालिटी है दैट इज अ रिजल्ट ऑफ जो यू नो इन माय चाइल्डहुड क्या मेरे अंदर फीड हुआ, कौन से मेरे बिलीव्स, मेरे परसेप्शंस बचपन से जो बने हैं वो सबकॉन्शियस लेवल पर आज मेरी पर्सनालिटी पर वर्क करते हैं। तो फिर हम तुरंत कहते हैं कि इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं, यू नो फॉर एग्जाम्पल आपका चाइल्डहुड किस वातावरण में था, आपके पेरेंट्स ने कैसे आपको ब्रिंग अप किया, तो वो सब चीजें आपके बिलीव्स और परसेप्शंस को बनाता है, लेकिन इसका मतलब भी हम किसी को ब्लेम कर रहे हैं और

0: कुछ नहीं तो अपने ही पास्ट को ब्लेम कर रहे हैं. लेकिन सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ही ये है कि टू बी अवेयर कि ये सारी चीजें मेरे अंदर पास्ट में अक्यूमुलेट हुई हुई हैं, लेकिन अब मुझे क्या करना है. वो जो आपने कहा ना सबकॉन्शियस, मतलब जो अनकॉन्शियस लेवल पर भरा हुआ है उसको मुझे अनकॉन्शियस लेवल से कॉन्शियस लेवल पर लेकर आना पड़ेगा. उसको चेक करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा बिलीफ है, और फिर उसको चैलेंज करके उसको चेंज भी करना पड़ेगा. दिस इज ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्योंकि अगर मेरी जो आज व्यवहार है इट इज बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट, तो भी तो बाय ब्लेमिंग द पास्ट देन आई एम कंटिन्यूइंग टू लिव इन द पेन. कि आज मैं दर्द में इसलिए जी रही हूँ क्योंकि बचपन से मेरे साथ ऐसा हुआ. आई मेट अ लेडी हु वॉज फिजिकली अब्यूज्ड इन हर चाइल्डहुड एंड लगभग आई थिंक 25 या 30 साल उसने वो बात को पकड़ कर रखा हुआ था. एंड whatever she is today, she feels it's because of her past. And वो कहीं ना कहीं उसमें से निकलने का तो प्रयास ही नहीं किया क्योंकि सोचा कि इसमें मेरी तो कोई गलती ही नहीं है. तो जो bitterness है अंदर, जो दर्द है, हर एक को किस पर blame कर दिया कि मेरे साथ past में ऐसा हुआ. तो मेरे अंदर ये bitterness है कि ये जो दुनिया है ये अच्छी नहीं, रिश्ते जो है ये अच्छे नहीं. So now my present and my future वो भी तो दर्द में ही चल रहा है. लेकिन अगर पास्ट में ऐसा कुछ हुआ भी है जिसने मेरा कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम बनाया है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स नाउ टू चेंज. एंड रियली व्हाइल वॉचिंग दिस प्रोग्राम रेगुलरली, बिकॉज वो अपने ऊपर बहुत अच्छा मेहनत कर रही है इस प्रोग्राम को देखकर, और जिस दिन उसको ये समझ में आया कि मेरा जो दर्द है वो मैं क्रिएट करता हूँ, नो वन एल्स कैन हर्ट मी, शी जस्ट लेट इट गो लाइक दैट. Just like that. And after the program, she got up and she said, after 25 years, today I'm free. अब जो वो पास्ट में इंसिडेंट हुआ था वो तो 25 साल पहले की बात है, लेकिन आज एक मिनट में आपने अपने आप को उस दर्द से मुक्त कर दिया जब आपने रियलाइज किया कि ये क्रिएट कौन कर रहा है.
1: मैंने किया क्रिएट. लेकिन हम छोड़ते क्यों नहीं ऐसा सिचुएशन? अगर ये इतना आसान है तो हम उसको पकड़े, और हम में से हर कोई पकड़े रहता है पास्ट का, नहीं तो आने वाले का डर, या पास्ट का कोई ना कोई चीज को, और अगर हम टटोले तो हमने अभी भी पकड़ी हुई होंगी वो. हम क्यों नहीं छोड़ते?
0: कहीं ना कहीं हमें ये भी तो नहीं पता कि हमने पकड़ा हुआ है.
1: हाँ.
0: हमने सोच रहे हैं कि ये जो मैं दर्द, दैट इज वाई हम वो बात, मतलब भले वो बहुत रेपिटेटिव हो रही है कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट एंड फीलिंग, ये आप दिन में जितनी बार भी अपने आप को बोलोगे वो कम है. क्योंकि बार बार बोलने के बावजूद भी हम रिएक्ट करते हैं. तो अगर आपने मेरे साथ कुछ भी किया है लेकिन आज जो मैं दर्द क्रिएट कर रही हूँ वो तो फिर भी मेरी क्रिएशन है. अभी क्या हो रहा है जो आपने कहा हम क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? क्योंकि हम सोच रहे हैं मैं नहीं क्रिएट कर रही. आपने किया ही ऐसा
1: कि मेरे को दर्द हो ही रहा है, मैं छोड़ ही नहीं सकती.
0: जस्ट दैट इट हैज टू हिट कि ये दर्द कौन क्रिएट कर रहा है? मैं क्रिएट कर रही हूँ, नाउ लेट गो.
1: और मैं क्रिएट कैसे कर रही हूँ? उस थॉट को बार बार याद करके, उस इंसिडेंस को याद करके.
0: एब्सोल्युटली.
1: एक्चुअली इफ यू लुक एट इट, अगर हम देखें अपने साथ तो बार बार उस एक्सपीरियंस से हम गुजरते हैं, फिर वो सब कुछ जो हुआ उस टाइम पे वो सब.
0: तो हम बार बार उस दर्द से गुजरते हैं एंड कहीं ना कहीं फिर हमारे वो यू नो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में फिर वो दर्द का पैटर्न, और वो एक होता है ना जैसे कहते हैं ना कि एक जैसे लाइन आपने बनाई
1: वो ब्रेन
0: उसके ऊपर बनाते गए, तो फिर वो कितना डीप हो जाता है वो. तो फिर वो लगता है कि अब ये हील नहीं हो सकता क्योंकि हमने उसी थॉट को फिर क्रिएट किया. अब वो जो एक मिनट हमें स्टॉप करके पॉजिटिव करना है तो हमें पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना, और उसको तो आप कितनी बार भी क्रिएट करते रहो, इट इज हेल्दी फॉर यू. लेकिन वो बार बार पास्ट का इंसिडेंट जो हम पकड़ते हैं, तो इसलिए पास्ट को भी कि नहीं मेरा बचपन ही ऐसा था, या मुझे तो कई बार कहते हैं मुझे तो बचपन से यही सिखाया गया है ना. See, so whatever I am today, it is because मुझे बचपन में यही सिखाया गया है. Self responsibility, कि जो भी वो beliefs हैं जो बचपन से बने हैं आज उनको check करें. अगर उनमें से कोई ऐसा belief है जो दर्द के लिए जिम्मेवार है, stop, check, change. Even as simple as tension तो normal ही है ना. Now we have understood कि वो normal नहीं है. भले मुझे बचपन से सिखाया गया था कि exam से पहले tension तो होती ही है, result से, तो ये मैंने सोचा normal है, but actually no.

0: themselves
1: is there
0: responsibility.
1: A lot of things which people say that no pain, no gain.
0: Yeah, many people say this, no pain, no gain, because they feel ki jab tak wo dard ka anubhav nahi karenge, tab tak unko khushi ka mahatva nahi pata chalega. But it's a choice. I always ask those people, ki kya aapko swasthya ka mahatva tab pata chalta jab aap bimar padte hain. So do you want to say ki main healthy bhi rahu, lekin main bimar bhi padti rahu beech beech mein, tabhi mujhe pata chale. Does anybody ever say that? To fir to aap apne sharir ka mat dhyan rakho utna, taki beech beech mein bimar padte raho. Do you ever work in life with this focus ki nahi kabhi kabhi to bimar padna chahiye? Whoever works like that, we always say ki nahi, hamesha healthy rehna chahiye. To agar sharir hamesha healthy rehna chahiye, ये भी तो हमेशा हेल्दी रहना चाहिए. हाउ कैन वी से के जब तक दर्द नहीं होगा
1: पता ही नहीं चलेगा. अच्छा, अनदर थिंग विच सम पीपल से, बहुत बार लोग बोलते हैं कि मुझे दर्द में रहना अच्छा लगता है, बट आई डोंट माइंड पेन.
0: या दैट्स बिकॉज आई डोंट सी एनी अदर वे टू कम आउट ऑफ इट. वही बात होती है ना, जब कोई चीज से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है तो हमने अपने आप को उसी के अंदर फिट कर लिया है और हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये मेरे जीवन का हिस्सा है और उस दर्द के साथ जीना ही सीख लिया है. एंड इट्स नॉट सम, आई थिंक लॉट ऑफ अस, हम में से मेजोरिटी ने दर्द के साथ जीना ही सीख लिया है. और कहीं ना कहीं आई फील विद अ प्रोग्राम लाइक दिस, दिस कम्स एंड हिट्स कि रियली इज देयर अ वे कि हम दर्द से भी बाहर निकल सकते हैं. हमने तो सोचा था ये बीमारी हमारे साथ
1: एंड तो
0: चलने वाली है. यू नो, हमने उस बीमारी को स्वीकार कर लिया था. अब क्या होता है, जैसे हम ऐसी कोई ज्ञान की बातें सुनते हैं तो हमें लगता है ओ यस, बट देन द अदर थिंग दैट हिट्स इज कि वो सारा काम मुझे करना पड़ेगा.
1: वो चेंज मुझे होना पड़ेगा. आई मेट समबडी एंड शी सेड मुझे पता है मैं बहुत दर्द में हूँ, लेकिन मैं इस थॉट को भेज जाने नहीं दे सकती. So what we can do is maybe create a positive thought.
0: That's all that we have
1: Let
0: to do.
1: Let that thought also stay. जो thought आपके पास है जिससे आपको बहुत मोहब्बत हो गई है उसको भी रहने दे, लेकिन एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट
0: करें. इसलिए नेगेटिव को खत्म नहीं कर पा रहे, इट्स ओके, आप पॉजिटिव क्रिएट करो. इट्स लाइक यू नो, वो कहते हैं कि एक बर्तन गंदे पानी से भरा हुआ है, आप उस बर्तन को खाली नहीं कर पा रहे, आप ऊपर से अच्छा पानी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, फाइनली
1: गंदा पानी
0: निकल जाएगा. सो यस, वी और परमात्मा आकर यही तो करते हैं. परमात्मा शिव बाबा ज्ञान की बूंद बूंद बूंद डालते जाते हैं, थोड़े समय के बाद वो बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ हो जाता है. अगर हम पहले वेट करें कि बुद्धि से सारे जो वाइसेस हैं, सारी जो नेगेटिविटी है वो पहले खाली हो और फिर ज्ञान उसके अंदर भरे, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. ज्ञान जितना भरता जाता उतना ये जो नकारात्मक और व्यर्थ बातें हैं वो अपने आप खाली होती जाती. तो जैसे वी कैन नॉट ब्लेम एनीवन एल्स, वी कैन नॉट ब्लेम पास्ट ऑल्सो, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ही लेनी है. और तीसरा जो आपने पहले ही कहा कि नो पर्सन इवेंट और सिचुएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हैप्पीनेस, अपनी खुशी की जिम्मेवारी. नहीं तो कोई ना कोई कंडीशन हमेशा बनी हुई है जिस ये होगा तो मैं खुश रहूंगा. इवन इन यू नो, व्हेन पीपल सी देयर पर्पस ऑफ लाइफ तो वो कहेंगे मुझे ये गोल अचीव करना है, ये मेरा एम्बिशन है, मुझे ये बनना है, जब ये हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा. व्हाट डज दैट मीन? मतलब आप इतना टाइम दर्द में रहेंगे और फिर एक साल के बाद या पांच साल के बाद जब आप उस एम्बिशन को अचीव कर लेंगे तब आप खुश होंगे? इट विल नॉट बी पॉसिबल. अगर आपने पूरा प्रोसेस ही दर्द में बिताया एंड फिर आप खुश होंगे? सो परमात्मा कहता है खुश होंगे नहीं, खुश रहकर
1: आप
0: उस गोल को अचीव
1: करेंगे.
0: दर्द में जाके सीढ़ी नहीं चढ़नी है, सीढ़ी के एंड पर पहुंच तो जाएंगे आप अपने लैडर में जो आपने अपने लिए सेट किया, लेकिन इमेजिन अगर आपको एक एक स्टेप दर्द में चढ़ना पड़े तो हाउ विल बी द क्लाइंब?
1: ओहो, इट इज गोइंग टू बी सो डिफिकल्ट. इन फैक्ट इज जस्ट वन चेंज ऑफ थॉट. एक परसेप्शन है तो चेंज करना है.
0: That I have to be happy and do this. अब अगर ये जो हमारा ladder है of goals and ambitions, अगर हम एक एक step दर्द में चढ़े तो शायद जब हम ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच भी जाएंगे, how will the feeling be?
1: We'll be too tired to enjoy that.
0: So we will not really enjoy. और फिर वहां पहुंचने के बाद तब तक हम अपना next goal set कर देंगे और फिर दर्द में चलेंगे. और इसीलिए हमने इस सीरीज की, इस प्रोग्राम की शुरुआत ही इस बात से की थी कि हैप्पीनेस इज नॉट द डेस्टिनेशन, हैप्पीनेस इज द जर्नी. तो खुशी को व्यक्तियों पर भी नहीं डिपेंडेंट करना है, इवेंट्स पर, सिचुएशंस पर. हम लोग आज अगर सारा दिन में चेक करें ना, हमने बहुत चीजों पर डिपेंड किया हुआ है.

0: मेरे बच्चों के मार्क्स अच्छे आएंगे तो खुशी होगी, प्रमोशन होगा तो खुशी होगी, या छोटी इवन छोटी छोटी बात, अगर बहन ने सारा दिन में खाना बनाया, बहुत अच्छी तरह से मेहनत की, रात को मेरे हस्बैंड आएंगे वो आकर अप्रिशिएट करेंगे कि खाना बहुत अच्छा बना है, तो मुझे बहुत खुशी होगी. तो द होल डे व्हाइल कुकिंग द फूड शी क्रिएट्स दैट सीन, यू नो दैट माय हस्बैंड विल कम इन द नाइट, ही विल अप्रिशिएट द फूड एंड शी इज वेटिंग कि जब ये सीन होगा शी विल बी वेरी हैप्पी. अब वो आए, वो अपने किसी मूड में है या अपने किसी टेंशन में है, चुपचाप खाना खा लिया, कुछ बोला ही नहीं, खुशी कहां गई?
1: और वो वेट ही चलती रहेगी फिर.
0: और अब वो दर्द हो गया. तो आपने सारा कुछ तो किया.
1: अच्छा, सबसे बड़ी बात है आप उनको ये तो कह नहीं पाते कि आपने अप्रिशिएट नहीं किया, मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि खुद को ही नहीं पता चली ये बात.
0: वो भी कह देते हैं, हम तो कई बार आपने बोला भी नहीं, मैंने सारा दिन इतनी मेहनत की, आपने ये भी नहीं बोला कि खाना अच्छा है. तो आप देखो मेरी खुशी कितनी छोटी छोटी चीजों पर डिपेंडेंट है कि जब तक आप नहीं ये बोलोगे कि ये खाना अच्छा बना, आई एम नॉट गोइंग टू बी हैप्पी. आपने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी, लेकिन जब तक चार लोगों ने ये नहीं बोला कि आपकी ड्रेस बहुत सुंदर है, तब तक वो खुशी का अनुभव नहीं हो रहा. सो आई कीप वेटिंग कि कौन अप्रिशिएट करेगा, कितने डिपेंडेंट. और फिर अगर चार लोगों ने बोल दिया बहुत सुंदर है, लेकिन किसी एक ने बोल दिया
1: कि नहीं स्वेट खराब है, ओफो,
0: यस, हाउ मच माय स्टेट ऑफ माइंड इज एवरी टाइम डिपेंडेंट.
1: और कितने क्षण भंगुर है, मतलब कितनी देर के लिए है, इट्स जस्ट देयर एंड देन गॉन, टच एंड गो.
0: सो दिस इज नॉट सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज अगेन डिपेंडेंसी, कि हमेशा किसी न किसी पर डिपेंडेंट है. और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात हमें याद रखनी है वो ये कि जैसे हमारी मन की स्थिति का कोई भी जिम्मेवार नहीं है, और उनकी मन की स्थिति के हम जिम्मेवार नहीं है. दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट.
1: एंड वी गेट इनटू सो मच ऑफ गिल्ट,
0: यस,
1: कि मेरी वजह से उसको ऐसा हो रहा है, कि मैं ये कर देता हूँ, या मैं कुछ ऐसे भी. उफ, यस, सो मेनी टाइम्स, इवन चिल्ड्रन, कितनी बार देखा गया है ग्रोन अप चिल्ड्रन सिर्फ ये कि मेरी माँ को अच्छा लगेगा कि मैं ऐसे एक्ट करूँ, वो एक्ट करते हैं. स्पेशली लड़के और मदर के जो रिलेशनशिप में देखा है, मतलब जो कितनी बार की उन्हें लगता है कि हमारी माँ ने हमारे इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, तो मैं उसको खुश करने के लिए थोड़ा सा ये.
0: सो मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज के अगर कोई हमारे सामने दर्द में है, परिवार का, फैमिली, कोई मेंबर या ऑफिस में, तो कहीं ना कहीं वो यू नो इमोशनल ब्लैकमेल जो वर्ड हम यूज करते हैं, कि वो अपने इमोशंस के साथ हमें थोड़ा सा वो करने की कोशिश करते हैं, आपकी वजह से मैं ये दर्द में हूँ, आपकी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है. और जब मुझे कोई बार बार ये कहता है कि आपकी वजह से मैं दर्द में हूँ, आपकी वजह से मैं दर्द में हूँ, मैं दर्द में चले जाती हूँ.
1: अरे so मैं सोचने लग जाती हूँ, मैं मान लेती हूँ, इवन इफ आई नो कि मैंने कुछ नहीं किया हुआ, आई जस्ट स्टार्ट थिंकिंग कि शायद आई एम रिस्पॉन्सिबल, यू नो.
0: सो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी वन एल्स इज पेन और फॉर एनी वन एल्स इज हैप्पीनेस. Like no one else is responsible for my pain and my happiness, I am not responsible for anyone else's pain or anyone else's happiness. हाँ, भले हम अपने संबंधों में जितनी हमारी कैपेसिटी हम सब कुछ करें, लेकिन इस बात से दर्द में चले जाएं कि दूसरा मेरी वजह से दर्द में है, क्योंकि सिर्फ वो ऐसा कह रहे हैं. वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो खुद नहीं जानते,
1: उनको नहीं पता है, बिल्कुल
0: वो खुद नहीं जानते. लेकिन उनको हेल्प करने की बजाय हम ही विक्टिमाइज हो जाते हैं कि वो दर्द में इसलिए है क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया. अगेन वी विल हैव टू रिमेम्बर, मैंने जो किया वो तो किया, लेकिन उनका दर्द किसने क्रिएट किया? वो उन्होंने किया. दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट. इससे हमारी जो कहे ना स्टेट ऑफ माइंड बहुत हल्की हो जाती है. दिस डज नॉट मीन कि हम इनसेंसिटिव हो जाएं. अगेन देर इज ऑलवेज अ थिन लाइन. लेकिन हम दर्द में ना चले जाएं ये सोचकर कि औरों का दर्द हम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम दर्द में चले गए ये सोचकर, फिर हम उनको क्या ट्रांसमिट करेंगे?
1: जहां हम खुद दर्द में चले जाते हैं और वो दर्द में है, तो हम उनकी हेल्प ही नहीं कर पाते बिल्कुल.
0: एब्सोल्युटली,
1: क्योंकि हम तो गिल्ट में चले गए.
0: तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और किस चीज के लिए नहीं है. अब आप देखो वी एक्चुअली वर्क द अदर वे अराउंड सारा दिन. हमें लगता है हम अपनी मन की स्थिति के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन औरों की मन की स्थिति के लिए हम रिस्पॉन्सिबल.
1: मैंने उसको दुख दे दिया, मैंने उसको खुशी दी, मैंने उसको हर्ट किया, मेरी वजह से ऐसा हुआ.
0: तो द होल फ्लो ऑफ एनर्जी गोज द अदर वे अराउंड. हम समझते मेरी मन की स्थिति के जिम्मेवार और लोग हैं, और औरों की मन की स्थिति का जिम्मेवार मैं हूँ, वेयर इज द इक्वेशन

0: It's totally the other way around. अपनी मन की स्थिति का जिम्मेवार मैं, आई हैव टू रिमेम्बर दैट एंड आई हैव टू रिमेम्बर कि औरों की मन की स्थिति के जिम्मेवार वो है. तो अगर वो किसी टर्मोइल से गुजर रहे हैं, उनको उस पर वर्क करना पड़ेगा. दैट इज गोइंग टू बी देयर जर्नी. मैं उसमें क्या हेल्प कर सकती हूँ उनके लिए, दैट इज ओके. बट फाइनली मैं किसी को दर्द से मुक्त नहीं कर सकती. दे विल हैव टू डू दैट. फॉरगेट एनीवन एल्स. माय पर्सनल एक्सपीरियंस वुड से कि इवन गॉड कैन नॉट फ्री मी फ्रॉम माय पेन जस्ट बाय मैजिक. आई कैन यूज हिज पावर, यूज हिज नॉलेज टू फ्री माय सेल्फ फ्रॉम माय पेन. बट इफ ही वॉन्ट्स कि ही शुड फ्री मी फ्रॉम माय पेन, नो ही कांट. नो वन एल्स कैन डू इट फॉर मी.
1: ओ, अगर मैं पकड़ के बैठी हुई होंगी उस थॉट को, शिवानी, अगर मैंने छोड़ना ही नहीं है उस पूरे थॉट प्रोसेस को, तो कोई सचमुच में भगवान भी आके नहीं कर सकता.
0: एग्जैक्टली. तभी कहा जाता है कि भगवान भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता इसमें, तो और मनुष्यात्मा क्या करेगी. भगवान भी ना हमें दर्द से मुक्त कर सकता है और ना परमात्मा हमें खुशी दे सकता है. परमात्मा हमें शक्ति दे सकता है उसको जेनरेट करने की. परमात्मा हमें नॉलेज दे सकता है कि मुझे कैसे क्रिएट करना है, लेकिन परमात्मा ऐसे ही दे दे, इट डजंट हैपन. व्हाई? बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट एंड फीलिंग, नॉट गॉड एंड नॉट एनी अदर ह्यूमन बींग. जिस दिन ये लाइन पूरी यहाँ पर अच्छी तरह से फिट हो जाए, द वे ऑफ लुकिंग एट एवरीथिंग चेंजेस एब्सोल्युटली. एंड फिर सारा कुछ मेरे कंट्रोल में आ जाता है.
1: अच्छा, लेकिन एक अगर हम सिचुएशन देते हैं, अगर हम देखें कि हमें खुशी जो हमारा क्रिएट, मैंने ही क्रिएट किया, अगर अब मैं देखती हूँ तो, लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी थी और उसने मुझे खुशी दी या मुझे दुख देना शुरू हुआ, मेरा ये मन करता है कि ये सिचुएशन बदल जाए तो मैं जो है खुश हो जाऊंगी. तो यहाँ मैं परमात्मा से ये एक्सपेक्ट कर रही होती हूँ कि वो सिचुएशन बदल देगा.
0: परमात्मा से भी जो मदद लेनी है वो सिचुएशन को चेंज करने के लिए नहीं.
1: बेसिकली तो यही करते हैं.
0: तो सारा दिन भगवान के आगे अर्जी कौन सी डालते हैं, यही तो करते हैं. मेरा ये ठीक कर दो, मेरा ये, उनको ठीक कर दो, ये भी अर्जी डालते हैं. मुझे शक्ति लेनी है और मुझे अपने ऊपर काम करना है. तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. दैट इज व्हाई इट इज सेड कि अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार है तो परमात्मा की मदद हमेशा साथ में है. सिर्फ अर्जी डालेंगे कि सिचुएशन चेंज कर दो, इट विल नॉट हैपन.
1: इनफैक्ट मैं तो ये कभी समझ ही नहीं पाती थी कि अपनी मदद कैसे करनी है. मदद तो हमेशा दूसरों की करनी होती है. तो ये यू नो दिस इज लाइक, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल थिंक दिस वे कि अपनी मदद मैं कैसे करूं, मतलब अपनी मदद क्या करनी है. मदद तो हमेशा दूसरे के लिए करनी होती है, लेकिन यही एक बहुत बड़ा परिवर्तन है ये, जिसको समझना बहुत जरूरी है. सबसे पहली मदद तो अपनी करनी है.
0: अपनी ही, हर एक अपनी ही कर सकता है. क्यों आप कह रहे हैं कि दूसरों की करनी है? क्योंकि हमने सोचा कि हम दूसरों की थॉट्स और फीलिंग्स क्रिएट करते हैं. यू नो, इवन सिंपल लाइक, सपोज मैं किसी बात से हर्ट हूं तो मैं जाकर दो चार लोगों से बात करती हूँ, आपको पता है मेरे साथ ये हुआ ये हुआ, एंड आई फील के वो जो मेरे से फॉर अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें करेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी. लेकिन उन्होंने मुझे नहीं ठीक किया, उन्होंने जो शेयर करना है वो किया. अब मैंने क्या किया? इफ आई हैव द पावर, आई टेक दैट पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन एंड देन आई वर्क विद इट. नाउ फॉर एग्जाम्पल, इवन दिस प्रोग्राम या परमात्मा का हर एक महावाक्य जो हम इस पर शेयर कर रहे हैं, सुन तो सभी रहे हैं ना, लाखों की संख्या में सारे विश्व में आत्माएं इस ज्ञान को सुन रहे हैं. लेकिन हरेक के ऊपर मैजिक तो नहीं हो रहा ना कोई, कि सुनने से ही वो काम हो जाएगा. अब हरेक उसको लेकर अपने साथ क्या करता है, क्रिएट तो उसी को करना है. तो ऐसे ही जब हम किसी के पास जाते हैं कि मुझे राय दो कि हाउ टू आई कम आउट ऑफ दिस, वो सिर्फ राय दे सकते हैं, बाकी काम वो तो मुझे करना होगा. हम काउंसलर के पास जाते हैं, हम साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं, हम फ्रेंड्स के पास जाते हैं कि दे विल हेल्प मी टू कम आउट ऑफ माय पेन. नो, नो वन कैन हेल्प मी टू कम आउट ऑफ माय पेन. दे कैन से व्हाट दे वांट, दे कैन शेयर व्हाट दे वांट, दे कैन ट्रांसमिट पॉजिटिव एनर्जी ऑल्सो, बट फाइनली आई विल हैव टू कम आउट ऑफ माय पेन. तो अनलेस आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ माय पेन, the whole world put together cannot do anything. ये काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा. और ये काम बहुत ईजी हो जाएगा जब समझ में आ जाएगा आई एम द क्रिएटर. आई एम द क्रिएटर, सो आई एम द डिस्ट्रॉयर. ये दर्द मैंने क्रिएट किया था तो इसको खत्म भी
1: मैं
0: मुझे
1: मेरे अपने ही हाथ में है. तो आप में से जितने भी लोग दर्द से गुजर रहे हैं, कई बरसों से, कई सालों से या कुछ टाइम से,

0: अभी वक्त है कि आप अपने आप से कहें कि मैंने क्रिएट किया है तो मैं खत्म भी कर सकता हूं, और आज ही प्रयास करें कि हम उसे खत्म कर देंगे। सर शिवानी, थैंक यू सो मच। जो आज हमने बात की है, जिस तरह से बातें क्लियर होती जा रही हैं कि कहीं ना कहीं ये जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमारी अपनी है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे उस जिम्मेवारी को उठाना है। मदद जो लेनी है मुझे वो अपनी लेनी है। और जो बहुत आपने आज जो बहुत बड़ी बात हमारे सामने आई है हमारे सभी दर्शकों के साथ, कि दूसरे के दर्द के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं, मुझे जिम्मेवारी अपने दर्द की उठानी है या अपनी खुशी की उठानी है। इसीलिए दूसरे की को ना मैं खुशी दे सकता हूं ना मैं उसको दर्द दे सकता हूं, उसका दर्द भी अपना क्रिएट किया हुआ है। तब हम दूसरों की मदद कैसे करेंगे, इस पर हम आगे आने वाले एपिसोड्स में चर्चा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे बहुत अपने होते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: आप सबसे भी बार बार हम यही आग्रह करते हैं कि प्रोग्राम आपका अपना है। जहां कोई ऐसी बात लगती है कि जो नहीं समझ में आ रही, लगता है कि ये कैसे संभव हो सकती है, या फिर आपको लगता है नहीं बात तो अच्छी है, सही बात है, पर मैं इसको लागू कैसे करूंगा, तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें, ताकि आप ही का जो रिस्पांस आता है वो आपकी रिस्पांसिबिलिटी बन जाती है कि आप जरूर अपनी रिस्पांसिबिलिटी को निभाएं और हमारे साथ शेयर करें कि आपको कहां लगता है कि बात समझ में नहीं आई है, या प्रैक्टिकल अनुभव में जब आप कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं भी साथ साथ कोशिश करती हूँ, जैसे हम कोशिश करेंगे जहां जहां रुकते जाएंगे वहां हम उसको आगे लेते जाएंगे। बहुत सी बातें अभी और करनी है, लेकिन आपसे हम यही आग्रह करेंगे कि आप अपना फीडबैक भेजें। आप हमें फोन पर संपर्क करें या फिर ईमेल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमार, इसमें इन दिनों हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की, और सेल्फ मैनेजमेंट की पहली जो सीढ़ी है वो है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यानी कि मैं स्वयं के प्रति जिम्मेदार हो जाता हूँ, जिम्मेवार हो जाता हूँ। ये जिम्मेवारी आप उठाना चाहते हैं, बिल्कुल आप उठाएंगे तभी वो परिवर्तन संभव हो पाएगा। आज आपसे हम विदा लेते हैं। ओम शांति।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूं, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में, तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: बाजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियां।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। लाइफ स्किल्स इस श्रृंखला में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं अपने जीवन से जुड़ी हुई, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जीवन को जीने के लिए जो हमें नहीं मालूम थी और शायद इसीलिए हमारा जीवन इतना खाली था। अपने विचारों की ताकत को समझा कि कितने पावरफुल हैं हमारे थॉट्स और कितनी तरह के थॉट्स हम क्रिएट करते हैं। सबसे पावरफुल और डैमेजिंग थॉट्स, जो टॉक्सिक थॉट्स जिनका हम देखते हैं, उनका हमें पता चल जाता है कि किस तरह से, चाहे वो गुस्सा है, नफरत है या ये सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, और दूसरी तरफ देखें तो हमारे साथ पॉजिटिव थॉट्स हैं, राइट थॉट्स हैं, एलिवेटेड थॉट्स हैं। हमारे साथ जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल और ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी दोनों हैं, उनसे बात करते हैं इस थॉट पावर के बारे में। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, जो डिफरेंट तरह के थॉट्स हम क्रिएट करते हैं उनको हमने डिटेल में जानने की कोशिश की है, अभी बात हमने करनी है राइट थॉट्स और एलिवेटेड थॉट्स। व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय राइट थॉट्स?
1: सबसे पहले तो पॉजिटिव थिंकिंग लोगों को मुश्किल लगता है, परंतु एक आम व्यक्ति भी इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि परिस्थिति जैसी है वैसी ही हमें देखनी चाहिए। म्यूजियम में जब हम जाते हैं, कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस में नहीं, कोई मोटा दिखता है, दुबला दिखता है, ऊंचा दिखता है तो हम हंसते हैं, अच्छा नहीं लगता है। परंतु सचमुच यही हम अपने जीवन की परिस्थितियों के साथ कर रहे हैं, परिस्थितियों को विकृत रूप दे रहे हैं। ऐसा तो कम से कम नहीं करना चाहिए। परिस्थिति जैसी है वैसी ही देखे। करीब 9 अलग अलग प्रकार के मिरर्स में हम अपने आप को देखते हैं। इसको कहेंगे रॉन्ग थॉट्स। उस रॉन्ग थॉट्स को समझ लेंगे तो फिर राइट थिंकिंग करना भी सहज होगा।
0: ओके, तो मतलब किस तरह से जो है वो हम अपने जो पूरी सिचुएशंस हैं उनको देखें। इनफैक्ट सर शिवानी, जब पिछली बार बात हुई थी कि पॉजिटिव थॉट्स क्या हैं, कैसे क्रिएट किया जाए, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि वो क्रिएट नहीं कर पाते। यू नो, समझ भी रहे हैं क्योंकि फील गुड के साथ हमने जोड़ा था कि वेदर इट्स अ पॉजिटिव थॉट और अ नेगेटिव थॉट, लेकिन वो हो नहीं पा रहा प्रैक्टिकली। यहां बैठ के फॉर्मूला की तरह बात करें तो लगता है कि ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में डे टू डे सिचुएशंस में आते हैं इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट।
2: छोटी सी एक्सरसाइज करके देखें, एक कुछ समय के लिए अपने आप को नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से बचा के रखें। अर्ली इन द मॉर्निंग न्यूज़पेपर, टू मच ऑफ न्यूज इन द टेलीविजन, बहुत सारे विजुअल्स एंड ऑडियो जो हम

0: नेगेटिव भर रहे हैं, ये हमारी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं। तो कुछ दिन के लिए एक एक्सपेरिमेंट की तरह नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करें और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन अपने अंदर भरना शुरू करें। हम कई बार ये बात कर चुके हैं कि ब्रह्मा कुमारीज के 130 कंट्रीज में 8500 से ऊपर सेंटर्स हैं। इतने सेंटर्स क्यों चाहिए? हर शहर में हम जहां भी रहते हैं विदिन 5 to 6 किलोमीटर एक सेंटर है। ये किस लिए चाहिए? ताकि सभी भाई बहने वहां पर आकर आधे घंटे के लिए, चाहे सुबह चाहे शाम, प्रेफरेबली सुबह, परमात्मा का वो ज्ञान लेते हैं विच इज द हाइएस्ट सोर्स ऑफ प्योर पॉजिटिव एलिवेटेड इन्फॉर्मेशन। तो हमने अपने जीवन में क्या परिवर्तन किया कि सुबह सुबह अखबार, रेडियो, टेलीविजन की बजाय सुबह सुबह ज्ञान लेना शुरू किया। इतना सा परिवर्तन, पॉजिटिव थिंकिंग नेचुरल होने लगा। जो भोजन खाएंगे वही एनर्जी क्रिएट होगी। तो एक तो ये ट्राई करें कि नेगेटिव इन्फॉर्मेशन स्टॉप, ट्राई टू क्रिएट कुछ एक सोर्स ऑफ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ले। दूसरा, सारा दिन कॉन्शियस अटेंशन। और तीसरा, जैसे पहले भी गिरीश भाई ने कहा, लिखो, लिख दे ये नेगेटिव थॉट मेरे अंदर आ रही है, लेट्स से ये काम मेरे से नहीं हो पा रहा। मैं करने की भी कोशिश करता हूँ ना, लोग इसमें ऑब्स्टिकल डालते हैं, यू नो द होल सीरीज। राइट इट डाउन और बैठकर उसका पॉजिटिव लिखे कि इस सिचुएशन में मुझे पॉजिटिव क्या सोचना है। इट्स लाइक अ चाइल्ड लर्निंग टू राइट एंड रीड, नाउ लर्निंग टू थिंक। हमने कभी राइट सोचना ये नहीं सीखा था। एक बच्चे की तरह हमें ABCD से इसको स्टार्ट करना होगा। तो लिखें, उस नेगेटिव को लिखें और फिर किसी और को अगर समझाते तो क्या पॉजिटिव समझाते उस समय, तो अपने आप को वो पॉजिटिव समझाएं, उसको लिखें। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, बहुत जल्दी इट विल बिकम अ नेचुरल प्रोसेस।
1: एक्सरसाइज करने से मसल स्ट्रांग हो जाते हैं, तो एक्सरसाइज करेंगे तो आपका माइंड स्ट्रांग हो जाएगा।
2: डॉक्टर पटेल, आपने कहा कि कई तरह के राइट थॉट्स हैं, अगर पॉजिटिव हम नहीं भी क्रिएट कर पाए, आपने हमें थोड़ी सी सहूलियत दी थी कि जो भी सिचुएशन है उसको वैसे ही देखें, लेकिन शायद हम भी अवेयर नहीं है कि हम कौन से वो 9 मिरर्स लगाकर हैं, वो हमारे साथ अगर आप शेयर करें।
1: सबसे पहला तो है कि मैग्नीफाइंग मिरर, कि परिस्थिति है 20% प्रॉब्लम है लेकिन उसको हम 90% बना देते हैं,
2: हाइपर हो जाते हैं जो,
1: तो मैग्नीफाइंग ना करें। हम ये पहले जज करें, थोड़े डिटैच होकर के, समस्या है परंतु कितनी है, 10% समस्या है तो 10% ही मुझे सोचना है, उसको 15% भी नहीं करना है। ये मैग्नीफाइंग भी हम खत्म कर दे तो बहुत बड़ा फायदा होगा।
2: वेरी ट्रू। यू नो, बच्चा का रिजल्ट वहां से स्कूल से कुछ आ गई, एक कॉल आ गई और भाई के पेरेंट टीचर मीटिंग में कुछ कह दिया, किसी और चीज के, हस्बैंड के बारे में कुछ पता चल गया, छोटा सा एक
0: सीख, जैसे भाई साहब ने कहा ना, मेकिंग अ बिग इश्यू आउट ऑफ इट। जब कोई और एक बड़ा इश्यू बना रहा होता है ना, हमें दिखाई दे रहा होता है, देखो बात तो इतनी सी है और इसको ये क्या बना रहे हैं, तो डिटैच होकर जब देखते हैं हमें क्लियर दिखाई देता परिस्थिति इतनी है, इसको ये देखो कितना बड़ा बना रहे। अब सिर्फ वो चीज अपने में देखनी है, दूसरे को तो कहना इजी है कि बात तो बहुत छोटी है, आप उसको बहुत बड़ा बना रहे हो, ये बहुत कॉमन हमें दिखाई देता है आज। अब सिर्फ जो औरों के अंदर दिखाई देता है उसको अपने अंदर देखना है कि कैसे हम छोटी बात को कितना बढ़ाते।
2: तो जब भी हमें लगे कुछ बड़ा हो रहा है, बहुत मुश्किल हो गया, वी शुड स्टॉप
1: एवरीथिंग। जो भी हमारे में थोड़ा भी नेगेटिव थॉट आ रहा है, सोचे कि भी मैं मैग्नीफाइंग तो नहीं कर रहा हूँ, सचमुच परिस्थिति कितनी है, बस उतना ही उसे इम्पोर्टेंस देना है, ज्यादा नहीं देना है। दूसरा है ऑल और नन अप्रोच, कि व्यक्ति जो है परिस्थिति वो एक्सट्रीम में सोचता है, उसके लिए समस्या ब्लैक एंड व्हाइट ही होती है, परंतु जीवन ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, इट इज डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे। एक आपको उदाहरण दूंगा, एक डॉक्टर का बच्चा 10वीं कक्षा में था, तो उसके फादर ने कहा बेटे मेडिकल में एडमिशन चाहिए, मेडिकल में एडमिशन चाहिए तो 95% होने चाहिए। उसने मेहनत तो की परंतु अनफॉर्चुनेटली उसके 88% आए। तो पिताजी ने क्या क्या सुनाया उसे कि बस मेरा जीवन बर्बाद हो गया, अभी तुम कोई काम के नहीं रहे, कम से कम 90 तो आने ही चाहिए थे, मैं किसको मुंह नहीं दिखा सकता हूं, मेरे बेटे के 88% ही आए, ऐसे एक दो घंटा खूब सुनाया। तो बच्चा एकदम साइलेंस में चला गया। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद उसको शॉक लगा है कि कम परसेंटेज आए, हमने भी उसको डांटा, लेकिन सच मानिए 2 दिन के बाद वो पागल हो गया। आज भी वो पागल है, कई साइकेट्रिस्ट ने उसका इलाज किया, मैंने भी उसका इलाज किया, वो ठीक नहीं होता है। भले एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है परंतु फिर भी
2: इसके लिए वो माँ बाप का

0: एक्सेप्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट होगी।
1: नहीं, लेकिन ये एक्सट्रीम एग्जांपल है, लेकिन हमें ये मैग्नीट्यूड तो दिखा सकता है कि हमारी जो ये बातें हैं जो हम कह देते हैं उस समय, वो चलो हमारे बच्चों पर कितना इम्पैक्ट डाल रही है। ठीक है, हर बच्चा इस एक्सट्रीम पे नहीं जा रहा, लेकिन कुछ तो डैमेज हर एक का हो रहा होगा जब इस तरह से बोला।
2: सुसाइड करते हैं कई बार, तो ये ऑल और नन अप्रोच का ही वो हिस्सा है। अब इसमें राइट थिंकिंग क्या होता, अगर वो बच्चे को ये कहा जाता कि बेटा हमारे कम से कम 90 का एक्सपेक्टेशन था, तुम्हारे 88% आए, अभी चलो देखते हैं। प्रॉब्लम इज देयर डेफिनेटली, लेकिन आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक की, आप अपनी स्टडी टेक्निक को कैसे इम्प्रूव कर सकते थे, हम आपको क्या मदद कर सकते थे, इस सब बातों के बारे में अच्छे से सोचा होता, कोई ठीक से प्लान बनाया होता, तो HSC में जरूर उसके 92 या 95 आते। तो दिस इज राइट थिंकिंग ऑफ दैट नो ऑल और नन अप्रोच,
0: इनफैक्ट लुकिंग एट द सिचुएशन इन द रियल सेंस
1: एंड एक्चुअली ट्राई टू मेक द सिचुएशन स्मॉलर। ये भी करो कि कई बार अगर, क्योंकि हमें नहीं पता चलता, हमें लगता है बात तो हमारे लिए बहुत बड़ी, अगर कोई और भी हमें कहे कि इतनी बड़ी बात नहीं है, हम कहेंगे आपको क्या पता, ये बात तो मेरे सामने आई है।
0: कई बार ऐसा भी हो रहा था कि अगर मैंने अभी नहीं कहा तो इनको समझ नहीं आएगा, यू नो लाइक वी शुड हिट इट व्हेन इट्स हॉट, दैट्स व्हाट वी से।
1: एम हैज टू बी कि कितनी भी बड़ी हो, हमें उसको बिल्कुल छोटा करना है, बिल्कुल छोटा करना है। और ये एक गेम है, यू नो, जितना करते जाओगे यू विल रियलाइज कि एक्चुअली बातें तो कुछ भी नहीं होती है। हम उनके बारे में सोच सोच के, बोल बोल के, आपस में डिस्कस करके उसको कितना बड़ा बनाते हैं। टेक इट लाइक अ गेम, एक गेम को खेलो कि आपके सामने एक चीज आई है जो बहुत बड़ी है, आपको उसको एकदम छोटा करना है। एवरीबडी नोज हाउ टू डू इट, इट्स जस्ट दैट वी हैव टू डू इट।
0: व्हाई वी डोंट डू इट,
1: सी अगेन पावर नहीं है ना, हम बहुत डर जाते हैं एकदम से। अभी इस केस में भी डर गए ना, कितने सारे थॉट्स आ गए होंगे, फियर ऑफ फ्यूचर, क्या होगा बच्चे का, क्या होगा, मैं लोगों को क्या कहूंगा, मेरा बच्चा डॉक्टर नहीं बना, उसका तो बच्चा डॉक्टर बन गया। लुक एट द सीरीज ऑफ थॉट्स दैट विल कम। उस समय ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चे का कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा, बाकी सब कुछ सोच लिया, तो जो इम्पोर्टेंट था वो तो सोचा ही नहीं, और इतने सारे थॉट्स जितने बनते, एंड दैट्स व्हाई वी से सिचुएशन उतनी ही बड़ी है जितने आपके थॉट्स उसको बनाते हैं, और कुछ भी नहीं है। जितना आप इससे थॉट क्रिएट करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट द सिचुएशन इज वेरी वेरी बिग, इट विल सीम टू यू कि इससे बुरा तो मेरे साथ कुछ हो ही नहीं।
0: और हम वो बना ही देते हैं फिर, फाइनली वो बनी जाती है,
1: क्योंकि हम उसके साथ इतने सारी चीजें अटैच कर रहे हैं ना, लोग क्या कहेंगे, इसका फ्यूचर क्या, इसकी शादी नहीं होगी, आगे करियर, मतलब सो मेनी थिंग्स वी विल अटैच। तो बात तो बड़ी लगेगी उस टाइम, अब हमें डिसाइड करना है उस सिचुएशन में कैसा सोचेंगे, तो सिचुएशन एकदम उतनी छोटी हो जाएगी।
2: ये भी पक्का कर ले, बस राइट थिंकिंग करना है ना, सही मिरर में अपने आप को देखना है, ऑल और नन के मिरर में बिल्कुल नहीं देखना है। तीसरी बात है जंपिंग टू कंक्लूजन, कि कुछ होता है तो तुरंत हम कुछ निर्णय पर आ जाते हैं, बस ऐसे ही है,
0: और अब भी लेना डिसीजन, अब भी लेना, अब भी करना है, यू नो, ये जो एक हमारे पास बिल्कुल वक्त ही नहीं रह गया कि अभी मैंने इस सिचुएशन में डिसीजन नहीं लिया तो कुछ कुछ गलत हो जाएगा। ये
2: व्यक्ति के बारे में भी हम वी जंप टू कंक्लूजन, एक कंपनी में प्रेसिडेंट थे, उस कंपनी का यूनियन लीडर सवेरे सवेरे उन्हें मिलने आया, सेक्रेटरी को आके कहा कि साहब को मिलना है, वो सोचा रहे सवेरे सवेरे यूनियन लीडर मतलब बहुत सारी डिमांड लेकर के आया होगा, बस समस्या होगी, अभी मॉर्निंग में नहीं चाहिए, उसको कहा कि कहो कि साहब अभी बिजी है, कुछ देर के बाद आना, फिर से आया, सोचा जरूर इसकी बहुत डिमांड होगी, कहा नहीं नहीं थोड़ी देर के बाद आना, अभी साहब मीटिंग में बिजी है, ऐसे उस दिन वो 5 बार आया, लेकिन कोई ना कोई बहाना बता करके उसे वापस भेज दिया, क्योंकि जंप टू कंक्लूजन दैट यूनियन लीडर मीन्स प्रॉब्लम्स। फिर 7 दिन तक वो दिखाई नहीं दिया, 8वें दिन रास्ते में ही मिल गया, तो उन्होंने सोचा अभी तो पूछूं, अब तक तो उसकी डिमांड शायद बहुत कम हो गई होगी, अब उसको पूछता हूं और सॉल्यूशन लाता हूं। तो कहा भैया क्या उस दिन तो आए थे, क्या प्रॉब्लम था? उसने कहा नहीं नहीं साहब वो काम तो हो गया। कहते नहीं नहीं बताओ कुछ तो होगा, मैं तुझे मदद कर सकता हूं। कहा नहीं नहीं साहब कुछ नहीं कर सकते। कहा नहीं कुछ तो कर सकते, बोलो क्या था। कहा नहीं नहीं साहब वो काम तो हो गया। कहते क्या हुआ? कहते साहब मेरे बेटे के मैरिज थे, मैं तुम्हें निमंत्रण देने आया था, कल ही मैरिज सेरेमनी पूरी हो गई, आज मैं काम पर आ गया, वो तो हो गया। तो देखो जंपिंग टू कंक्लूजन कि भी यूनियन लीडर मीन्स वो डिमांड लेकर के आया होगा, तो ये बहुत अच्छा सा मौका गंवा दिया।
0: तो रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा

0: जहाँ डेवलप होता उससे। तो ऐसा कभी नहीं करना है, कुछ भी हो, नेवर जंप टू कंक्लूजन।
1: सो मेनी टाइम्स वी डू दैट, यू नो,
0: हर परिस्थिति तो एक है तो बस एनालिसिस करना है, क्या बात है, अच्छे से एनालिसिस करूं और फिर सोचूं कि क्या करूं।
1: और पहले सुन तो ले, पहले हम देख तो ले नहीं कि है क्या है, जो हम सुन रहे हैं हम उसको भी नहीं ले रहे होते, हम फिर भी कुछ और सोच रहे होते हैं, पहले तय कर रहे हैं। कोई और अगर हमसे अच्छी तरह से भी बात कर रहा है उसके पीछे भी हम सोच रहे होंगे, इसके पीछे क्या, इसको क्या चाहिए मेरे से, ये मेरे से इस तरह से बात कर रहा है, वैसे यू नो सो मच, दिस इज ऑल्सो जम्पिंग टू सो मेनी कंक्लूजन। और उसकी वजह से वो जो अच्छी सीन भी आपके सामने आई थी उसमें भी आपकी थिंकिंग किस तरफ चली गई, इट वेंट टूवर्ड्स रॉन्ग थिंकिंग। सो सिचुएशंस आर पॉजिटिव, लेकिन हमें आदत पड़ गई है उस पॉजिटिव सिचुएशन में भी कोई ना कोई इस तरह की रॉन्ग थॉट क्रिएट करने की।
0: जब भी थॉट आता है सोचना है कि इसमें से कोई तो मैं नहीं कर रहा हूँ। चौथा है ऑलवेज मेंटालिटी।
2: एक सेकंड पहले हम थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करते हैं कि पहला था मैग्नीफाई, ऑल और नन, मतलब या तो मुझे सब कुछ मिले या कुछ नहीं, एंड थर्ड इज जंपिंग टू कंक्लूजन, फोर्थ हम आते हैं,
0: फोर्थ इज ऑलवेज मेंटालिटी। अच्छा, जब कुछ हुआ हम समझते सदैव मेरे साथ ही होता है।
2: अच्छा, ऑलवेज मी।
0: हाँ, ऑलवेज मी, कि जब अगर बॉस आपको डांट दे तो सोचते बॉस ऑलवेज मुझे ही डांटता है, या तो मुझे ही सदैव डांट पड़ती है,
2: मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है।
0: हाँ।
2: मेरे साथ जिंदगी में ये मेरे अपनों के साथ होता रहता है, मेरे बच्चों के साथ ही होता है, मेरे साथ जिंदगी में ये चलता है,
0: मेरे साथ सदैव बुरा होता है,
1: विक्टिम फीलिंग
0: की, बिल्कुल
1: सो मच ऑफ अ विक्टिम फीलिंग की ये मेरे साथ ही हो रहा है सारा कुछ।
2: लेकिन अगर ये होता जा रहा हो तो
0: नहीं, तब भी डिटैच हो गए अगर सचमुच, नहीं कितना भी बुरा होता आप सोचेंगे ना, कुछ बातें अच्छी भी हुई है, बल कुछ बुरी भी हुई है, लेकिन 20% 25% अच्छी बातें भी हुई है, उसका भी एक लिस्ट रखना चाहिए कि भी अच्छी बातें हुई है, हो सकता है भी मास में एक बार कुछ हुआ, 6 मास में एक बार हुआ, ये सदैव नहीं होता है। ये भी इसमें राइट थिंकिंग करना चाहिए कि बल मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ, औरों के साथ और प्रॉब्लम भी होते हैं ना, क्योंकि मुझे अपना ही दिखाई देता है इसलिए मैं सोचता हूँ कि आई एम ओनली सफरिंग। तो इस प्रकार से जो ऑलवेज मेंटालिटी है उस पर भी विजय प्राप्त करना जरूरी है।
1: एक बार हमने एक काउंसलर से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा लोग आते हैं इतनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं अपनी, और उनकी प्रॉब्लम सुनने के बाद लगता है मेरी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन उससे पहले हम अपनी इतनी सी भी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बनाकर बैठे थे। एक बार हम ऐसे एक ग्रुप में बैठे और हर एक से पूछा आपके जीवन में चिंता का कारण क्या है, एवरीवन जस्ट शेयर व्हाट्स द कॉज ऑफ योर स्ट्रेस। तो एक कपल था, उन्होंने कहा हमारे बेटे को चश्मा लग गया है बहुत यंग एज में, छोटा सा था, अबाउट 7-8 ईयर्स ओल्ड, कि हमारे बेटे को चश्मा लग गया, ये सोच सोच के तो हमें बहुत चिंता हो रही है। तो साथ में किसी और ने कहा कोई और प्रॉब्लम नहीं आई है ना सामने अभी, तो इसी बात को लेकर सी मतलब एक मेंटालिटी बन गई है कि कोई ना कोई बात को लेकर तो मुझे करनी ही है वो थॉट। तो अब जैसे ही अब अगर ये थॉट है कि मेरे बच्चे को चश्मा लग गया, जिस दिन कोई और बड़ी बात आ जाएगी ये बात कोई बात नहीं लगेगी। और यही अगर हम प्रैक्टिस करें कि हर सीन में पॉजिटिव, तो कितनी भी बड़ी बात आ जाएगी हमें वो नहीं लगेगी। इट हैज बिकम आर यू नो पर्सनैलिटी आर नेचर टू थिंक ओनली ऑन द वरी एंग्जाइटी नेगेटिव साइड, इसीलिए वो हर टाइम लगता है कि आई एम द विक्टिम, मेरे साथ थोड़ा सा भी कुछ मेरे साथ हुआ तो मेरे साथ ही ऐसा होता है। दिस इज अ वेरी डीप संस्कार जो हमारा बनता जा रहा है कि हर टाइम मेरे साथ ऐसा होता है, एंड हर टाइम जो मेरे साथ बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं वो मैं देख दैट इज इग्नोर्ड।
2: क्यों नहीं, क्यों मुझे विक्टिम बनना आसान लगता है क्या? विक्टिम बनते ही जिम्मेदारी किसी और की हो जाती है, ऐसा है,
1: और उदास फील करना जस्टिफाइड हो जाता है।
2: पर हम उदास, अच्छा उदास तो हम फील सी हम उदास फील तो नहीं करना चाहते ना, लेकिन हम फील कर रहे हैं,
1: उदास फील कर रहे हैं। अब हमें कोई चीज चाहिए जिसके ऊपर हम उसकी ब्लेम डालते हैं,
0: जस्टिफिकेशन
1: है ना कि सिचुएशन ये मेरे साथ हर बार ऐसी हो रही है, हाउ कैन आई बी हैप्पी, दैट इज द थिंग। जैसे कोई रीजन मिल गया ब्लेम करने के लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, एंड आई टेल माई सेल्फ ये ठीक है आप जैसा फील कर रहे हो ऐसा ही फील करना है इस परिस्थिति के अंदर, एंड देन वी लिव विद दैट पेन फॉर अ लॉन्ग टाइम।
2: कितनी सारी अपनी जस्टिफिकेशन से परिस्थितियां तैयार की हुई हैं,
0: और ऐसा सोच के हम औरों की सिंपथी गेन करना भी चाहते हैं कि जब जस्टिफिकेशन है तो लोग मुझे सिंपथी देंगे। छठी बात है लेबलिंग, हमने आगे भी डिस्कस किया था, लेकिन राइट थिंकिंग में भी हम कई बार गलत रूप से लोगों को लेबल करते हैं। आपके अंडर में अगर 5 लोग काम कर रहे हैं तो उनमें से आप लेबल करते कि ये स्मार्ट है, ये बिल्कुल गलतियां करता रहता है, और जब आप लेबल करते हैं तो इमीडिएटली वो आ जाते हैं कि इसने किया गलत ही किया होगा, वो भी रॉन्ग है।

0: कभी भी लेबल किसी को नहीं करो।
1: जैसे सपोज कोई टाइम पर नहीं आता तो हम कहते हैं ये तो है ही लेट लतीफ, ये तो हमेशा ही लेट आएगा, इसको कितना भी बोल दो ये नहीं। सो दिस इज नो दैट पर्सन माइट बी सिंसियरली ट्राइंग टू कम ऑन टाइम, नाउ ही जस्ट नीड्स द राइट एनर्जी।
0: कोई लिमिट कम ऑन टाइम, सपोज वो 50% टाइम पे आने लगे तो भी आप कहेंगे कि तो लेट ही आता है,
2: क्योंकि हमने अपने मन में उसको लेबल लगा दिया उसको। अच्छा, तो पर उसे कहना तो चाहिए, कहा तो जा सकता
0: है। हाँ, एक बार लेट आया ठीक है,
2: रिकॉग्नाइज हमने करा, रिकॉग्नाइज करके हमने रजिस्टर किया, तो रजिस्टर करके हमारे पास तो रहती है वो वीकनेस।
1: जैसे हम लेबल कर देते हैं ना, इट फील्स के ये ऐसा ही है, मतलब देयर इज नो मार्जिन टू चेंज। वो है कि किसी के ऊपर जैसे ना स्टैम्प लगा दी कि ये तो है ही ऐसा, एंड फिर वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन मेरे तक नहीं, वो लेबल और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर होता है और सभी फिर यही लेबल से वर्क करते हैं। आप उस व्यक्ति को उस लेबल के थ्रू देखना शुरू करते हो, यू नो, नहीं ये तो है ही ऐसा, तो इवन इफ ही इज ट्राइंग टू चेंज, अगर कोई टाइम पे आएगा ना आज, कहेंगे बाय चांस आज टाइम पर आ गया था, कल नहीं आएगा ये टाइम पर, इतना बिलीफ सिस्टम वो स्ट्रांग हो जाता है। ये एक दो दिन की बात है, अच्छा चार दिन वो टाइम पर आ रहा है, देखते हैं कब तक चलता है इसका ये चेंज, क्योंकि मेरा लेबल इतना स्ट्रांग है कि वो तो टाइम पर नहीं आ सकता है। सो दैट्स द एनर्जी देन बी ट्रांसमिट टू हिम,
0: नेगेटिव एनर्जी हम दे रहे हैं, वो कोशिश कर रहा है फिर भी शायद तो नहीं,
1: और इसको वर्बल भी कर देते हैं हम, मतलब हम बोल देते हैं
2: आज तो यू नो सूरज नहीं निकला, सूरज कहाँ से निकला, आज आप टाइम पे कैसे आए, और ये सब कुछ। यस,
0: सातवीं बात है वाई मी एटीट्यूड। वाई मी एटीट्यूड का बहुत ही अच्छा उदाहरण है आर्थर एसे की, जो विम्बलडन में लीगेंड थे, उनको वर्ल्ड चैंपियन भी रहे, और जब रिटायर हुए उसके कुछ समय के बाद उनको कैंसर हुआ, तो एक उनके फैन ने लिखा कि भी कैसी दुखद बात है कि आप इतने फेमस व्यक्ति थे, आप इतने हाई पोजीशन पर पहुंचे थे, फिर भी भगवान ने आपको कैंसर दे दिया। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि भी 5 करोड़ बच्चे टेनिस खेलने की कोशिश करते हैं, उसमें से करीब 50 लाख ही है या तो 5 लाख ही उसको अच्छे से सीख पाते हैं, उसमें से जो प्रोफेशनल है 50,000 ही बनते हैं, उसमें से 50 ही विम्बलडन तक पहुंचते हैं, उसमें से 8 ही है जो क्वार्टर फाइनल में पहुंचते हैं, 4 ही सेमीफाइनल में होते हैं, 2 ही फाइनल में पहुंचते हैं, और अंत में 1 ही चैंपियन ऑफ द चैंपियन डिक्लेयर होता है। जब मेरे हाथ में कप था और मेरा नाम चैंपियन ऑफ द चैंपियन में दिया गया था, तब मैंने भगवान को यह नहीं कहा वाई मी, तो आज मुझे बीमारी हुई है तो भी यह नहीं कहना चाहिए वाई मी। तो बस यही बात, इससे बहुत प्रेरणा मिल सकती है, कोई भी समस्या आए कभी यह नहीं कहो वाई मी, यह सोचो कि भी मेरे को यह प्रॉब्लम है, औरों को और कुछ प्रॉब्लम है,
2: इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस एक्चुअली।
0: उल्टा कहते हैं वाई मी नहीं कहो, ट्राई मी लॉर्ड।
2: तो ये हमने 7 तरह की अपने रॉन्ग थॉट्स को, ये दीज आर द रॉन्ग थॉट्स,
0: उसको रॉन्ग थॉट्स राइट राइट करने का,
2: आपने कहा 10 होते हैं।
0: हाँ, और भी 8वां जो है जिसको कहा फ्लाई मेंटेलिटी,
2: ओ भागना
0: नहीं, मक्खी की जैसी मेंटेलिटी।
2: अच्छा अच्छा, हाँ,
0: कहते भी मक्खी के सामने मिठाई भी रखो और गंदगी भी रखो तो कहाँ बैठेगी, गंदगी पे ही बैठेगी। तो ऐसे ही लाइफ में भी होता है कि भी जीवन में अच्छी भी बातें हैं, बुरी भी बातें हैं, जिनके पास फ्लाई मेंटेलिटी वो व्यक्ति बुरे पे ही बैठता है, उसी के बारे में सोचता रहता है। बस ये भी सोचना चाहिए कि भी मेरे में फ्लाई मेंटेलिटी तो नहीं है, पर दोनों चीजें साथ साथ है, मुझे अच्छे पे ही बैठना है। 9वीं बात है जिसको कहते हैं नॉटिंग। नॉटिंग मतलब क्या है कि भी कोई चीज को हम फोर्सिबली भूलने की कोशिश करते हैं। कई स्टूडेंट्स के साथ होता है कि भी उनको पढ़ाई करनी है परंतु दूसरे कमरे में कोई टीवी देख रहा है, या तो आप पूजा भी कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, दूसरे कमरे में कोई टीवी देख रहा है, तो आपका ध्यान कंटिन्यूअस वो टीवी के प्रति है, आप फोर्सिबली उसको भूलने की कोशिश करते, भूल नहीं पाते, आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता, उल्टा टीवी का प्रोग्राम और क्लियरली आपको सुनाई देता है, तो ये नॉटिंग भी नहीं करे। अगर नॉटिंग होता है तो ये सोचो कि टीवी को भूलना नहीं है, मुझे पढ़ना है, मुझे जो कंसंट्रेशन वो पढ़ाई में देना है, अगर पढ़ाई में मैं कंसंट्रेट हो गया ऑटोमेटिकली टीवी से ध्यान चला जाएगा, मेडिटेशन कर रहा हूं मुझे मेडिटेशन में कंसंट्रेट करना है, ऑटोमेटिक मेरा ध्यान है वो वहां से हट जाएगा,
2: क्योंकि वो तो वहां एग्जिस्ट कर ही रहा है ना, उसकी एग्जिस्टेंस को तो आप डिनाई नहीं कर सकते।
0: हाँ, लेकिन उसको हमें फोर्सिबली नहीं भूलना है।
2: लेकिन डॉक्टर साहब, इट्स नॉट पॉसिबल से, यूजुअली जब आप पढ़ रहे हैं और टीवी

0: रहा है, मन वहाँ है, तो आपका मन वहीं जाता ही है।
1: इसलिए क्योंकि वो चीज आपको ज्यादा इंटरेस्ट करती है। माइंड कहाँ जाएगा? जो दोनों में से आपको चीजें ज्यादा इंटरेस्ट करेंगी। यही अगर आप टीवी देख रहे हैं, सपोज आप टीवी देख रहे हैं और एक्चुअली कोई आपको बुला रहा है कि पढ़ लो, शोर भी मचा रहा है, आ जाओ पढ़ लो, आप उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देंगे क्योंकि आपका पूरा इंटरेस्ट किस में है? टीवी देखने में। प्रोवाइडेड यू आर डूइंग समथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग यू, आपको दूसरी चीज डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो इसी में हमें अपने आप की फिर थॉट्स को चेंज करनी है कि वहां एक चीज चल रही है, यहां एक चीज चल रही है, मेरे लिए इस समय कौन सी चीज इम्पोर्टेंट है। फिर अपने आप इट्स सेट के वेर एवर योर अटेंशन गोज एनर्जी विल फ्लो देयर। नाउ इट्स इम्पोर्टेंट कि आपकी अटेंशन कहाँ जाए, हमारी अटेंशन एक्चुअली वहां जाती है तो फिर एनर्जी भी उसी तरफ जाएगी। लेट मी फोकस कि ये मुझे ये करना है, नहीं हो रहा है माइट एज वेल गो एंड सिट देयर। लेकिन ये जो संघर्ष चलता रहेगा इट वॉन्ट हैपन। एंड वो सिर्फ इस चीजों में नहीं, सारा दिन में बहुत सारी चीजों में चल रहा है, ऑफिस में भी काम मुझे अपने पर करना है, इवन वट एवर वर्क आई एम डूइंग, लेकिन मेरा ज्यादा ध्यान दूसरी चीजों में जा रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, देन आई एम ट्राइंग टू फोर्सफुली टेक माई सेल्फ बैक फ्रॉम देयर। द अदर वे अराउंड, मुझे क्या करना है एंड आई फोकस माई एनर्जी टोटली ऑन दैट, अपने आप अटेंशन वहां से हटेगा। मतलब वो कुछ और चीज भूलने की बजाय इसको याद करना है। जैसे परमात्मा भी हमें सिखाते कि मुझे गुस्सा नहीं करना, ये नहीं सोचना है, आई एम अ पीसफुल सोल, इस पर अटेंशन रखना है, एनर्जी विल ऑटोमेटिकली गेट क्रिएटेड, नहीं तो वो माइंड और भी उसके कॉन्फ्लिक्ट में चला जाता
0: है, जा रहा है तो फिर अटेंशन उधर ही
1: उसी तरफ चला जाता है।
2: और दसवां है डिसक्वालीफाइंग द गुड। कई बार अच्छी चीजें होती है हमारे जीवन लेकिन उसको भी हम डिसक्वालीफाई करते हैं। एक महिला ने एक दिन बहुत अच्छी साड़ी पहनी थी तो लोगों ने बहुत उसको प्रेज किया कि तुम बहुत सुंदर लगती हो, बहुत अच्छी साड़ी, सबको कहती है क्या बेकार की साड़ी है, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, मैं कभी नहीं पहनती हूँ, आज कोई मौका कुछ नहीं मिला तो इसी को पहनना पड़ा क्योंकि मेरी सास ने प्रेजेंट की थी। तो दिस इज डिसक्वालीफाइंग द गुड, नो सो मच गुड वाज देयर, नो शी कुड हैव इम्प्रूव हर सेल्फ एस्टीम, औरों को भी अच्छा लगता, शी वुड हैव फेल्ट गुड ऑल्सो अबाउट इट, लेकिन उसको भी भाई सास ने प्रेजेंट की थी कहकर सब कुछ वॉश आउट कर दिया
0: क्योंकि वो एक थॉट के भी आया कहाँ से, वहां पर रिश्ता ठीक नहीं था,
2: वो जरूरी नहीं था, कोई वो पूछ नहीं रहा था, लेबल भी नहीं लगा था कि किसने प्रेजेंट किया आपको। तो इसलिए जब भी अच्छा होता है रियली उसका हम आनंद ले, स्वमान को बढ़ाए, वो इवन एंथुजियाज्म को इम्प्रूव करे, अच्छी चीज को भी डिस्क्वालीफाई न कर दे,
0: जो अच्छा है उसे अच्छा ही अच्छे रूप में ही देखें। जैसे शिवानी डॉक्टर पटेल, वक्त का पता नहीं चलता जब हम अपने विचारों के इस ताने बाने में उलझ जाते हैं, लेकिन आज जो बातें समझ में आई कि जो 10 तरह के ऐसे थॉट्स जिन्हें एक्चुअली अगर नेचुरली देखा जाए तो राइट होना चाहिए, बट हम किस मिरर से देखते हैं, आपने कहा कि कौन सा ग्लास लगाकर हम देख रहे हैं और सारी चीजें उल्टी होती जा रही है। शिवानी डॉक्टर पटेल, थैंक यू सो मच, ओम शांति। आज हमने उन 10 सिचुएशंस को देखा, वो ऐसे थॉट्स जो शायद मैं अवेयर भी नहीं हूँ, मतलब ये चीजें अपने आप होती जाती रही है अभी तक जीवन में, लेकिन थोड़ा सा अगर बैठकर देखेंगे तो सचमुच, चाहे वो किसी भी बात को, किसी भी सिचुएशन को मैग्नीफाई करने की बात हो, चाहे एक जो कहा वाई मी ऑलवेज यू नो मेरे साथ, हमेशा मेरे साथ, और जो 10 थॉट्स हमने आज रियलाइज किए हैं, आज देखे हैं, जरा अपने थॉट्स को देखें और कैटेगराइज करें कि इनमें से कौन कौन से इन कैटेगरीज में आते हैं, फिर हम कोशिश करेंगे कि इन्हें परिवर्तित कैसे करना है, क्योंकि ये तो पता चल गया कि ये रॉन्ग है, क्योंकि मेरे दर्द ये मैंने क्रिएट किए, मतलब मेरे दर्द की क्रिएशन भी मैं हूं, तो अब उसको चेंज कैसे करना है, पॉजिटिविटी और जो पीसफुलनेस या हैप्पीनेस है उसे कैसे क्रिएट करना है, इस पर बात करेंगे आने वाली कड़ी में। आप हमारे साथ रहिएगा, कोशिश करेंगे कि स्किल सीखेंगे कि कैसे रॉन्ग को राइट करना है। आपसे विदा लेते हैं, हम शांति।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी, लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: मन मानती कहना क्यों नहीं मानती, पाठशाला में छुट्टी हो गई, बरसा क्यों नहीं?

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
1: चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह सन 1857 की क्रांति में शहीद हुए दो प्रमुख क्रांतिकारी कवि थे। राजा शंकर शाह गढ़ा राज्य के वारिस थे, जिस पर प्रतापी राजा संग्राम शाह और वीरांगना रानी दुर्गावती ने शासन किया था। सन 1784 में गढ़ा राज्य पर सागर के मराठों का अधिकार होने के पश्चात उसके वारिसों को गुजर बसर के लिए जबलपुर के पास एक जागीर दे दी गई थी। राजा शंकर शाह की यही जागीर 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गई। 1857 की क्रांति के समय जब दिल्ली और मेरठ क्षेत्र की घटनाओं के समाचार जबलपुर पहुंचे तो वहां उत्तेजना फैल गई। जबलपुर की 52वीं बटालियन के सैनिकों ने अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया। शंकर शाह के निवास पर क्रांतिकारी योजनाएं बनने लगी। उन्हीं योजनाओं में अंग्रेज अफसरों को मारने की योजना भी बनी, मगर ये योजना कारगर हो पाती इससे पहले ही मुखबिर गिरधारी दास की सूचना पर राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। राजा शंकर शाह के निवास से एक कागज का टुकड़ा मिला, जिसमें राजा ने अपनी आराध्य देवी से ब्रिटिश सरकार को खत्म करने और खुद की सरकार स्थापित होने की प्रार्थना की थी। इसी राष्ट्रवादी प्रेरक रचना को आधार बनाकर राजा और उनके बेटे पर ब्रिटिश राज के विरुद्ध साजिश करने का मुकदमा चलाया गया। साजिश में उनका हाथ सिद्ध होने के सबूत में उन्हें तोप से उड़ा दिए जाने का दंड दिया गया। जब राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को तोप के मुंह पर बांधा जा रहा था तो उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान उनके बच्चों की रक्षा करें ताकि वे अंग्रेजों को खत्म कर सकें। अंतिम इच्छा के रूप में दोनों वीर क्रांतिकारियों ने एक दूसरे को देखकर कविता सुनाई। कविता पाठ की समाप्ति के साथ ही दो तोपों की गर्जना ने राजा और उनके पुत्र के मातृभूमि के लिए उत्सर्ग को स्वीकार कर लिया।

0: यार मेरी चालाकी काम कर गई। ये रॉबर्ट ग्रुप का क्या फंडा यार, ये कौन है रॉबर्ट ग्रुप?
1: अरे मुझे क्या पता, मैंने तो ऐसे झटका दे दिया था।
0: याने तेरी ट्रिक काम आ गई।
1: और क्या, एक बात ठीक से समझ ले यार, अपन को कभी भी फालतू में किसी से पंगा नहीं लेना।
0: अच्छा हाँ। दूसरा चाहे भले ही अपने सर पे हावी हो जाए।
1: देख अगर अपन चार होते तो भी ठीक था, जब अकेले हैं तो ज्यादा जोश दिखाकर हाथ पैर तुड़वा लेने से तो अच्छा है 100-500 रुपए दे के निकल लो। अच्छा। फिर अपन कोई गुंडे थोड़ी है यार जो बराबरी से लड़ते फिर। एक बात है,
0: क्या
1: ये लोगों की चौथ वसूली अच्छी चल रही है?
0: यार चौथ वसूली क्या, अब जो लते पड़ गई है ना उन्हें पूरा करने के लिए पैसे तो चाहिए ही ना।
1: और
0: अब घर से तो इतने पैसे मिलते नहीं। अच्छा एक बात बता, प्रफुल्ल कैसा है? कुछ सीरियस बात तो नहीं है ना?
1: अरे कुछ नहीं, डॉक्टर ने उसे आउट ऑफ डेंजर बताया।
0: अच्छा,
1: वो तो हेलमेट ने बचा लिया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था।
0: थैंक गॉड। अरे गजबी दादा, हमारी चाय का क्या हुआ दादा?
2: यार अरे चाय तो आ रही है बेटा, पर ये तो बताओ कि एक्सीडेंट किसका हुआ?
1: प्रफुल्ल का दादा।
2: वो जो अपने कमीज की कॉलर हमेशा खड़ी रखता है उसका?
0: अरे हाँ दादा, वही। अच्छा एक बार बताइए, दूसरा लड़का कौन था वो साथ में?
1: अरे वो शंकर नाम का लड़का है।
0: अच्छा,
1: डॉक्टर ने उसे भी खतरे से बाहर बताया है।
0: अच्छा
2: यार, शंकर नाम से याद आया बेटा।
0: क्या
2: बेटा, तुम्हें पता है शंकर शाह के लड़के रघुनाथ शाह ने 57 की लड़ाई में अंग्रेजों को भारी टक्कर दी थी?
0: दादा सच बताए ना तो शंकर शाह रघुनाथ शाह के बारे में अपन को कुछ नहीं पता।
1: बिल्कुल सही कह रहे था दादा, पिछले दिनों चित्रकला प्रतियोगिता के संबंध में इनके नाम जरूर पढ़े थे हमने। कौन थे दादा ये?
2: हाँ बेटा, सरकारी स्कूलों के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए जिला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता हो रही है।
0: अच्छा।
2: और पुरस्कार वीर रघुनाथ शाह और शंकर शाह के नाम पर रखे गए हैं।
1: अच्छा दादा, दादा इनकी कहानी सुनाओ ना।
0: हाँ दादा प्लीज, आज इनकी कहानी सुनाओ ना।
2: तो सुनो, शंकर शाह गढ़ा मंडला के प्रतापी गोंड राजघराने के वंशज थे।
0: अच्छा।
2: इनके पुरखों ने गोंडवाना में लगभग 1500 वर्ष तक राज किया।
1: दादा ये गढ़ा वही है ना जो जबलपुर के पास है?
2: हाँ बेटा, जबलपुर से कोई 4 मील की दूरी पे है जो गढ़ा गोंड साम्राज्य की राजधानी थी।
0: अच्छा।
2: गढ़ा राज करीब 280 साल रहा।
0: अच्छा।
2: इसमें संग्राम शाह, रानी दुर्गावती और हृदय शाह जैसे नामी राजा हुए।
0: ओह।
2: 57 के संग्राम के समय शंकर शाह विद्रोहियों को संगठित करते रहे।
3: पिताश्री, एक हरकारा रामगढ़ की रानी आवंती बाई का संदेशा लेकर आया है, वो आपसे मिलने को आतुर है पिताश्री।
4: वही रामगढ़ ना जो मंडला की पहाड़ियों में राजपूत सामंतों की प्राचीन जागीर रहा है?
3: जी पिताश्री, आपको तो पता ही होगा उनके पति स्वर्गवासी विक्रमादित्य सिंह जी के बाद फिरंगी शासन ने छल बल से रामगढ़ जागीर को भी कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत अपने अधीन कर लिया है।
4: हाँ हमें पता है, पर उन्होंने तो अत्यंत साहस और धैर्य का परिचय देते हुए दक्षता के साथ राजकाज संभाल लिया था।
3: जी तभी तो अंग्रेजों की कूटनीति से क्षुब्ध हैं और उन्होंने अंग्रेजी राज के विरुद्ध विद्रोह का बीड़ा उठाया है।
4: रघुनाथ
3: जी,
4: क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता देवी माँ के आशीर्वाद से ये हमारे लिए शुभ संदेश लेकर आया है?
3: जी पिताश्री, मैं आपका संकेत समझ रहा हूँ, इससे हमें भी अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त करने का रास्ता मिल जाएगा।
4: बिल्कुल ठीक, बुलाओ उस सरकारे को बुलाओ, हम स्वयं उससे बात करना चाहेंगे।
3: जैसी आज्ञा पिताश्री। अंगरक्षक, हर कार्य को महाराज की सेवा में प्रस्तुत किया जाए।
5: महाप्रतापी गौड़ राजा संग्राम शाह के वंशज राजा शंकर शाह के चरणों में गढ़ा मंडला राजवंश की जागीर रामगढ़ की महारानी अवंती बाई के दूत का सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज।
4: आओ स्वागत, अभिनंदन है। कहें

0: प्रति साथ ही इन दोनों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का अनुगमन कर रही हैं। इन्हीं प्रेरणाओं के तहत अपना लक्ष्य सिद्ध करने के लिए वे एक ओर तो गांव दर गांव के दौरे कर रही हैं और दूसरी ओर क्रांति संदेश के प्रतीक कमल और रोटी का आदान प्रदान भी कर रही हैं।
1: हमने उनके इस अभियान के बारे में सुना है, बताओ रानी हमसे क्या चाहती हैं?
0: महाराज, महारानी ने अत्यंत शालीनता के साथ आपको गौड़ साम्राज्य के महाप्रतापी राजा आपके महाराजा संग्राम शाह का स्मरण कराया, जिन्होंने 3-4 गढ़ों को बढ़ाकर पूरे 52 गढ़ों का साम्राज्य खड़ा किया था। साथ ही उन्होंने याद दिलाया है आपसी झगड़ों का फायदा लेकर सागर के पेशवा ने गढ़ा राज्य पर अपना आधिपत्य कर लिया था। अतः स्पष्ट है हमारी एकजुटता ही आतताई फिरंगियों को अपने देश से बाहर खदेड़ सकती है। इस कार्य में वे आपका सहयोग चाहती है।
1: महारानी के इस अभियान से हम बहुत उत्साहित हुए हैं। महारानी को हमारी ओर से पूर्ण आश्वस्त करें कि हमारा और हमारे पुत्र रघुनाथ का संकल्प भी वही है जो उनका है। उनसे कहिए 70 साल की इस उम्र में भी हमारी हड्डियों में हमारे पूर्वजों के शौर्य का वही बल है। हमारी एकजुटता हमें अपना संकल्प पूरा करने में सफल अवश्य बनाएगी। हम सभी उनके साथ हैं।
0: महाराज का ये संदेश पूरी निष्ठा के साथ ये दास महारानी तक पहुंचा देगा। महारानी द्वारा भेजी गई सामग्री संभाले और सेवक को आज्ञा दे महाराज।
1: आपकी यात्रा सफल हो। रघुनाथ
2: जी, पिताजी
1: जरा देखो तो रानी अवंतीबाई ने और क्या क्या सौगात भेजी है।
2: जी पिताश्री, एक खरीता है और कुछ चूड़ियां।
1: चूड़ियां?
2: जी
1: जरा पढ़ो तो खरीते में क्या लिखा है।
2: लिखा है, मान्यवर सादर प्रणाम, मेरा 2 टूक संदेश है, देश के लिए कमर कसो या चूड़ियां पहनो। साथ ही लिखा है, तुम्हें धर्म ईमान की सौगंध है, जो इसका सही पता बैरी को दो। देश हित में आशा है आप मेरी धृष्टता को क्षमा करेंगे। आवंती बाई।
1: जा, देश हित में तुझे क्षमा किया। हम तेरे साथ हैं।
3: तो बेटा, कागज के उस छोटे से टुकड़े पे लिखे संदेश ने मुक्ति आंदोलन लाने के लिए वो जोत जलाई कि जिसकी चिंगारी से पूरे इलाके में देश पे मर मिटने की आग धधकने लगी। कहने को ये सारी तैयारी चोरी छिपे तरीके से चलती रहती थी।
4: अच्छा,
3: लेकिन इसकी भनक अंग्रेजों को जब तब लगी जाती थी।

0: कैप्टन बॉस कौन? ये राजा शंकर शाह कौन होता? हमको खबर मिलता कि राजा शंकर शाह और उसका बेटा रघुनाथ लोगों को कंपनी राजा के खिलाफ भड़काता।
1: मेजर असाई, ये एक जागीरदार है जो जबलपुर के पास गढ़ापुरवा में रहता है।
0: ओके, पर इसको राजा क्यों कहता?
1: सर, वो इसलिए कि ये गढ़ा राज्य का वारिस है।
0: गढ़ा राज का एंटो 1784 में ही हो गया था, जब सागर के मराठा ने इसे जीता था, पर 1818 से तो ये कंपनी सरकार के अंडर होता।
1: सर, आप ठीक कह रहे हैं, गढ़ा राज्य को खत्म हुए 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं। शंकर शाह अंतिम गौंड राजा माना जाता है, हालांकि राज्य और अधिकार इसके पास नहीं है। इन्हें ब्रिटिश सरकार से पेंशन मिलती है और इनके पास गुजर बसर के लिए जागीर है।
0: ओके
1: सर, अब तो ये 70 साल का बूढ़ा है, जब जवानी के दिलों में इसने विरोध नहीं किया तो अब क्या करेगा।

0: जो भी हो हरी से इग्नोर नहीं करने का।
1: यस सर।
0: जब से दिल्ली और मेरठ की वारदात की खबर इधर आता, इधर भी थोड़ा हलचल है। तुम राजा की एक्टिविटीज पर वॉच रखो।
1: ओके सर।
2: इधर शंकर शाह के पूर्वा गांव विद्रोही गतिविधियों का केंद्र बना रहा। जबलपुर की 52वीं रेजिमेंट के कई सिपाही भी यहां आते रहते। यहां चर्चा करके अपने आगे की योजना बनाते रहते थे।
3: राजा साहब, आपने सुना फिरंगी शासन के प्रति सैनिक विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हो गई है।
4: और मंगल पांडे का क्या हुआ?
3: वो तो पकड़ा गया है। इसी तरह दिल्ली में भी सैनिक विद्रोह की खबरें हैं। और इधर की खबर ये है हुजूर, इन खबरों के इधर आने से हमारी 52वीं बटालियन में भी जोश की लहर दौड़ गई है।
5: हमने उनके इस अभियान के बारे में सुना है।
3: अब 16 जून की ही बात लें हुजूर।
4: वो 16 जून को क्या हुआ?
3: जब एडजुटेंट मिलर अपनी रेजिमेंट की गारद का निरीक्षण कर रहा था तो एक सिपाही ने उन पे बंदूक टांग दी और हमला कर दिया। मिलर बच गया, केवल मामूली चोटें आई थी।
5: लेकिन उस सिपाही का क्या हुआ?
3: उसे बनारस ले जाया गया है। सुना है वहाँ उसे फांसी दी जाएगी। मैं तो कहता हूँ राजा साहब, हमें भी विद्रोह कर देना चाहिए। 52वीं बटालियन आपके साथ है ही।
4: पिताश्री, ये ठीक कह रहे हैं।
5: हमें जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। अपनी तैयारी का आकलन करके सही योजना बनानी होगी ताकि अचानक हमले से फिरंगी सरकार को बचने का मौका न मिल पाए।
3: हमारी तैयारी काफी अच्छी है हुजूर। गांव के पास के पहाड़ी जंगलों में बहुत बड़ी संख्या में बंदूकें तलवारें इकट्ठी कर ली गई हैं। 52वीं पलटन के अलावा हमारे पास करीब 200 ऐसे जांबाज लड़ाकू आदमी तैयार हैं जो दुश्मन के 2000 लोगों पर भी भारी पड़ेंगे हुजूर।
5: वाह, बिल्कुल ठीक है। हम सोचकर योजना बनाते हैं कब और कैसे कहां से कार्रवाई शुरू की जाएगी।
2: तभी 52वीं पलटन के 8-10 सिपाहियों की बेवकूफी से कैप्टन मैक्सोन सतर्क हो गए।
6: क्या किया था दादा इन सिपाहियों ने?
2: मूर्ख ऐसे ही बैठे योजना बनाते रहते।
6: अच्छा।
2: कि कैसे फिरंगियों को मौत के घाट उतारा जाए।
6: अच्छा।
2: इनकी बातें अफसरों ने सुन ली और इन्हें गिरफ्तार कर लिया।
6: अच्छा।
2: और फिर सेना में दहशत फैलाने की गरज से इन्हें तोप से उड़ा दिया।
5: अरे, केवल बात सुनकर ही मौत की सजा दे दी गई?
2: हाँ, बगावत की खबर सब तरफ से आती रही। सुन सुन के अंग्रेज अफसर भी घबराते रहते।
5: सो तो है, घबराना तो था ही।
2: इधर डिप्टी कमिश्नर ने राजा की योजना की जानकारी लेने के लिए एक चाल चली।
6: चाल? किसी चाल दादा?
2: उसने राजा की धार्मिक भावनाओं का लाभ लेने के लिए अपने एक चपरासी को फकीर के वेश में राजा के पास भेज दिया।
7: भरत निरंजन, राजा तेरा भला हो।
2: राजा और उसके बेटे रघुनाथ शाह ने बिना झिझक अपनी सारी योजना और उसे पूरा करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीके की सारी जानकारी उस फकीर वेश में आए चपरासी को बता दी।
6: फिर क्या हुआ दादा?
2: फिर बेटा, लेफ्टिनेंट वाल्डविन और डिप्टी कमिश्नर ने राजा और उसके बेटे रघुनाथ शाह को गिरफ्तार करने के लिए 14 सितंबर 1857 के दिन पूर्वा की ओर कूच कर दिया।
8: लेफ्टिनेंट बॉल्डविन
9: सर,
8: आपका दल में कितना लोग है?
9: 20 सवार और 40 लोगों का पुलिस दल है। आपके आदेश अनुसार किसी को कुछ नहीं बचाया। कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं?
8: ठीक है,

0: देखो राजा का महल अब करीब 1 माइल डिस्टेंस पर है। हम लोग यहाँ घेरा डालेगा और जब तक वाचफुल रहेगा, जब तक कि तुम लेफ्टिनेंट क्लार्क की टुकड़ी के सिपाहियों के साथ जाकर महल में राजा और उसके बेटे को गिरफ्तार नहीं कर लेता।
1: यस सर। चलो लेफ्टिनेंट क्लार्क।
2: ओके सर।

0: पिताश्री, पिताश्री।
1: क्या हुआ?
0: बुरी खबर है, अंग्रेजी सिपाहियों ने पूरे महल को चारों तरफ से घेर लिया है। लेफ्टिनेंट क्लार्क और बॉल्डविन सिपाहियों के साथ अंदर आ चुके हैं पिताश्री।
2: हे, कोई होशियारी नहीं करने का, सरेंडर। तुम गिरफ्तार हो चुका है।
3: इधर ये 14 लोग हैं, इन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है सर।
2: ठीक है, राजा शंकर शाह और उसका बेटा इधर अरेस्ट हो चुका है। तुम महल की पूरी पूरी तलाशी लो। इनकी बगावत का सबूत मांगता हूं।
3: ये देखो लेफ्टिनेंट बॉल्डविन, राजा का पलंग से यह सिल्क का थैला मिला।
0: ओह,
3: इसमें यह मैरिट मर्डर केस के बाद की घोषणा का टुकड़ा है। वो देखो क्लार्क, यहाँ पर कोई पोयम भी लिखा है।
2: क्या है ये? इस पोयम में क्या लिखा होगा? राजा, तुम बताओ, बोलो बोलो।
1: ये देवी से प्रार्थना है।
2: कैसी प्रार्थना?
1: ब्रिटिश सरकार को खत्म करने और स्वराज स्थापित करने की प्रार्थना।
2: तुम लिखा है ये?
1: हाँ, मैंने लिखा है।
0: और उस बही के पहले पृष्ठ पर यही कविता मैंने भी लिखी है, देख लो।
2: पढ़ो इसे, देखें क्या प्रार्थना की है।
4: मूंद मुख डंडिन को चुन्न को चबाए खाई, घूंददार दुष्टन को शत्रु संगारिका, मार अंग्रेज रेज कर दे मात चंडिका, बचे नाही बैर बाल बचे संघारिका, शंकर की रक्षा कर दास प्रतिपाल कर, दीन की पुकार सुन ऐ मातृ कालिका, खैले माले छन को देर नहीं करो मात कालिका, भक्षण कर तक्षण वेग गौर मात कालिका, ढूंढदार दुष्टन को शत्रु संघारिका, ढूंढदार दुष्टन को
5: तो तुम बाप बेटा ब्रिटिश सरकार को खत्म करने के वास्ते अपनी देवी माँ से प्रार करता है। लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भड़काता है।
1: देवी माँ से प्रार्थना करना कोई गलत काम नहीं है। देखना, देवी माँ तुम्हें दंड जरूर देगी।
5: लेकिन अभी तो हम तुम्हें सजा देगा। बस बॉल्डविन, दोनों को अरेस्ट कर लो और कल किले के सामने इन दोनों को टॉप के मुंह से बांध दो।
2: यस सर।

0: मतलब शंकर शाह और रघुनाथ शाह को तोप के मुंह से बांध दिया है।
1: आप ठीक हैं।
0: लेकिन सर, पब्लिक की इतनी ज्यादा भीड़, कई हालात बेकाबू न हो जाए।
1: नहीं बॉलबेन, आज के बाद अब कोई भी विद्रोही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत करने की नहीं सोचेगा।
0: यस सर।
1: तुम पब्लिक को कंट्रोल करो।
0: खबरदार, अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश करी तो उसे गोली से भून दिया जाएगा। इन लोगों को तोप के सामने से हटाओ।

0: डर कैसा डर, अरे पागल डरते तो कायर हैं।
1: अंत समय अपने गॉड से प्रार्थना करो, शायद वो तुम्हारी हेल्प करे।
0: हे देवी माँ, इन लोगों के बच्चों की रक्षा करना ताकि वो बड़े होकर अंग्रेजों से बदला ले सके।
1: राजी इंजन फायर।
2: इस तरह बेटा बाप बेटा दोनों को तोप के मुंह से बांध के उड़ा दिया गया।
3: सिर्फ एक कविता पे इतनी भयानक मौत की सजा दादा,
2: पूरी जनता के सामने जश्न के रूप में।
3: अरे बाप रे।
2: हाँ बेटा, तुम समझो कितने भारी जुल्म किए गए हैं फिरंगियों द्वारा।
3: बड़ा ही दर्दनाक दृश्य रहा होगा दादा।
2: हाँ बेटा, सुना है उनके हाथ पांव तो तोप के मुंह के पास पड़े रहे और शरीर का ऊपरी भाग कोई 50 गज की दूरी पे जाके गिरा।
3: अच्छा।
2: और दोनों के चेहरे पर अपूर्व शांति थी।
3: सचमुच दादा, आजादी के लिए लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं।
2: हाँ बेटा, अब सोचो तब उन्होंने देश की आजादी लाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी।
3: जी।
2: और आज हम देश को बनाने के लिए, बुराइयों से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं।
4: निर्देशन प्रमोद शर्मा, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
5: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
6: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड में से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस, क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
5: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है। कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: is a time to bid goodbye to the old and the ordinary, and to awaken the beauty within. That time is now. It is time to wake up and take charge of life. Awaken to a new way of thinking. Awakening with Brahma Kumaris.
1: Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Sister, welcome.
2: Om Shanti.
1: Om Shanti and welcome to Being Bliss.
2: Thank you.
1: हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि एक वे ऑफ लाइफ बना लें से कैसे, मतलब जैसे मूवी देखते हैं तो डिटैच होकर, या क्रिकेट मैच देखते हैं तो डिटैच होकर, इसी तरह मतलब दुनिया की परिस्थितियों को और लोगों की बातों को, उसको हम डिटैच होकर कैसे देखें। जब मैं डिटैच

0: फाउंडेशन सुबह वो लेयर ऑफ इन्फॉर्मेशन की सेट कर दी, कहां तो उस समय पहले न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे और कहां उसकी एब्सोल्युटली ऑपोजिट क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन डालते हैं, परमात्मा का ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज वो सुबह सुबह भर लिया तो इन्फॉर्मेशन चेंज हुई, थॉट चेंज हो जाती है, थॉट चेंज हुई धीरे धीरे पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि रॉ मटेरियल की क्वालिटी चेंज कर दी है। अगर हम सब आज इतने दिन से ये सुनने के बाद अगर ये थॉट क्रिएट कर रहे हैं कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, तो लेट्स डू दिस वन थिंग कि सुबह के समय न्यूज तो आउट, लेकिन नाउ समथिंग एल्स। गलत भोजन नहीं खाएंगे पर सही भोजन तो खाएंगे ना। फिर कोई भी चीज चूज करें, व्हाट एवर यू लाइक, कोई अच्छी किताब, कोई अच्छा आर्टिकल, कोई अच्छा कैसेट, एनीथिंग वी हैव टू चूज, कोई सत्संग, कोई प्रवचन,
1: कुछ पेजेस में आता है ना स्पिरिचुअल।
0: एब्सोल्युटली, लेकिन वो कब पढ़ते हैं हम? हमारा फर्स्ट फोकस तो फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, इसी पे चला जाता है। तो फर्स्ट सुबह वो पढ़ लें, एक महीने के लिए इसको कर लें सिर्फ, सी द डिफरेंस, सी हाउ वो थॉट्स विल बी अ पार्ट ऑफ यू थ्रू आउट द डे। एक सिंपल चेकिंग है, अगर आज हमारे घर हमारा बच्चा शाम को टाइम पर नहीं पहुंचता है स्कूल से या कॉलेज से और फोन भी नॉट रीचेबल है, हमें एक दो घंटा सब जगह ट्राई कर लिया, वो कहाँ है कहाँ है सबको पूछ लिया, कुछ नहीं पता चल रहा है, किस तरह के थॉट्स आने शुरू होते हैं?
1: नेगेटिव।
0: क्या आएगा? व्हाट विल वी थिंक?
1: पता नहीं क्या हो गया होगा।
0: हाँ।
1: कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कोई तकलीफ में तो नहीं है।
0: क्यों ऐसी थॉट आई? क्योंकि यही क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन हम सारा दिन देख रहे हैं ना, एक्सीडेंट होते हैं आजकल, बॉम्ब अटैक भी होता है, टेररिस्ट अटैक भी होता है, बच्चे किडनैप भी हो रहे हैं आज, ये सारी इन्फॉर्मेशन भरी है। तो जब सिचुएशन आएगी, परिस्थिति आई, वो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन ट्रिगर होगी, वो थॉट आएगी। अब इसकी जगह अगर हम एक महीने से कोई बहुत पावरफुल इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं अपने अंदर, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, हर चीज जो हो रही है एक्यूरेट है,
1: कल्याणकारी है,
0: परमात्मा मेरे साथ है, मेरे श्रेष्ठ कर्म, मेरा फल अच्छा ही मुझे मिलने वाला है, सब कुछ सही सही, एवरीथिंग इज हैपनिंग एक्यूरेट। अब देखो अगर रात को ऐसी परिस्थिति आई तो क्या होगा? वो थॉट ही नहीं आएगी, ये नहीं कि वो आएगी और उसको चेंज करना, वो थॉट ही नहीं क्रिएट होगी क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन नहीं भरी। यही थॉट आएगी, आप अपनी फैमिली को बोलेंगे डोंट वरी, सब ठीक है, आ जाएगा, लेट्स वेट। वेटिंग पीरियड ही तो क्रिटिकल है, वो वेटिंग पीरियड ही क्रिटिकल है जो परिस्थिति में, इन्फॉर्मेशन चेंज, थॉट चेंज हो जाएगी। तो ये सबसे पावरफुल फैक्टर थॉट्स के ऊपर, अगर आपको थॉट्स को चेंज करना है। जो सेकंड फैक्टर है थॉट्स के ऊपर वो है पास्ट एक्सपीरियंसेस।
1: कहते हैं ना इंग्लिश में फर्स्ट इम्प्रेशन is the last impression.
0: Not true.
1: हाँ, it is not true.
0: If we want to make it like that.
1: 20 साल पहले जो सुरेश ओबेरॉय से मिला हो और आज मिले, ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन देखते ही वो याद आता ना, अरे ये तो वही बंदा है जो मुझसे झगड़ा किया था, तो वही बंदा है जो बड़े अकड़ के बात करता था।
0: एंड रियालिटी इज हर एक चेंज हो रहा है।
1: मैं जब तक चेंज नहीं हो रहा हूँ सिस्टर, मुझे ये एहसास नहीं होता कि दूसरा भी हो रहा है,
0: चेंज हो रहा है। हमें एक बहुत सुंदर बात सिखाई जाती है, प्रैक्टिस, ये भी अटेंशन, कि बीती हुई बात को चित पर ना रखें, पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप, फिनिश्ड। एंड ये एक अभ्यास करें कि अगर हम किसी के प्रति, जैसे ऐसे है कि कुछ पकड़ कर रखा है, एक अभ्यास करें कि नेक्स्ट टाइम जब हम उनसे मिले, Let's meet with a clean slate. Let's take a new impression. We don't know कि second impression जो अभी मिलेगा वो हमें पसंद आएगा या नहीं आएगा, we don't know. अभी हमें नहीं मालूम कि हमारी second meeting कैसे होने वाली है, लेकिन एक practice कि हम अपनी second meeting को, अगर first meeting pleasant नहीं थी तो अपनी second meeting को first meeting के impression से ना start करें।
1: किसी के घर में जाता हूँ sister और मैं देखता हूँ कि इसका कुत्ता बड़ा खतरनाक है, सीधा ही अटैक करता है, तो क्या मैं सेकेंड टाइम भी जब जाऊंगा तो उससे डर के ही रहूंगा ना।
0: हाँ।
1: जैसे मैं सांप को देख लिया या इलेक्ट्रिसिटी के जगह हाथ लगा लिया, शॉक पड़ी, तो एवरी टाइम आई कांट चेंज दैट इम्प्रेशन ना।
0: द थिंग इज जो मनुष्य आत्मा है वो कॉन्स्टेंटली चेंज

0: अब मिलो आपसे फिर से क्लीन स्लेट के साथ, तो विल दैट मीटिंग नॉट बी अ बेटर मीटिंग फॉर मी?
1: हाँ, मैं चेंज हो जाऊँ और मैं चेंज
0: मतलब मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है अपने को, सिर्फ जो पिछली बार की मीटिंग का इम्प्रेशन क्रिएट किया था आपके बारे में
1: उसको हटा के
0: ये ऐसे हैं, ये एक इम्प्रेशन है ना,
1: ये ऐसे हैं के बदले में उस दिन इनसे ऐसा हो गया, शायद ऐसे हैं या नहीं है मालूम नहीं है, कोई मजबूरी होगी होगी।
0: लेट्स हैव अ फ्रेश मीटिंग, लेट्स डू दिस एवरी टाइम। ये करने से सामने वाला नहीं हमें मालूम कि किस स्थिति में है अभी, लेकिन हम अपने को तो एक अच्छी स्थिति में मीटिंग के लिए लेकर आ रहे हैं ना। स्थिति का परिस्थिति पर प्रभाव, ये इक्वेशन सारा दिन याद रखनी है।
1: स्थिति का
0: परिस्थिति पर प्रभाव पड़ना है,
1: यानी कि मेरा इम्प्रेशन सिचुएशन पे पड़ जाए।
0: मैं सेकंड मीटिंग में अगर क्लीन करके आऊं चित को, तो मैंने अपनी स्थिति को क्या कर लिया, क्लीन कर लिया ना। प्री कंसीव्ड नोशन जिसको कहते हैं, प्री कंसीव्ड, उसको हटा दिया, फिल्टर हटाकर आपसे मिलने आओ, तो स्थिति को क्या कर दिया,
1: क्लीन कर दिया।
0: जैसी स्थिति होगी अब वैसी मीटिंग होगी।
1: अच्छा, जैसे मैंने मेरी स्थिति मन की वैसे मैं वाइब्रेशंस पे तो दूंगा,
0: वैसे ही मेरा व्यवहार, वैसे ही मेरी बोलचाल।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
0: अब मैं अगर क्लीन होकर आऊं, इट विल बी अ मोर ओपन मीटिंग। लेकिन अगर मैं वो फिल्टर लेकर आऊं कि ये गुस्से वाले हैं, सपोज इतना ही फिल्टर ले आऊं, ये गुस्से वाले हैं, अब अगर आपने एक वर्ड भी बोला ना ऐसा इधर से इधर, मेरा फिल्टर बोलेगा ये गुस्से वाले हैं, ये अभी गुस्सा करने वाले हैं, ये तो अभी ऐसे, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं, मीटिंग बदल जाएगी। हर जो बात है वो हमें बेनिफिट करती है पहले। पीपल आर चेंजिंग, इवन इफ दे हैव नॉट चेंज्ड, लेट मी नॉट मीट विद द प्रीवियस इम्प्रेशन, क्योंकि प्रीवियस इम्प्रेशन कैरी करने से आई हैव चेंज्ड एंड नॉट चेंज्ड फॉर द वेरी गुड। रिश्ते में मुझे किसी ने धोखा दिया, हम कहेंगे अब मैं लोगों पर विश्वास नहीं करता।
1: मैं पढ़े लिखे लोगों से सुनाऊं, ये हैदराबाद के लोग ऐसे ही होते हैं, ये नॉर्थ इंडियंस ऐसे होते हैं, ये साउथ इंडियंस तो ऐसे ही होते हैं, ये अमेरिकन तो कैसे, मतलब एक से हुआ झटका सारी दुनिया से।
0: बिजनेसमैन ऐसे होते हैं, फिल्म एक्टर्स ऐसे होते हैं,
1: ये आपकी फिल्मी दुनिया वाले,
0: मीडिया के लोग ऐसे होते हैं, ये फिल्टर्स हैं, ये फिल्टर है। अब हम जैसे
1: कुमारी जैसे
0: ऐसे होते हैं, यस ऑफ कोर्स, ये फिल्टर्स हैं। तो फिल्टर लगाकर अगर किसी से मिलेंगे तो वी आर नॉट मीटिंग द पर्सन ओनली, एंड इसमें नुकसान हमारा ही होगा। एंड देखो, कई बार ये भी जनरलाइज्ड हो गया, लेकिन सपोज बिजनेस में मुझे किसी ने धोखा दिया, हम कहेंगे नाउ आई कांट ट्रस्ट एनीबडी। देयर आर सो मेनी पीपल हु राइट टू अस, नाउ आई कांट ट्रस्ट पीपल। क्यों? एक ने धोखा दिया ना, एक ने कुछ नुकसान किया, अच्छा दो ने किया, अच्छा नहीं तीन ने भी किया, बात नहीं, उसको इतना परमानेंट एक्सपीरियंस नहीं बना लेना है कि जिससे पास्ट का एक्सपीरियंस मेरे प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस कर देगा इतना ज्यादा।
1: ये कोइंसिडेंस हो सकता है
0: क्या चीज के, एक या दो या तीन ने किया?
1: हाँ, जैसे एक घर में जो गया उसका बिजनेस फेल हो गया, तीसरा गया, चार आदमी लोग खरीदना ही बंद कर रहे थे, बोले यार यहाँ जो हो जाता है बर्बाद हो जाता है,
0: तीन के साथ बिजनेस अच्छा नहीं हुआ। अब जो चौथा जाता है, अगर वो ये इन्फॉर्मेशन लेकर फिर जाता है और सबकॉन्शियस में उसकी वो इन्फॉर्मेशन बैठ जाती है, तो वो रियलिटी चौथे के लिए भी बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्रिएट्स थॉट्स, इसीलिए जो प्रेडिक्शंस है ना सारे,
1: थॉट्स
0: बिकम रियलिटी, डेस्टिनी। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन मैंने भर दी कि इस मकान में जो बिजनेस करता है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव में होता है तो पॉजिटिव में भी होता है, अगर आप इस जगह पर जाके मन्नत मांगेंगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा, आप ये करेंगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन भरी, वहां गए, मन्नत मांगी, इन्फॉर्मेशन थी कि जो यहाँ करेगा उसका काम पूरा हो जाएगा, थॉट क्रिएट होती है अब तो काम हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट हैपनिंग इज वेरी वेरी हाई। तो ये जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है इसको भी हमें क्या, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस थॉट्स पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, पास्ट एक्सपीरियंसेस को भी धीरे धीरे रिजोल्व करके आंसर करना, क्योंकि

0: में क्या करना है, थॉट्स को चेंज करना है ना. तो ये जो इन्फ्लुएंसेस हैं उस पर, जो तीन फैक्टर्स हैं, उन तीनों के साथ काम करना पड़ेगा. इन्फॉर्मेशन हमने देखा कैसे काम करेंगे, दूसरा पास्ट एक्सपीरियंस. अब इन्फॉर्मेशन तो प्रेजेंट में है सो इट्स ईजी टू वर्क, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस तो वो है जो हो गया, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते. लेकिन अब उसको धीरे धीरे, अगेन वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, तो पास्ट का चिंतन नहीं करना.
1: और तीसरा?
0: तीसरा बिलीफ सिस्टम. तो बिलीफ सिस्टम इज लाइक द ऑपरेटिंग सिस्टम. मेरा बेसिक बिलीफ सिस्टम क्या है हर चीज के लिए जीवन में, और ये बिलीफ सिस्टम सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर है तीनों में से भी. बिलीफ सिस्टम, इन्फॉर्मेशन, पास्ट एक्सपीरियंस, दिस इज द थ्री ऑर्डर.
1: बिलीफ सिस्टम वहम है या वाकई बिलीफ?
0: ना ना, बिलीफ सिस्टम वहम नहीं है. बिलीफ सिस्टम मीन्स आपकी मान्यता, आपकी क्या बिलीफ है. कि जैसे हमने थोड़े दिन पहले देखा जब आपने कहा ऑब्वियसली सिचुएशन का इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ेगा, ये बिलीफ सिस्टम है, ये आपका बिलीफ है, कन्विंस्ड कम्प्लीटली, ये मेरा बिलीफ है. अब बिलीफ मतलब जो कोर में होगा और इससे हर सोच निकलेगी. अगर मेरा बिलीफ है कि ऑब्वियसली सिचुएशन का इफेक्ट मुझ पर पड़ता है, अब सारा दिन में जो थॉट्स क्रिएट होंगे वो उस बिलीफ सिस्टम के थ्रू क्रिएट होंगे. अगर आपका बिलीफ सिस्टम है कि गुस्से से काम हो जाता है, गुस्से से मुझे रिस्पेक्ट मिलती है, ये बिलीफ सिस्टम है. आपका बिलीफ सिस्टम है लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन, ये बिलीफ सिस्टम है.
1: ज्यादा किसी की तारीफ नहीं करनी चाहिए,
0: परफेक्ट
1: चढ़ जाता है.
0: परफेक्ट, ये बिलीफ मतलब इतने सारे बिलीफ सिस्टम्स है हमारे.
1: करनी भी है तो मुंह पे मत करो.
0: मोटिवेशन करने के लिए फियर क्रिएट करना पड़ता है. अगर लोगों का बेस्ट निकालना है तो उनके ऊपर प्रेशर डाल के रखना पड़ता है.
1: बिना टेंशन के आपका जो है टैलेंट बाहर नहीं आता.
0: बिलीफ सिस्टम है.
1: मेरा बिलीफ सिस्टम था कि बिना दो ड्रिंक पिए मैं स्टेज पे बात नहीं कर सकता, स्टेज शो नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता. तो दो तीन ड्रिंक पी के मैं खड़ा होता था कॉन्फिडेंस के लिए.
0: आज आप सारा दिन में इतने सारे एपिसोड्स कर रहे हैं, क्या हुआ उस बिलीफ सिस्टम को? चेंज ऑफ बिलीफ सिस्टम. हमारे पास सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, बहुत से. मतलब अगर हम चेक करने बैठेंगे ना और एक लिस्ट बनाएंगे, एवरी डे वील फाइंड एटलीस्ट 20 to 30 बिलीफ सिस्टम्स जिनके थ्रू हम अपने जीवन को जी रहे हैं. टेंशन नेचुरल है, गुस्सा नेचुरल है, ये तो होता ही है, ये सब बिलीफ सिस्टम है. अब रिस्की ये हो जाता है कि क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम है, ये डीप होता है, जिसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस में है. इस बिलीफ सिस्टम के थ्रू हर थॉट क्रिएट होती है. हम अपने बिलीफ सिस्टम्स अपने बच्चों को भी ट्रांसमिट करते हैं, हम अपने आसपास के लोगों को भी ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि हम उनको भी वही जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं. अब क्या करना है, चेक करना है कौन सा बिलीफ सिस्टम है जो मुझे अनकंफर्टेबल करता है. इवन जब हमने देखा मैं कौन, हु एम आई, तो हमने सोचा दिस इज मी, आई एम दिस बॉडी, नेम, फेम, प्रोफेशन, तो ये बिलीफ था, तो थॉट अलग हो गई. एंड बिलीफ चेंज किया, आई एम अ सोल, थॉट चेंज हो जाएगी. खुशी मुझे ढूंढनी नहीं है, खुशी मेरी अपनी क्वालिटी है. शांति मुझे खोजनी नहीं है, शांति मेरी अपनी नेचर है. इफ आई बिलीव, अभी ये बिलीव है, अभी ये ट्रूथ नहीं बना है, बिलीफ है. आई एम अ बॉडी और आई एम अ सोल, दोनों बिलीफ्स है. बिलीफ, अब बिलीफ को लेना है, थॉट क्रिएट होती है उससे, फिर उसका रिजल्ट अपने जीवन में देखना है. जो जो रिजल्ट कंफर्टेबल होगा, आपने कहा ये मेरा बिलीफ था कि दो ड्रिंक लेकर स्टेज पर परफॉर्म करना है, आज एक और बिलीफ क्रिएट किया है कि नहीं, कंप्लीटली उसके बिना. और आज तो क्या किया, मेडिटेशन करके आज का दिन शुरू करना है, मेडिटेशन 10 मिनट करके फिर ये प्रोग्राम की शूटिंग पर आना है. अब दो बिलीफ्स हैं, एक है अल्कोहल से काम अच्छा होगा, और आज एक है कि मेडिटेशन करके आई विल परफॉर्म बेटर और आई विल प्ले माय रोल बेटर. अब दोनों का कंफर्ट लेवल देखना है इन द रिजल्ट. काम तो दोनों में हो जाएगा, लेकिन अल्कोहल मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट ला रहा था जीवन के हर पहलू पे, और आज मेडिटेशन क्या ला रहा है, वो चेक करके अब दोनों में से कौन सा एक बिलीफ सिस्टम चूज करना है और उसको अपने जीवन की सत्यता बनाना है.
1: तो सिस्टर आज के लिए ये होमवर्क काफी है.
0: डेफिनेटली
1: बिलीफ सिस्टम क्या है, और अल्कोहल वाला, मेडिटेशन.

0: अच्छा सपोज हमें ये भी पता चल जाए कि कोई लेट्स से कोई झूठ बोलता है, चलो किसी के अंदर झूठ बोलने का संस्कार है. नाउ पीपल विल से सो व्हाट शुड आई थिंक, ही इज बिकम वेरी ऑनेस्ट, वो सच बोल रहा है, मुझे तो पता है ना मेरा एम्प्लॉय है वो झूठ बोलता है, मुझे मालूम है. ठीक है ये मालूम है, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम उनसे बात कर रहे हैं तो पहले से ही ये सोच कर नहीं बात को सुनना है कि ये झूठ बोलता है, क्लीन करके फिर उस बात को सुनना है, सेफ गार्ड करते हुए कि अब मैं इस बात को सुनूंगा और अब एनालाइज करूंगा कि व्हाट इज इट दिस टाइम. दैट ऑल्सो कैन, क्योंकि जो झूठ भी बोल रहा है वो हर बार तो झूठ नहीं बोल रहा है ना, लेकिन क्योंकि हम फिल्टर लगा लेते हैं हमें उस व्यक्ति की हर बात भी
1: झूठी
0: लगने लगती है. तो क्लीन स्लेट से मिलेंगे तो फ्रेश उसकी इस बात को भी सुनेंगे और अपने परखने की शक्ति को ठीक रखेंगे, अपनी परख शक्ति को ठीक रखेंगे कि एनालाइज कर पाए कि इस बार क्या सही है क्या नहीं है. लेकिन पहले से ही डाउट मिलने से पहले से ही ये थॉट वो तो झूठी बोलता है, वो तो है ही झूठे नो, ये जो हम लेबल्स लगा देते हैं ये तो है ही ऐसे, ये तो है, ये जो लेबल लगता है ये पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से लगता है. और फिर हम उनको मीट फ्रेश, एनालाइज इन द फ्रेश मीटिंग, डू नॉट मीट थ्रू द लेबल ऑफ द पास्ट मीटिंग, क्योंकि उसमें फिर हमारा भी नुकसान रिश्ते का भी नुकसान हो सकता है. क्लीन मीटिंग एवरी टाइम, ये भी होमवर्क करना है. डू नॉट मेक द पास्ट माई प्रेजेंट, स्पेशली जब कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट्स हुए होते हैं, कोई बड़ी बात हो गई है, असाइड फिनिश्ड, हो सकता है सामने वाला भी उस बात को खत्म करके और रिजोल्व करके आ जाया हो. लेट्स बी ओपन टू अ न्यू एक्सपीरियंस.
1: Let's be open to a new experience and let's be open and wait for your next episode.
0: Thank you so much.
1: Thank you so much. Namaskar.
2: When someone around us is in pain, if we also create pain, then we are only adding to the existing pain. If influenced by another's situation, we create anger or hurt, then collective consciousness starts becoming negative. This is how negativity spreads in society. Compassion means remaining stable when others are in pain, sending them vibrations of love and power, which they will use to heal themselves. Detachment means remaining uninfluenced by others' vibrations. This allows our vibrations to influence them. If we have had an unpleasant interaction with someone, clean your mind of the past experience before you meet them again. The clean perspective will radiate pure vibrations in the next meeting and will create a pleasant interaction.
3: Namaskar, aapan aikat ahat Radio Puneri Awaaz 107.8 FM. Me, Smita Jaikar, Anandiraha, Anandwan.

अपना जो कुछ है सब आधा आधा है, दुख सुख के हम साथी हैं ये वादा है, अपना जो कुछ है।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार

0: व्यवहार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा तीन दिन बिल्कुल नहीं, तो वो तीन दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभ सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ग्लास का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, अपन ऐकत आहेत रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा है। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, दिस आर बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आँखें न डालो मुझे कुछ होता है, आँखों में आँखें न डालो मुझे कुछ होता है, बाहों में बाहें न डालो मुझे कुछ होता है, बाहों में बाहें न डालो मुझे कुछ होता है। आँखों में आँखें न डालो मुझे कुछ होता है, आँखों में आँखें न डालो मुझे।

कुछ कुछ होता है। हो आँखों में आँखें ना डालो मुझे।

पलकों में छुपा लो, मुझे कुछ होता है। आँखों में आँखें ना डालो, मुझे कुछ होता है। आँखों में आँखें ना डालो, मुझे

आँखें ना डालो मुझे कुछ होता।

0: अपने घर के राजा तुम, छेड़ो मन का बाजा तुम,
1: अपने घर के राजा तुम, छेड़ो मन का बाजा तुम।
0: आ जाएगी सुर में देखो जीवन की सरगम।

अरे बड़े मियाँ का हाल तो देखो, ये उम्र ये चाल तो देखो। मस्ती में है सब मस्ताने, प्यार नए कुछ दोस्त पुराने। मस्ती में है सब मस्ताने, प्यार नए।

0: हाँ तो मैं क्या कह रहा था?
1: हजूर आप अनंत बख्शी की लिखी चौथा मैना की कहानी सुना रहे थे, सुनाइए ना।
0: अरे हाँ, फिर तोते से बोली मैना, याद रहे।

पर कुछ नग्न कुछ उधार मुश्किल है बचना हमारा हमारा घर में सताती है कड़की

दुनिया ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।

हम आत्मा थे और बहुत प्यारे भैया थे। जब जब पुरानी बातें याद आती हैं तो आंखें भर आती हैं।

जो मिला खो गया, क्या मेरे पास है, दर्द ही दर्द है।

मैं चंदन हूँ बहू हूँ। इशारों को अगर समझो आज पर आज रहे।

अगर मुड़ के इधर देखो मेरे मासूम कातिल, तो जानोगे कि हम ही हैं तुम्हारे दिल के काबिल। रूप बदल के चाहने वाला मुद्दत से था पास तुम्हारे ले ले बाहों।